एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जुलाई 2026। इस समय सवेरे के 8:54 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा इस मंगल ध्वनि के साथ अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज सवेरे 9:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। वहीं वंदना कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी 9:20 पर। कार्यक्रम साजों पर धुन आप सुनेंगे 9:40 पर। वहीं फिल्म संगीत आप सुनेंगे 10:10।

शाम 5 बजे युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। वहीं माताओं और बहनों के लिए पणिहारी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर।

शाम 6:05 पर आप एक बार फिर होंगे फिल्म संगीत के साथ वहीं। माटी के स्वर कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:20। किसान भाइयों के लिए किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण शाम 7 बजे किया जाएगा। वहीं शाम को 7:30 पर एक बार फिर आप फिल्म संगीत सुनेंगे। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद, इस सप्ताह संसद में। वहीं हेलो फरमाइश का समय रहेगा शाम 8:15 पर।

श्रोताओं, रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे दर्द भरे गीत। इसी के साथ आपको जो आज का हमारा कार्यक्रम है उसकी सारी सूचना दी गई है।

0: हम आकाशवाणी नागौर की चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।
1: यानी 603 KHz FM 101.2 MHz पर कुछ ही क्षणों में ठीक 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राज्य में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। राज्य में आज अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों के सर्वे का कल अंतिम दिन। प्रदेश में पिछले 2.5 वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आगामी 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के ओटीएस में भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित समारोह में इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक मौजूद रहेंगे। भारत टैक्सी सेवा देश की पहली सहकारिता आधारित डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म सेवा है, जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से संचालित किया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश शासन सचिवालय में बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्य सचिव ने वर्ष 2024-25 और 25-26 की लंबित घोषणाओं के कार्य में तेजी लाने और वर्ष 2026-27 की घोषणाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने को कहा। उन्होंने भूमि आवंटन

0: से जुड़े मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने, अगले 3 महीने में सभी बजट घोषणाओं के वर्क ऑर्डर जारी करने और 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही बजट घोषणाओं की प्रगति नियमित रूप से CMIS पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने OBC परिवारों के सर्वे की अवधि कल तक बढ़ा दी है। आयोग के सलाहकार अशोक कुमार जैन ने बताया कि कई जिलों में सर्वे का काम अभी बाकी है। इसे देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों को कल तक सर्वे पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बाद सर्वे की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आयोग को अपनी अनुशंसा रिपोर्ट निर्धारित समय पर राज्य सरकार को सौंपनी है। राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जा रहे इस सर्वे के आंकड़ों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित अनुशंसाएं तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। नेशनल परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारी और कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये अपने पहले 24 घंटे में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 2.5 वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक पात्र और वंचित लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया है। उन्होंने यह बात जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के बाद इन परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि गिवअप अभियान के माध्यम से रिक्त हुए स्थानों पर पात्र परिवारों को जोड़ा गया है, ताकि कोई भी जरूरतमंद खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित ना रहे।
2: सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ने का जो अभियान चलाया गया था, उसी से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में भी हमें इस तरह का अभियान चलाना चाहिए, और वो अभियान हमने शुरू किया 1 नवंबर 2024 को। और मुझे बताते बड़ी प्रसन्नता है कि उस अभियान के तहत आज दिनांक तक 93 लाख लोगों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से बाहर हुए, 67 लाख लोगों द्वारा गिवअप किया गया और 27 लाख लोगों द्वारा गिवअप अभियान के तहत ही जो उसमें था कि EKYC अंगूठा लगाना जरूरी है, तो बहुत से लोगों द्वारा कि उन्हें पता था कि हम अंगूठा नहीं लगाएंगे, EKYC नहीं कराएंगे, तो अपने स्वेच्छा से बाहर हो रहे हैं, वो इस तरह 27 लाख लोग वैसे, तो कुल मिला के 93 लाख लोगों द्वारा स्वेच्छा से गिवअप किया गया।
0: राज्य पुलिस के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तीसरे सप्ताह में 41,923 महिला श्रमिकों और 7,834 बुजुर्ग महिलाओं से सीधा संवाद किया गया है। पुलिस टीमों ने कच्ची बस्तियों, कारखानों, निर्माण स्थलों, ईंट भट्टों और प्रवासी बस्तियों में पहुंचकर महिलाओं को सुरक्षा, उनके अधिकार और साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी।

0: अकेले रह रही बुजुर्ग महिलाओं और दंपतियों के घर जाकर उनकी समस्याएं भी सुनी गई। राज्य पुलिस ने आपात स्थिति में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 पर संपर्क करने की अपील की है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि जिन अस्पतालों में प्रसव होते हैं वहां के स्त्री रोग विशेषज्ञों को मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों का मार्गदर्शन मिलेगा। इसके लिए अगले 5 दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में सभी 108 एम्बुलेंस में प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के प्रबंधन के लिए एंटी शॉक NASG गारमेंट उपलब्ध कराने और पैरामेडिकल कर्मियों को इसका प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निदेशालय स्तर पर कैंसर सेल गठित करने, कैंसर स्क्रीनिंग वैन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अगले 4 दिन के मानसून सक्रिय रहने और कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश जबकि कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से प्रभाव से ये स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर सहित करीब 20 शहरों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई। माउंट आबू में सबसे अधिक 195 मिलीमीटर और पाली में करीब 4 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई। बीकानेर जिले के लूणकरणसर में कंवरसेन नहर का चैनल टूटने से करीब 300 बीघा में खड़ी मूंगफली और कपास की फसल प्रभावित हुई है। बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। कारगिल विजय की 27वीं वर्षगांठ पर राज्य सैनिक बोर्ड आज जयपुर में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजन का सम्मान करेगा। ये समारोह बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम में सप्तशक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा मुख्य अतिथि होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य में आज भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वे का कल अंतिम दिन। प्रदेश में पिछले 2.5 वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया। और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आगामी 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 9:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा निषादराज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नर नारी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्री राम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषादराज के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा

से आकर श्री राम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचानकर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्री राम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में पहली भक्ति रचना आप सुनेंगे अनूप जलोटा की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अनूप जलोटा की आवाज़ में ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
4: साथियों, वंदना कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना हम आपको सुनवा रहे हैं हरिओम शरण की आवाज में।

0: श्रोताओं वंदना कार्यक्रम में अभी आपने हरिओम शरण की गाई हुई ये भक्ति रचना सुनी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम साजों पर धुन, जिसके अंदर हम आपको सुनवाते हैं मशहूर फिल्मी गीतों की धुन। तो सबसे पहले प्रस्तुत है जागते रहो फिल्म की ये धुन, जिसे माउथ ऑर्गन पर बजाया है मिलन गुप्ता ने। प्रस्तुत है ये धुन।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी जागते रहो फिल्म की ये धुन, जिसे माउथ ऑर्गन पर बजाया गया था मिलन गुप्ता के द्वारा। साजों पर धुन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं श्री 420 फिल्म की गीत की ये धुन, जिसे वायलिन पर बजाया है वायलिन ब्रदर्स यानी कि देव शंकर और ज्योति शंकर ने।

श्रोताओं, श्री 420 इस फिल्म के गीत की धुन अभी आपने सुनी। वायलिन पर इसे बजाया था देव शंकर और ज्योति शंकर ने। अगली धुन हम आपको सुनवा रहे हैं अनोखी रात फिल्म से, जिसे सैक्सोफोन पर बजाया है सुरेश यादव ने।

श्रोताओं, अनोखी रात फिल्म के गीत की इस धुन को अभी आप सुन रहे थे, जिसे सुरेश यादव ने बजाया था सैक्सोफोन पर। साजों पर धुन कार्यक्रम की अगली और अंतिम धुन हम आपको सुना रहे हैं हम दोनों फिल्म से, जिसे पियानो पर बजाया है राजीव सिक्का ने और सैक्सोफोन पर हैं नरेंद्र टोनी। प्रस्तुत है ये धुन।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी हम दोनों फिल्म के गीत की यह धुन, जिसे पियानो और सैक्सोफोन पर बजाया गया था। पियानो पियानो पर थे राजीव सिक्का और सैक्सोफोन पर थे नरेंद्र टोनी। इसी के साथ आज का साजों पर धुन कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। इस समय सवेरे के ठीक 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कब्जा फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार और अनुपमा ने। प्रस्तुत है ये गीत।

0: श्रोताओं, कब्जा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की आवाज़ में।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: साथियों, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गंगा जमुना सरस्वती फिल्म से।

0: श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ में गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का गीत अभी आपने सुना। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कर्मा फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagaur@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagaur@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: श्रोताओं, मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में मरते दम तक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: साथियों, कार्यक्रम गाने पुराने ज़माने के का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मशाल फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, मशाल फिल्म के इस गीत के साथ ही गाने पुराने ज़माने के कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। इस समय सवेरे के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने नए। तो चलिए सुनते हैं कुछ नई नई फिल्मों के गीत। पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं क्रेजी फोर फिल्म से, जिसे गाया है सुनिधि चौहान और कीर्ति सगाथा ने। प्रस्तुत है ये गीत।

0: श्रोताओं, सुनिधि चौहान और कीर्ति सगाथा की आवाज़ में क्रेजी फोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को

0: श्रोताओं, अखिल धवनी भानुशाली और भृगु पाराशर की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था लुका छुपी। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, हिंदी मीडियम फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं सुखबीर की आवाज़ में।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, सुमेधा की आवाज़ में बरेली की बर्फ़ें फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं।

0: श्रोताओं, सुमेधा की आवाज़ में बरेली की बर्फी फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: साथियों, गुड्डू रंगीला फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाज़ों में।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, इस समय दिन के ठीक 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रपट संगीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय। और आपको ये भी बताते चलें कि आज बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकते हैं शाम 4 बजे से फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा। और अभी सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

चोर मचाए शोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मन मंदिर फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान। और मैटिनी शो प्रोग्राम में पिछले हफ्ते हमने बातें की थी जल है तो कल है, सुभजीत मुखर्जी हमारे बीच मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। और उन्होंने बीते हफ्ते बताया था कि कैसे जल संचय किया जा सकता है। उन्होंने शुरू किया था वृक्षारोपण से और तब उन्हें समझ में आया कि पेड़ तो तभी जिंदा रह सकते हैं जब पानी उनको जरूरत भर का मिलेगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
2: थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ के, क्योंकि आपके जो लिसनर्स हैं
1: जी
2: वो नेचर लवर्स हैं, वो ऑन ग्राउंड है, वो
1: बिल्कुल।
2: बातों में विश्वास नहीं करते हैं, वो काम करते हैं, जो होते हैं कर्मयोगी हैं सब
1: जी।
2: उनके साथ मिलके जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आता है, जिस हिसाब से कॉल्स आते हैं, पिछले हफ्ते जब बात हुई कई कई लोगों ने मुझे मेल किया है, इनफैक्ट मेरे इनबॉक्स लगभग भरने वाला था
1: जी जी,
2: तो बहुत अच्छा लगा इस बात
1: बिल्कुल। क्योंकि विविध भारती को पूरे देश में और बल्कि दुनिया के तमाम देशों में लोग सुनते हैं, और ये वो लोग हैं जो अपने तई बदलाव करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते जब हमने बातें की थी तो आपने जल तारा के बारे में बताया था। मैं ये जो बातचीत है इसको गांव की दिशा में मोड़ना चाहता हूं।
2: बिल्कुल जी।
1: गांव का एक सीधा साधा आदमी जिसका जमीन पर घर है और गांव में कुछ दूर पर उसके खेत हैं, या तो उसके खेत हैं या किसी और के खेत हैं जहां वो काम करता है, ऐसे लोग जो विविध भारती सुन रहे हैं उनको वाटर कंजर्वेशन या जल संचय से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, वो क्या कर सकते हैं अपने तई, ये बताइए।
2: बिल्कुल जी, इनफैक्ट थैंक यू सो मच कि किसानों का विषय आपने लिया है, क्योंकि जो मेरे पास इतने मेल्स आ रहे हैं ज़्यादातर किसान हैं, उसमें मैं तो बोलूँगा 100 में से 80 किसान भाई बहन है जिनका मेल आ रहा है, एंड सब पानी से परेशान है
1: जी।
2: क्यों? कि उन लोग कह रहे हैं कि पहले हमारे पास कम से कम 10 महीना पानी होता था, आज हमारे पास 8 महीना पानी है, बाकी हम लोग 4 महीना खाली बैठे रहते हैं, हमें समझ भी नहीं आता क्या करें, खर्चा नहीं पूरा होता, इसलिए शहरों में जाके काम करना पड़ रहा है। एंड आजकल के न्यू जनरेशन अवॉइड कर रहे हैं खेती करना, क्योंकि ये पानी की कमी है, इसलिए वो हमें ये बोलने, एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा कि आप ऐसा कुछ बताइए हमारे पास 12 महीना पानी हो, ताकि हम 12 महीना काम करेंगे। एंड बात सही है, क्योंकि अगर हम 150 करोड़ आबादी है हमारे देश का, और इनको अगर हमें खाना खिलाना है तो हमारे किसान तो 12 महीना काम करना ही पड़ेगा ना उनको। अगर वो बोलेंगे कि 6 महीना पानी नहीं है, 4 महीना पानी नहीं है, हम काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, एंड थैंक यू सो मच आपने ये टॉपिक लिया
1: जी।
2: एंड और भी बहुत सारे सवाल आए हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट यस, किसानों को पानी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है उनका खेती के लिए। एंड खेती में पानी उपयुक्त मिले, क्वालिटी का पानी भी होना चाहिए और क्वांटिटी भी होना चाहिए, पानी का गुण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन दोनों को माइंड में रखते हुए स्पेशल खेत में जल संचय करने का थोड़ा डिफरेंट विधि है, लेकिन है यही सिस्टम। हमें शोष खड्डा बनाना है, हमें परकुलेशन पिट बनाना है, जल

0: बनाना है, बट उसका साइज ज्यादा बड़ा होता है। फ्री तरीका है, इसमें उनका कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ एक या दो दिन का मेहनत है। देश भर में आज भी जो खेती हो रहा है, हम लोग बोरवेल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर
1: और इस वजह
0: करते
1: से
0: हैं।
1: वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा
0: जी
1: है।
0: देखिए, एक है जब बारिश हो रही है उस समय हम लोग ऐसे ऐसी चीजें ग्रो करते हैं, जैसे चावल है, शुगर केन है, कॉटन है, कपास की खेती बहुत होती है, गेहूं की भी खेती होती है। जब पानी है तब हम लोग ये खेती कर लेते हैं, जब पानी खत्म हो जाता है तो हम लोग सब्जियों पे आ जाते हैं, हरी सब्जियों पे आ जाते हैं। तो इसलिए पहला तो हमें ऐसी चीज़ों को ग्रो करना है जिसमें पानी की कम से कम ज़रूरत पड़े, या जब पानी बहुत ज़्यादा है, आज भी हमारा 70% पानी बह के समुंदर में और नदी में चला जा रहा है।
1: जी
0: तो बारिश के समय जिन सब्जियों में और जिन चीज़ों में ज़्यादा पानी लगता है तो हमें उस समय ग्रो करना है, क्योंकि पानी बहुत होता है। जैसे ही पानी कम होने लगता है हमारा पूरा फोकस चला जाता है ग्राउंड वाटर, क्योंकि 6 महीना सोच लीजिए आपने बारिश का पानी खींच लिया, बाकी का 6 महीना हमें अगर काम करना है तो बहुत ज़्यादा हमारे किसान ज़मीन से पानी निकालने लगते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है सब्जियों का, लेकिन ज़मीन का पानी खत्म हो जा रहा है,
1: ये जो
0: इसलिए
1: 70% पानी चला जा रहा है समुद्र में, इसे कैसे बचाया जा सकता है और क्या एक आम आदमी इसे बचा सकता है?
0: बस वही सोच है।
1: जी
0: यहाँ हम जब एक किसान की बात कर रहे हैं या किसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं या किसान को माइंड में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ, खेत का पानी खेत में रहना जरूरी है।
1: जी
0: एक तो हम लोग मेड़ बनाते हैं खेत में ताकि पानी रोक के रख सकें, दूसरा जब खेत में हम बात कर रहे हैं कि हमारा बोरवेल सूख चुका है, बोरवेल में पानी नहीं है, तो वापस डालना भी जरूरी है। ये तो वही बात होगी, जमीन के अंदर एक पानी को आप अगर आप मान के चलिए, अक्सर ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा जमा है, हजारों साल लगे हैं पैसा जमा करने में, मे भी आपके दादाजी पर दादाजी ने पैसा जमा किया था और अभी हम सिर्फ निकाल रहे हैं तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, और वही हुआ है
1: पानी के साथ भी ऐसे ही है।
0: बस। तो पानी खत्म हो चुका है तो अब उसको हम लोग दोबारा वापस डालना जरूरी है। मैं सबको यही, ये जो जल संचय और जन भागीदारी का ही प्रेरणा है कि जिसमें हमारी कोशिश है कि हर बोरवेल के बगल में एक माइक्रो पॉन्ड कहते हैं, इसको जल कुंड कहते हैं, हम लोग जल तारा ही कहते हैं, जिसमें वो ज्यादा गहरा नहीं होता है, 15 फुट बाई 15 फुट और 2.5 फुट गहरा, एक
1: अच्छा
0: छोटा सा जल कुंड बनाना है ताकि बारिश का पानी आपके बोरवेल का जो पाइप है, बोरिंग का जो पाइप है, उसके बगल में जमा रहे। एक आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बोलूंगा, जो भी हमें सुन रहे हैं याद रखिएगा कि जब भी हम बोरवेल खोदते हैं, 6 इंच का पाइप अगर जमीन में जा रहा है तो 8 इंच की खुदाई होती है, जो मशीन होता है ना उसका मुंह बड़ा होता है, तो नीचे जो बड़े बड़े पत्थर है वो तो ग्राइंड हो चुका है, वो तो पाउडर बन चुका है। अब अगर आप बोरवेल के आसपास पानी इकट्ठा करेंगे बारिश का, तो धीरे धीरे नॉन स्टॉप जमीन में पानी जाता रहेगा,
1: क्योंकि वो पिट जो है वो बड़ा बना है,
0: बड़ा बना हुआ है। बोरवेल क्या होता है, 200 300 400 हजार फीट नीचे से पानी निकाल रहा है, नीचे पत्थर है, पत्थरों के बीच में गैप है, उसको एक्वाफर कहते हैं, उसमें से हम पानी निकाल रहे हैं। जिस गैप से हमने पानी निकाला है, और बोरवेल का पाइप मतलब एक स्ट्रॉ मान के चलिए, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, स्ट्रॉ से पानी निकाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसी स्ट्रॉ को यूज करके अगर हम पानी वापस डाल दें तो हमारे पास पानी दोबारा भर जाएगा कम से कम लागत में, और कम से कम लागत के आपको सिर्फ श्रमदान करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है।
1: अच्छा, कोई किसान या कोई गांव वाला अपने घर में, खेत में या अपने आंगन में जल संचय की कोई विधा बनाना चाहता है, कोई सिस्टम बनाना चाहता है, उसका साइज क्या होना चाहिए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा?
0: बिल्कुल, बहुत बहुत अहम सवाल है ये
1: जी।
0: सर, सबसे पहला जरूरी है, और जो भी हमें सुन रहे हैं याद रखिएगा कि पानी को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है
1: जी।
0: अगर एक पानी को आप संचय कर रहे हैं कि खेत में इस्तेमाल करना है और खेत का पानी है, तो याद रखिएगा खेत में हमने पेस्टिसाइड्स डाला हुआ है, यूरिया डाला हुआ है, फर्टिलाइजर डाला हुआ है, टॉप सॉइल का पानी है, तो वो पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये डिफ्रेंशिएशन हम मेंटेन रखें। जिस बोरवेल में आपने खेत का पानी डाला है, तो 1 किलोमीटर दूर भी अगर आप उस पानी को निकालेंगे तो वो जहरीला हो सकता है, आपके पीने लायक नहीं है। इसलिए घर में जो आप पानी जमा कर रहे हैं वो आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एकदम साफ होना जरूरी है। छत का पानी आप उसमें डाइवर्ट करवाइए, छत का पानी साफ होता है, पहले बारिश का पानी बह जाने दीजिए, फिर छत एकदम साफ हो जाता है, उस पानी को आप बोरवेल में डायरेक्टली इंजेक्ट कीजिए। एक दो टेक्निक है, डायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज, इनडायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज। तो छत का पानी बहुत साफ होता है, उसको आप बोरवेल के अंदर डालिए, साफ रहेगा, आप पी सकते हैं। खेत का पानी खेत में इस्तेमाल करेंगे, उसको पीने में नहीं आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। एंड जल संचय उतना कीजिए जितनी आपकी जरूरत। बहुत ईजी फॉर्मूला है किसी भी शहर में है, किसी भी गांव में है।

कितना बारिश हो रहा है, कितने समय के लिए बारिश हो रहा है, आपको बता देगा कि कितना आपके पास छत है, उस हिसाब से कितना पानी आप कैच कर सकते हैं, उस हिसाब से आप उसको सेव कर सकते हैं। चाहे आप एक टंकी बना के सेव कीजिए या परमानेंटली भूजल ग्राउंड वाटर में उसको जमीन में समाने दीजिए, जितना सोख हो जाएगा आप, जैसे कि मैं कह रहा हूँ उसमें इवेपोरेशन नहीं है, निकाल के इस्तेमाल करते रहिए, 10 साल बाद भी इस्तेमाल करेंगे वो जमीन के अंदर मिलेगा।

0: उसको छोड़ दिया है
1: छोड़
0: सर।
1: दिया, आपने लाख रुपए खर्चा कर दिया एक खड्डा बनाने में और उसको छोड़ दिया, इसको आप जलतारा बना दीजिए, इसके ऊपर पानी कलेक्ट कीजिए, पानी जाने लगेगा, बहुत सिंपल। सेकंड, डेड बोरवेल एक होता है
0: जहां का पानी सूख चुका है।
1: जो पहले आता था, पिछले 5 साल से वहां पानी ही नहीं आया है, मतलब कहीं ना कहीं पानी आता था, अभी नहीं आ रहा है, मतलब पानी डालेंगे तो जाएगा ही जाएगा,
0: यस।
1: तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डेड बोरवेल को अलाइव कर देना है, मुर्दा को हम लोग जान डाल सकते हैं,
0: जी।
1: वहां पे भी आप जलतारा लगा दीजिए। फिर मैं आ जाता हूं ड्राई बोरवेल, मतलब पिछले साल यहां पे पानी था, आज पानी नहीं है,
0: इसका क्या मतलब है?
1: मतलब ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, ज्यादा
0: वो तो
1: एक्सट्रैक्शन हो
0: डेड
1: गया
0: डेड
1: है।
0: बोरवेल में भी तो ग्राउंड टेबल वाटर नीचे
1: डेड
0: गया।
1: बोरवेल आना बंद ही हो गया है 5 सालों से, 5 साल
0: अच्छा,
1: का रिकॉर्ड बताता है पानी ही नहीं है, बट ये है ड्राई बोरवेल जो पिछले साल पानी था आज नहीं है, ये
0: ओके।
1: फ्रेश फ्रेश अभी अभी मरा है ये।
0: तो इसको जिंदा जल्दी किया जा सकता
1: तुरंत
0: है।
1: इस प्रायोरिटी है।
0: जी
1: एंड चौथा कैरेक्टर मैं बोलता हूं पार्शियली ड्राई, मतलब अक्सर लोग फोन करते हैं, भाई साहब मेरा 3 घंटा पानी देता था, अभी सिर्फ 15 मिनट पानी दे रहा है, पिछले साल इसी समय 2 घंटा पानी देता था, आज सिर्फ आधा घंटा पानी दे रहा है, तो ये पार्शियली ड्राई हो चुका है, या पिछले महीने तक पानी देता था, अभी पानी नहीं दे रहा है। मैंने, मेरे पास अभी जैसे किसान भाइयों का जो मेल आया है, जैसे पिछले हफ्ते आपने मेरा ये इंटरव्यू लोगों को दिखाया, ज्यादातर यही बोल रहे थे कि हमारा पिछले साल जून महीने में पानी था, इस बार जून महीने में पानी नहीं है, पिछले साल मई महीने में पानी था, अभी भी बारिश नहीं आई है, तो हमारा पानी नहीं है। तो मतलब एकदम फ्रेश फ्रेश उनको साल भर पानी मिल रहा है, बट कई ऐसे बोरवेल हैं जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक सब सूखने लग जाते हैं, उनको भी हम लोग ये चार कैटेगरी को माइंड में रखते हुए जलतारा बना सकते हैं। 15 फीट बाय 15 फीट, 2.5 फीट गहरा खड्डा, बस
0: ये
1: इतना
0: तो
1: ही
0: कोई
1: है,
0: बहुत बड़ी बात नहीं है।
1: बस श्रमदान हो
0: अच्छा
1: रहा है। एंड थैंक यू
0: जी
1: एनएसएस, थैंक यू एनसीसी,
0: जी
1: ग्रीन क्लब,
0: जी
1: जो हमारे कॉलेज के बच्चे जा जाके ये बना रहे हैं। पालघर में हमने 750 से ज्यादा इंस्टॉलेशन किए हैं
0: वाह
1: पिछले
0: वाह।
1: 1 सालों
0: और
1: में,
0: इससे बड़ा भारी बदलाव आया होगा।
1: और सब अलाइव हो गए हैं, सारे मरे हुए बोरवेल जिंदा हो गए हैं, और क्या, पानी ही भरा हुआ है, सब खुश हो गए हैं।
0: अच्छा, जो देश के सुदूर इलाकों के स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज, मोहल्ले इस मामले में क्या कर सकते हैं? खासतौर पर अब यह हो रहा है कि इंडिपेंडेंट हाउसेस की जगह पर अपार्टमेंट आ गए हैं,
1: बिल्कुल,
0: और अपार्टमेंट में यह होता है कि एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मैं क्यों करूं वो करे, तो सब मिलकर करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो यह कितना आसान है कि एक बिल्डिंग के लोग भी एक साथ आ जाएं और इस काम में जुट जाएं?
1: देखिए ये दो अलग अलग पहलू हैं, मैं बताना चाहूंगा। मैंने जो कुछ 2.5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दिया है जल संचय के ऊपर,
0: जी
1: क्योंकि स्कूल कॉलेजेस जुड़ गए इसलिए हो पाया। जब भी हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, एक एक जल तारा इंस्टॉल करते हैं, स्कूल में 500 हज़ार बच्चे होते हैं, वो सीख जाते हैं ये चीज़, और वो घर जाके माता पिताओं को बताते हैं कि हमने ये सीखा है, हमारे स्कूल में दिखाया गया है, और हमने ये बनाया है, हम अपने घर में भी बनाएंगे, और जिसमें कोई खर्चा नहीं है। और सबको मैं यही बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा काम मत कीजिए, 4 फुट बाय 4 फुट और 3 फुट खड्डा बनाइए, और छत का पानी उसमें डाइवर्ट कर दीजिए, हमारा काम शुरू हो गया जल संचय का। तो ये जहाँ यूथ पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान आज सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि हमारे देश का यूथ इसमें जुड़ चुका है, तो वही मेरी कोशिश कर रहा हूँ स्वच्छ भारत अभियान के इंस्पिरेशन लेके, कि हम लोग इसमें यूथ को जोड़ें। तो स्कूल कॉलेज एनएसएस एनसीसी ग्रीन क्लब सबको इसमें जोड़ने की कोशिश है, जिसने बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूप ले लिया है, बिकॉज इन लोग जुड़ चुके हैं। बाकी शहरों में जल संचय करना आसान है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वाटर मेंटेन करना आसान है, खेतों में हमारे पास छत नहीं होते। अगर मैं मुंबई की बात करूं, अक्सर लोग कहते हैं कॉन्क्रीटाइजेशन, हर शहर में इतना कॉन्क्रीट बन चुका है, इतने छत बन चुके हैं कि छत का पानी बहने ना दें, छत का पानी एक बारिश के बाद एकदम साफ पानी आता है, वो पीने लायक पानी है, हम उस पानी को तुरंत हर घर जल संचय जो अभियान चल रहा है, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स एंड वेयर इट फॉल्स, छत का पानी है, मेरा छत मेरा पानी, मेरा स्कूल मेरा पानी है, वही मैं सबको बोल रहा हूँ, और गवर्नमेंट भी यही बोल रही है कि आप अपने हिस्से का, आपके पास जो पानी आ रहा है आप रोक के रखिए, आपका छत नीचे पानी जाएगा तुरंत, इसमें खर्चा कम है, जैसे कि मैंने कहा मेरा कोई भी प्रोग्राम 10 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, बड़े से बड़ा, और बोरवेल तो हर घर में है आज के ज़माने में, ट्यूबवेल बोरवेल हैंडपम्प भी उसी कैटेगरी में आता है, कुएं कुएं को लोग अक्सर बुझा देते हैं, कुएं में पत्थर डाल के बंद कर देते हैं। कुओं को आप लोग बिल्कुल बंद मत कीजिए, छत का

0: पानी एक बारिश के बाद जो दूसरा पानी आ रहा है उसको कुएं में बिल्कुल, बस पाइप को तो आपको बस जो गटर में बाहर जा रहा था उसको आपने इधर कर दिया, पानी कुएं
1: सिर्फ
0: में बस
1: डाइवर्ट करना है।
0: डाइवर्ट करना है।
1: आपने कुओं की बात की तो मुझे एक बहुत जरूरी चीज याद आ गई, और वो है कि एक जमाने में तमाम छोटे शहर और गांव में कुएं, बावड़ियां, छोटे छोटे तालाब और इस तरह की वाटर बॉडीज हुआ करती थीं, जो अब खत्म होती चली जा रही हैं। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, बावड़ियों को बुझा दिया गया, सुखा दिया गया, पत्थर भर दिए गए, कुएं खत्म हो गए, झीलें, तालाब। क्या महत्व है इनका? पुराने जमाने से लोगों ने इस बात को समझा था, तभी तो इन्हें बनाया था।
0: मैं आपको क्या बताऊं, इसका जवाब दूंगा शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन कहीं हम सबकी गलती है।
1: जी
0: एंड मैं कुछ इस बारे में जरूर बताना चाहूंगा, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं किसी को उंगली नहीं बता रहा हूं किसी की गलती। पहले हम लोग तालाबों से पानी लेते थे, तालाब छोटे पड़ने लगे, आबादी बढ़ गई, तो हम लोग कुआं खोदना शुरू किए। कुआं छोटा पड़ने लग गया, आबादी बढ़ गई, हम लोग बोरवेल पे आ गए। बोरवेल कम पड़ने लग गया, म्यूनसिपल्टी बोल रही कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हारे घर में पानी पहुँचा दूंगा। अब वो भी कम पड़ने लग गया है क्योंकि हम लोग बारिश के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, और जिस हिसाब से ये अलग अलग एल नीनो और अलग अलग सिचुएशन आ रहे हैं, जो तालाबें थी वो नेग्लेक्ट होने लग गई है, जो कुएं थे वो ऑब्सलीट हो चुका है। आज मैं किसी को भी बोलूं कि चलो कुएं का पानी पिलाऊं, वो बोलेगा भैया मरना क्यों चाहते हो, मेरे हाथ में एक प्लास्टिक का बोतल दे दिया जाता है, भैया इसी से पी लो। आप बताइए, मैं मुंबई में हूँ, कोई कुएं का पानी पीने लायक है? कोई नहीं है।
1: कुएं कहाँ हैं
0: अब जो कुएं हैं प्राइवेट है कुएं,
1: जी?
0: अब जिस चीज़ का कोई उपयोग ही नहीं है हम उसको रख के क्या करेंगे? ये तो वही बात हो गई कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, विंटेज कार पड़ी हुई है, चलती भी नहीं है, उसको क्या करेंगे? उसको कबाड़ में ही डालना पड़ेगा ना।
1: जी
0: तो कुएं का मतलब हो गया ये तो कबाड़ है हमारे लिए, जिसका उपयोग नहीं है। हम 10 फीट बाय 10 फीट का खड्डा है पड़ा हुआ है, कोई गिर के मर सकता है, उसका पानी खराब हो गया, कुएं का मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा है 10 सालों से, तो लोगों ने उसको बंद कर दिया, उसके ऊपर पार्किंग लॉट बना दिया, क्योंकि पार्किंग लॉट सोसाइटी में रहेगा तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं सोसाइटी को, तो कुआं रख के फायदा क्या है? जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि कुएं का फायदा है, जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं बोलेगी या कोई बुद्धिजीवी नहीं बोलेगा या हम आप इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो लोगों को लगेगा कुआं बेकार है। वही हुआ तालाब का सिचुएशन, मैं बंगाल गया था अभी, मैं बेंगलुरु गया था, चेन्नई गया था, जो सिटी ऑफ लेक्स बेंगलोर को बोला जाता था, अब तो लेक्स तो नजर ही नहीं आता है मुझे। बंगाल में आपको पता है मेरे दादाजी की शादी दादी के साथ क्यों हुआ था? क्योंकि उनके पास एक तालाब था।
1: ओ हो,
0: मेरी दादी की जो मम्मी थी उनसे मिली थी, उन्होंने कहा था उस समय पहले जमाने में जिस लड़के के पास तालाब है मतलब वो क्वालिफाइड है, तुम डॉक्टर इंजीनियर बाद में हो, तुम्हारे पास तालाब है मतलब पानी है, तुम्हारे पास तालाब है मतलब मच्छी है, तुम जिंदा रहोगे,
1: क्या बात है।
0: बाकी पढ़ाई लिखाई अपने जगह। वो कल्चर कहाँ गया है? तालाब इतना महत्व होता था, आज के जमाने में लोग गाड़ी खरीदते हैं अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, बैंक बैलेंस दिखाते थे, उस समय बैंक बैलेंस और एफडी यही होता था,
1: तालाब होता था जो
0: तालाब है भाई इसके आदमी के पास।
1: हमारे शहरों के तालाब, कुएं, हमारी झीलें, बावड़ियां, ये धीरे धीरे विलुप्त तो होती चली गई हैं।
0: बहुत ज्यादा, और एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, ये भी आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लेक्स, ब्यूटिफिकेशन ऑफ नदी, नदी बचाने के लिए नदी के किनारे जो घाट बनाने से नदी नहीं बचेगा, नदी होता है नदी के पानी से, नदी होता है नदी के अंदर प्लास्टिक नहीं जाना चाहिए, वो नदी होता है जिसके अंदर लाइफ हो, जिसके अंदर पानी पीने लायक हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पियो पानी, बट कम से कम अगर इंसान पी सकता है तो बाकी जीव जंतु भी उसमें रह सकते हैं। नदियों में जो लाइफ आसपास होता था, नदियों के पानी में जो मछलियां होती थी, अलग अलग तरीके के जानवर होते थे, वो सब मरने लग गए क्योंकि नदी में ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो गया है।
1: जी
0: तो बहुत जरूरी है, जब मैं नदी की बात कर रहा हूँ, तालाबों की बात कर रहा हूँ, दीघी की बात कर रहा हूँ, बड़े से बड़ा लेक हो, हर जगह क्वालिटी ऑफ वाटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि मैं अक्सर मैंने देखा है अलग अलग म्यूनसिपलिटी के लोग, अलग अलग गवर्नमेंट के लोग, अलग अलग एनजीओज लोग, तालाब तो गंदा पड़ा हुआ है, तालाब में मतलब एक मछली नहीं जिंदा रह सकता है, लेकिन चारों तरफ बेंच लगा दिया, लाइट लगा दिया और वॉकिंग स्ट्रिप बना दिया है, वो वाटर कंजर्वेशन नहीं होता, वो लेक रिजुनोवेशन नहीं होता है।
1: जी जी
0: जल
1: बिल्कुल
0: शक्ति मंत्रालय ने जो रूल बनाया है एकदम परफेक्ट बनाया है, उसको पढ़िए, उसका पहला पॉइंट ही है क्वालिटी ऑफ वाटर, उस चीज को छोड़ के बाकी सब चीज किया जा रहा है। जो रूल्स बनाए जाते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जल शक्ति मंत्रालय में एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, हमारे देश के सारे धुरंधर वहीं बैठे हुए हैं। सच बताओ, मुझे मौका मिला उन लोगों के साथ मिलने का, बात करने का, काम करने का, वो बहुत अच्छे सोच है उनका, वो सोच लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सोचा आपके माध्यम से ये बात लोगों को बताऊं
1: बिल्कुल
0: कि आप, आपके पास अगर तालाब है, तालाब से आप बहुत कुछ इनकम कर सकते हैं। मैनग्रोव की कोई इम्पोर्टेंस नहीं करता है,
1: जी जी
0: मैनग्रोव से कितना केकड़ा बनता है, कितने टाइप के खाना आता है। आज भी करोड़ों लोग दुनिया में मैनग्रोव से चीज़ें ऐसी आती हैं जिससे लोग खाते हैं, खा के जिंदा हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैनग्रोव कंजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक वाटर बॉडी में से आता है। उसी तरह हर तालाब को कंजर्व करना ज़रूरी है, ताकि उसमें से मछलियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की, चीज़ें उसमें से मिलती है। वाटर बेस्ड बहुत सारे फार्मिंग टेक्निक्स आ गए हैं आजकल, तो फ्लोटिंग फार्म भी शुरू हो गया है। और तालाबों का रक्षा करना हर किसान के लिए तो पहला धर्म होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने कैंपेन भी लाया है। वो पॉली पॉन्ड बना के देते हैं गवर्नमेंट के तरफ से। हर किसान को बोला गया है कि आपके पास अगर 5 एकड़ जमीन है, उसमें से आधा एकड़ में आप पॉली पॉन्ड बनाइए, बारिश का पानी उसमें संचय कीजिए, उसके अंदर जमा कीजिए। और न्यू टेक्नोलॉजी है आजकल, टेक्निक्स हैं, लोग उसका बहुत फायदा भी उठा रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट करोड़ों पॉली पॉन्ड बनाए हैं देश ने।
1: जी।
0: मैं तो बोलूंगा कि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, एक इंसानों का जो हिस्ट्री है, इतना बड़ा जल संरक्षण का अभियान कभी किसी ने न किया, न कभी होने वाला है, जो इस समय हमारे भारत देश में चल रहा है।
1: जी, जल संरक्षण से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब मुझे लगता है कि आपके काम के कुछ और दिलचस्प हिस्सों की बात करें। एक आपके काम का हिस्सा है जो आम से जुड़ा हुआ है, ये
0: जी
1: क्या मामला है भाई? आम आदमी से आम तक।
0: बिल्कुल, आम आम नहीं, खास है।
1: अच्छा, आम के बीजों का संरक्षण, वो क्या मामला है?
0: कभी ज्यादा पानी आ गया, हमारा खेत बह गया, कम पानी आ गया तो खेत जल गया, हम ये बोलते हैं। इसलिए पैडी बेस्ड कल्टीवेशन जो हम लोग कर रहे हैं, वो कहीं पे गलती कर रहे हैं। एक फार्मर पूरा निर्भर हो जाता है कि हम चावल का खेती करेंगे या ऐसा खेती करेंगे जो सिर्फ टॉप सॉइल से आता है, और जिसमें इतना इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, यूरिया, फर्टिलाइजर, क्या क्या डालना पड़ता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि पानी आए या ना आए, बारिश हो या ना हो, हमारा पेड़ कभी मरता नहीं है। एंड टॉप सॉइल, ऊपर का जो मिट्टी है 1-1.5 फुट का, इतना मैं बोलूँगा, इतना डेंजरस हो चुका है, जहरीला हो चुका है, कि ऐसा कुछ खेती किया जाए जो ज़मीन के सब सॉइल से आए। तो फल का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो जड़ उसका नीचे तक जाता है, नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, न्यूट्रिशंस आ रहे हैं। और फल, रोटी खाने से अच्छा है कि आप फल खाइए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को लेकर बहुत सीरियस हैं, एंड बातचीत चल रही थी, जब बात हो रही थी कि हम लोग फल मिशन फ्रूट्स क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मन की बात में लोगों को ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप फल खाइए ज़्यादा,
1: जी।
0: आप चावल क्यों खाते रहते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया में, हम लोगों ने हमारा खेत जितना जंगल था काट दिया है। जंगल काट काट के हम लोगों ने सीधा जमीन कर दिया, और उसमें सिर्फ चावल बो रहे हैं, शुगर केन बो रहे हैं, जितने फल के पेड़ काट दिए हैं, जंगल खत्म कर दिया है। अगर आप किसी को देखिए, जब खेती खत्म हो जाता है, सब पीला पीला मिट्टी दिखता है, काला मिट्टी तो दिखता भी नहीं है, इट इज ऑल बैरन लैंड। इसको बचाने के लिए मेड़ पे पेड़ प्रोग्राम आया है गवर्नमेंट का।
1: जी।
0: गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर आपके पास जितना भी जमीन है, 20% जमीन पे फल का पेड़ लगाएं।
1: जी।
0: और जब मैंने किसानों से पूछा फल का पेड़ क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो किसान बोले हमें तो कोई फल का पेड़ देता ही नहीं है साहब, हमें तो इमली का पेड़ दे रहे हैं फल के नाम पे, सिर्फ आंवला का पेड़ दे रहे हैं, हमें तो आम दीजिए तो मजा आए। तब मुझे समझ में आया, आम आम नहीं है, खास है।
1: क्या बात
0: किसी भी
1: है।
0: किसान को बोलिए आम का पेड़, बोले हाँ तुरंत, कभी नहीं मना करेगा।
1: जी।
0: आम हम लोग खुद भी खा लेते हैं, इतना ज्यादा कि एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं,
1: जी,
0: इतना
1: बिल्कुल।
0: बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। एंड आम एवरग्रीन पेड़ है, पतझड़ नहीं होता है आम में।
1: बिल्कुल।
0: और मैं लोगों को बोलता हूँ, आम का पेड़ एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें हर टाइप का जंगली जानवर रहता है।
1: वाह वाह।
0: एक चिड़ियों का घोंसला भी दिखेगा, उसमें लेपर्ड भी बैठा होगा, उसमें शेर भी बैठा होगा, उसमें एक बंदर भी बैठा होगा, और सांप भी रह रहा होगा। तो
1: हाँ।
0: एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है,
1: इसलिए आपने ये मुहिम शुरू की।
0: इसलिए मुहिम, मेरी कोशिश ये है कि फार्मर्स को आम का पेड़ दिया जाए। और सिर्फ आम का पेड़ तो ऐसे एक बहाना है, जब हम आम का पेड़ देते हैं तो उसके साथ 15 अलग अलग वैरायटी के पेड़ भी दिए जाते हैं,
1: फलों के।
0: फल के हैं, पॉलिनेशन के लिए, इमली, वहाँ नीम का भी पेड़ दिया जाता है, अलग अलग वैरायटी होते हैं, ताकि आम जो और बड़ा हो सके और नेचुरल तरीके से हो सके,
1: क्या बात है।
0: ये है इसका टेक्निक।
1: अच्छा, अब चलते चलते मैं चाहता हूं कि जो आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो जरूर दीजिए, ताकि ये तमाम बातें सुनने के बाद जो

0: लोग प्रेरित हों जो लोग इस पूरी मुहिम से जुड़ना चाहें या किसी और को जोड़ना चाहें, वो आपको किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेल कीजिए waterherooffindia@gmail.com पे।
0: जी,
1: एंड पिछले बार की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लिखिए कि आपका समस्या पूरे डिटेल में। सिर्फ हेलो लिख के भेजेंगे तो फिर बहुत ज्यादा समय जाता है। आपको जल संचय करना है तो कितना जमीन है, किस शहर से बोल रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है, वो डिटेल में लिखिए।
0: जमीन का क्या साइज है?
1: बिल्कुल,
0: जमीन का क्या मिजाज है?
1: छत का क्या साइज है अगर आपको घर में करना है? पानी की कमी है तो क्यों है, कितना है? थोड़ा सा डिटेल रहेगा तो हम और बेटर तरीके से समझा पाएंगे।
0: तो सुभजीत जी, आप सभी की ईमेल्स का इंतजार कर रहे हैं। आप ईमेल करेंगे तो इनसे जुड़ सकते हैं और उसके बाद आप अपने इलाके में पानी की समस्या का निदान कर सकते हैं। सुभजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार फिर गाने की फरमाइश करनी होगी, फिर आपसे इजाजत लेंगे।
1: बिल्कुल जी, एंड इस बार गाना आप डिसाइड कीजिए।
0: देखिए, आप पानी पर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि माचिस फिल्म का पानी पानी रे गाना सुनते हैं।
1: बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। आप भारत के वाटर हीरो हैं, हमारे भी हीरो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से लोगों को प्रेरित करते रहिए और सार्थक काम करते रहिए।
1: थैंक यू सो मच, धन्यवाद।

ये था आज का मैटिनी शो। आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग हैं और इस कार्यक्रम को जुबैर खान ने प्रस्तुत किया। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत और हाँ, वाटर प्रिजर्वेशन की दिशा में हम सबको काम आगे बढ़ाना ही है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफिम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है।

0: सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: सीता और गीता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आवाजें आशा भोसले मन्ना डे की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बाशु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन? कौन
0: लाया? आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल।

हसरत जयपुरी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे से आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम यादों की महफिल, और अभी आपने सुना हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
1: कहीं बे ख्याल हो कर यूं ही टूलिया किसी ने।
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
2: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।
3: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। दिन का एक बजने वाला है। कुछ ही पलों में आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम माई भारत के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को विकसित भारत की यात्रा में सक्रिय भागीदारी बनाना है। कार्यक्रम 4 जून से 30 जून तक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 सीमावर्ती गांवों में आयोजित किया गया। इसमें देश भर से चयनित 400 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता

अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों की 303 टीमों ने लगभग 2000 स्थानों पर दबिश देकर यह कार्रवाई की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी तथा एक दो स्थानों पर अति भारी वर्षा दर्ज की है। सबसे अधिक वर्षा सिरोही जिले की माउंट आबू तहसील में 20 सेंटीमीटर दर्ज की गई। इसके अलावा सिरोही में 9 सेंटीमीटर, श्रीगंगानगर जिले के करणपुर में 8 सेंटीमीटर, सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में 7 सेंटीमीटर तथा बाड़मेर जिले के बालोतरा और जोधपुर जिले के ओसिया में 6-6 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अजमेर जिले की जवाजा और सरवाड़ में भी 5-5 सेंटीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश संभागों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे बना हुआ है। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। ये शोध भविष्य में मानसिक रोगों की शुरुआती पहचान, बेहतर उपचार, स्वस्थ वृद्धावस्था और एआई आधारित नई तकनीकों के विकास में उपयोगी साबित हो सकता है। शोधकर्ताओं ने यह समझने का प्रयास किया कि हमारा मस्तिष्क ध्यान, स्मृति, भावनाओं और अचानक आने वाले खतरों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। अध्ययन में यह भी पता चलता है कि मस्तिष्क महत्वपूर्ण और गैर जरूरी सूचना

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

गीत वो कह रहे हैं कि जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। हमारे एक और साथी हैं कह रहे हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, इस तरह का रवैया हमें रखना चाहिए। एक और साथी कहते हैं कि आज गद्यांश में गम, आंसू, यादें, निराशा जैसे नकारात्मक विचारों से मन को सकारात्मकता की ओर कैसे ले जाया जाए, यही बात कही गई है। गम, निराशा, उदासी और अकेलापन जीवन के अनचाहे मेहमान जरूर हैं, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। निराशा के क्षणों में कृतज्ञता मन के अंधकार को मिटाने वाला सबसे अचूक दीपक है। सकारात्मकता एक दृष्टिकोण है जो आपके भीतर सोई हुई रचनात्मकता को जगा दे और अपनी जीवन ऊर्जा को पुनः जागृत कर देता है। तो बहुत सी बातें हमारे साथी भेज रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि नकारात्मकता या निराशा की भावना अक्सर आ सकती है हमारे मन में। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से आ सकती हैं। कभी कुछ परेशानियां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती हैं जो इस तरह की नकारात्मकता हमारे मन में ला देती हैं। कभी कभी कुछ विटामिन्स मिनरल्स की कमी की वजह से भी इस तरह का भाव हम हमेशा महसूस करते रहते हैं। तो इसलिए भी इन सारी चीज़ों का भी ध्यान देना जरूरी है। जरूरी नहीं कि अगर कभी कभी निराशा या ऐसा नकारात्मकता लगे तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा अगर ऐसा लगता रहे एक लंबे समय तक तो इसके लिए पूरी जांच पड़ताल करना भी बहुत जरूरी है। और ये भी हमें जांचना जरूरी है कि क्या आपको पता है कि ये जो गीत हम सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है और कौन है इसके संगीतकार। तो बताइए गीत सुनकर।

माई लव फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, दान सिंह का संगीत। तो संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथियों ने तो ये भी बताया कि शशि कपूर पर फिल्माया गया है ये गीत। हमारी एक और साथी कहती है कि मैं बहुत खुश मिजाज नेचर की हूँ, हर समय हंसती बोलती रहती हूँ, पर गीत मुझे सभी दुखी वाले ही पसंद हैं।

भाई ये बात तो एक अलग ही चीज है कि भाई दुखी गीत पसंद है लेकिन दुखी रहना पसंद नहीं है तो फिर चलाया जा सकता है। वैसे हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई मन की बात तो सबसे कहना मुश्किल होता है, और हमारे कुछ साथी कह रहे हैं दुख के बारे में बातें जब कर रहे हैं तो अलग अलग बातें बता रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई दुखी होना तो सभी के लिए स्वाभाविक है, सब हमेशा खुश तो नहीं रह सकते, लेकिन दुखी ही बने रहना ये एक प्रवृत्ति है जिसे हम बदल सकते हैं। और हमारे एक और साथी हैं जो बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन से गीत पसंद है। वैसे एक साथी ने कहा कि भाई आज की भारत में सभी गाने बहुत दुख वाले हो सकते हैं, पर कभी कभी सैड सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं। जीवन सुख दुख का मेला है आज के शब्द उन्होंने चुने हैं, और कहा है कि भूली हुई यादों हमें इतना न सताओ, कोई हमदम न रहा ये वो तेरे प्यार का गम, ये भी इनकी लिस्ट में शामिल गीत था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, और मंजिलें अपनी जगह रास्ते अपनी जगह ये गीत इन्हें पसंद है। तो जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, इस गीत के बोल को अगर हम ध्यान से सुने तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमेशा क्या किसी ऐसे व्यक्ति से हम मिलते हैं जिससे मिलने के बाद हम उदास हो जाते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या वो हमें बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं हमारी, या किस तरह से हमारे साथ उनका व्यवहार होता है जिसकी वजह से हम इस तरह से उदास हो जाते हैं, या उनकी उदास प्रवृत्ति ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से उदास होते हैं, तो इस बात पर भी गौर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग मित्रों की तरह मिलते हैं लेकिन बाद में ऐसा होता है कि उन्हें आलोचना करने की इतना आदत होती है कि वो जब आलोचना करते रहते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो सामने वाले को दुख दे रहे हैं, और हम उनकी बातें उनके विचार अपने मन में ले आते हैं और दुखी रहने लगते हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि उन्हें बहुत गीत पसंद है, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, और हमारे एक और साथी कौन रोता है किसी की बात पर, इस गीत के बारे में उन्होंने गीत को ही लिख भेजा। हमारे एक और साथियों कह रहे हैं कि कभी खुद पर कभी हालात पे रोना आया, और सही कहा है गीतकार ने कि कभी कभी अपनी ही नादानियां बेवकूफियां अपनी गलतियां और किसी के प्रति कुछ जरूरत से ज्यादा लगाव पर उनके व्यवहार से मन आहत होता है। कह रहे कि गीत के अथाह सागर में दुख भरे गीत एक तो नहीं है, फिर भी प्रिय गीतों में से अपनों में मैं बेगाना बेगाना और चंचल मन तेरी चतुराई कुछ काम न आई ये प्रमुख है। हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं हम दोनों फिल्म का गीत पसंद है, और साथी वो कह रहे हैं कि फिर वही शाम वही गम, शामे गम की कसम चल दिया कारवां ये गीत इन्हें पसंद है। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार जब नकारात्मकता या दुख हावी होने लगता है तो इस तरह के गीत और भी ज्यादा निराश कर देते हैं, तब कुछ सकारात्मकता

चित्रलेखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हालांकि जो चीजें नहीं पूछी थी उसका भी सही जवाब दिया है। और इस बात से खुशी तो हुई ही जाती है कि हमने जो पूछा, आप कितनी अच्छी तरह से अपनी जानकारियां हमसे बांटते हैं और साथ ही अपने जीवन की बातें भी हमसे साझा करते हैं। हमारे साथी ने कहा कि आज की इबारत में जीवन की सच्चाई को दर्शाती है, जीवन की राह बहुत कठिन है, खुशी कम, दर्द बेशुमार है, दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है कि आंसू बहाने का समय नहीं, कोई भी कदम उठा, रास्ता बना, कोई साथ चले ना चले, कहीं तो मंजिल मिलेगी, जैसे नदियां कल कल बहती रास्ता बना लेती हैं। गीत उन्होंने बताया है, किसी राह पर किसी मोड़ पर, ये गाना उन्होंने अपनी पसंद का इसमें शामिल किया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब जिंदगी की जमीन बंजर और निराशा से भरी लगने लगती है तो ऐसा महसूस होना बहुत स्वाभाविक है कि तकलीफों का यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन रात चाहे कितनी भी घनी और लंबी क्यों ना हो, वो सुबह के सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। तो इसी तरह की सकारात्मकता जब हम अपने अंदर रखते हैं तो वो सकारात्मक विचार ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गम और आंसू की बातें और गाने, इंसान अपने मनोभावों को कभी व्यक्त कर पाता है तो कभी नहीं, खासकर जब बात गमों की हो, वो मन ही मन अपने हालात से जूझता रहता है और तब तन्हाइयों में वो दर्द आंसू बनकर बहता है। किसी को पाने के बाद खोना और मिलने के बाद बिछड़ना, कहते हैं कि जब दर्द आंसू से छलकता है, मतलब इंसान जब रो लेता है तब उसका मन हल्का हो जाता है। दर्द भरी यादें कभी तो ताउम्र सताती हैं, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने मनपसंद कार्य में मन को लगाए, समाज सेवा, पशु पक्षियों की सेवा या गीत संगीत सीखे, गुने सुने, गाएं, व्यक्त होने से उस दर्द को कम कर सकते हैं। तो हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं, कहते हैं कि राहें बंद नहीं होती, बस नजर का दायरा कभी कभी छोटा पड़ जाता है। एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत हो, जिंदगी का पासा पलट देती है ये हिम्मत। जिंदगी के कैनवास पर अगर आज काला रंग गहरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी रंग खत्म हो गए, उस ब्रश को उठाने और एक नया रंग भरने की देर है। तो सकारात्मकता से भरी ये संदेश हमारे साथी भेज रहे हैं और हम आपसे यही जानना चाहते हैं किस तरह से आप सकारात्मकता से साथ सामना करते हैं अपने जीवन में कोई भी परेशानियों का, कठिनाइयों का। और दुखी होना कोई बुरी बात नहीं है, जैसा कि हमारे साथी कह रहे हैं कि भी दुख ही होते हैं, अकेले में आंसू बहाते हैं, वो भी चलिए कोई बात नहीं, अगर ये काम एक आध दिन हो रहा है, लेकिन लगातार अगर यही हो रहा है तो बहुत जरूरी है कि बाहर निकलें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपकी आपका साथ नहीं देगा या आपकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। कभी कभी हमारे मन का वहम होता है, कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से, किस परिस्थिति में हैं, किस निराशा से जूझ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में अगर हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं तो वो बात सुनते

0: हैं। और सुख दुख की बात अगर हम कहें तो भाई सुख दुख से संबंधित ये गीत अगर आप सुने तो ये गीत आपको सकारात्मकता का संदेश तो देगा ही। और फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताने वाले हैं।
1: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे।

मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर, और बात हो रही है कि जब निराशा हमें घेरती है तो हम क्या करते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर मिल जाए किसी प्यारे से दोस्त या किसी अपने का थोड़ा सा साथ या थोड़ा सा सहयोग, तो हमें लगता है शायद कोई इंसान इस परेशानी में रहेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ चीजें दौलत से नहीं बात करने से भी संभल जाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभार मन किसी जाने अनजाने दुख से या यूं ही निराश होकर उसी में डूबता चला जाता है, कभी कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसे में उस जगह से उठकर थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ी चहलकदमी करें, एक दो लोगों से कुछ हल्की फुल्की बातें करके मन को बहलाएं, मन को कहीं और लगाएं तो कुछ मन हल्का हो जाता है, वरना जितना डूबोगे मन इतना ही डूबता जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक ही जगह पर बैठे रहने से भी कभी कभी वो बात हमारे मन से निकलती ही नहीं, तो जरूरी है कि हम बाहर निकलें, लोगों से मिलें, या उठकर बस एक चार पांच कदम भी अगर हम चल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस विचार से निकल पाते हैं और कुछ और भी सोच पाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत हमें जिंदगी के नकारात्मक पहलुओं के साथ ही सकारात्मक सोच की तरफ ले जाने के लिए सक्रिय कर रही है, किंतु सच्चाई इससे कुछ अलग है। सच्चाई सकारात्मक पहलुओं के करीब अवश्य ही है, और जैसे नकारात्मक ऊर्जा हमें सकारात्मक सोच की तरफ इशारा किया करती है, हम उसकी सहायता से ही अपनी सकारात्मक सोच की तरफ प्रवृत्त होते हैं। उसी तरह हमें सकारात्मक सोच से भी बचते हुए उस अद्वैत आनंद की इबादत से ही ओतप्रोत रहते हुए संदेश देते हुए स्पष्ट करता है कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, यानी जो भी वस्तु है वो गोविंद यानी भगवान की दी हुई वस्तुएं हैं और उन्हें हम समर्पित कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात आपने कही एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि सकारात्मकता नकारात्मकता दोनों ही जीवन के एक पहलू हैं और इन्हें बदलते रहना चाहिए। जैसे कि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, ऐसा कहते हैं कि समय एक सा नहीं रहता, उसी तरह मन के विचारों को भी एक ही तरफ एक ही जगह पर बचाकर या जमा करके नहीं रखना चाहिए। हमारे एक साथी कहते हैं कि निराशा हर किसी के जीवन में आती है, अब ये उस इंसान पर निर्भर करता है कि उसमें कितना आत्मबल है कि वो संसार के रचयिता पर विश्वास करते हुए नकारात्मकता को छोड़कर उस निराशा को आशा में बदलते हुए फिर से हिम्मत करके कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और जो निराशा का ही दामन थामे रहते हैं वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते, इसलिए आशावान रहना ही जीवन की सच्चाई है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन की निरर्थकता का बोध ही घोर निराशा और नकारात्मकता है। कभी कभी मनुष्य अर्थहीनता की स्थिति से जूझता है तो मनुष्य का चेतन और अवचेतन दोनों ही पीड़ा से घिर जाते हैं। जीवन इच्छाओं और संभावनाओं का अनंत सागर है, इसलिए जीवन में दुख और निराशा उत्पन्न होती है। मनुष्य का अवचेतन मन दमित इच्छाओं का मार्ग है। जागृत अवस्था की नकारात्मकता जब मानसिक प्रतिरोध तोड़ देती है तो स्वप्न में दबी हुई पीड़ा अवसाद और आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलती है। तो जरूरी तो यही है कि उस पीड़ा उस निराशा उस नकारात्मकता को बाहर निकाल दिया जाए, और जरूरत तो ये भी है कि बातों के साथ साथ गीतों का सिलसिला भी जारी रखा जाए। तो चलिए ये गीत आपको सुनवाते हैं, और इस गीत को हमने लिया है सीमा फिल्म से। ये बताइए कि इसमें नजर कौन आती है।

सीमा फिल्म का ये गीत सुना, और इस फिल्म में और इस गीत में नजर आती हैं नूतन शुभा खोटे के साथ। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि फिल्म चित्रलेखा के गीत के बारे में उन्होंने लिखा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की भारत का सारांश है कोई क्या जाने पीर पराई। और हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ये गीत जब दिल टूटता है तो आशिक लोग गाते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से इसे देखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और गीत के बारे में ही ऐसा कह रहे हैं ऐसा हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मात्राधिक आशा ही कष्ट का कारण है, सबसे कष्ट और निराशा अपने कार्यरत आत्मनिर्भर बच्चों के फिजूल खर्ची से होता है। 8,000 के जूते क्या मुकुट है जो सिर पर पहनना है। भाई देखिए, ये भी एक कारण हो जाता है कभी कभी, जब हम ये सोचते हैं कि इस चीज की क्या जरूरत थी। हो सकता है किसी और के नजरिए में उस चीज की उन्हें जरूरत हो सकता है, वो ज्यादा उन्हें आरामदायक लगते हों, या कुछ बातें हों उनके मन के बारे में भी जानना जरूरी। कभी कभी हम दूसरे ने क्या किया ये बात जब देखते हैं, तो इससे जो दुख हमारे मन में आता है या बहुत सी असंतोष पैदा जब होता है, तो ये भी दुख का बड़ा कारण होता है जिसका निवारण हमारे हाथ में ही होता है। हमारे को साथी कह रहे हैं कि जब मन दुखी उदास और निराश होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता और चारों तरफ अंधेरा या खालीपन सा महसूस होता है, तब मुकेश जी का गाया गीत याद आता है, जाऊं कहां बताए दिल दुनिया बड़ी है संग दिल। वहीं हमारे साथी का कहना है कि अपने से बिछड़ने का दुख सबसे ज्यादा निराश करता है, पर ये गीत उसके लिए परफेक्ट है। किसी जो भी गीत उन्होंने सुना उसमें से एक गीत के बारे में ये कह रहे हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि दूसरों का दुख दर्द देख कर मेरा दिल गहराई से भर उठता है, जब भी किसी को तकलीफ में देखता हूं तो उसकी वेदना जैसे मेरी अपनी बन जाती है, मन इस कदर भावुक होता है कि पूरे दिन उदासी की एक गहरी परस्सी छाई रहती है। सोचता हूं कि काश मैं हर किसी के आंसू पोंछ पाता। आज भी ऐसा ही हुआ, किसी की पीड़ा ने भीतर तक झकझोर दिया और पूरा दिन एक अनकहे भारीपन और उदासी में बीत रहा है। अति संवेदनशीलता भी कभी कभी हमारे दुख का कारण होती है, तो उनके लिए अगर हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। और ये देखिए, एक बात हमें याद रखनी चाहिए हमेशा कि भाई हर एक व्यक्ति का दुख दूर करना या हर एक व्यक्ति की परेशानी दूर करना तो ईश्वर के हाथ में भी नहीं है। तो इस वजह से हम तो केवल मानव हैं, तो ये सोचना चाहिए कि हर चीज कर लेना हमारे बस की बात नहीं है, और इसलिए दुखी होना भी ये हमारे बस में है कि हम इसलिए दुखी ना हो। हमारे एक और साथी कहने कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं, सुख के क्षणों में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तब परिवार ही है जो हर परिस्थिति में हमारा हाथ थामे रखता है। गीत उन्होंने बताया, बहारो मेरा जीवन भी संवारो। हमारे एक और साथी कहने कि जब भी मन किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में हो जाता है तो ये गीत हौसला बढ़ाते कि समझौता गमों से कर लो। हमारे एक और साथी कहने की आवाज देकर मुझे तुम बुलाओ, बहुत उदास हूं मैं, मुझे गले लगा लो। जब भी ये दिल उदास होता है ये गीत इन्हें काफी पसंद है, जो सैड गीत कौन से पसंद है हमने पूछा था। हमारे एक और साथी कहने की कबीर सिंह फिल्म का गाना तुझे कितना चाहने लगे हम, जुबिन नौटियाल ने सिखाया है, ये गाना इन्हें बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, ये गीत इन्हें पसंद है। और हमारे कुछ साथी बता रहे हैं कि उनकी लिस्ट में से गीत शामिल हो गए हैं। एक और साथी का कहना है कि

तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ उनकी जो दुख तकलीफ हैं उन्हें बांटने की कोशिश कर सकते हैं और उनके वो दोस्त बन सकते हैं जो जिसकी उन्हें तलाश है ना। तो चलिए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम का एक ऐसा ही गीत। आपको ये बताना है कि किस फिल्म से ये गीत हमने लिया।

कालिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हमें, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चाहे दुख हो या खुशी, एक गीत तो हम हर समय सुनते हैं कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और ये गीत इन्हें बहुत पसंद है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लाखों तारे आसमान में, ये गाना उन्हें बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी का कहना है कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, ये गीत उन्हें पसंद है। हमारे एक साथी ने तलत महमूद के गीत उन्हें पसंद है ऐसा कहा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुकेश जी के दर्द भरे गीत बहुत अच्छे लगते हैं। एक साथी कहते हैं मेरे महबूब कयामत होगी, ये गीत उन्हें बहुत पसंद है। और हमारे और साथियों ने गीत कौन सा बताया बताएं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि धूप बहुत है राहों में, पर छाँव भी कभी मुस्कुराएगी, गम का मरुस्थल लंबा सही पर हरियाली लौट कर आएगी। तारे सुन सुनकर थके पैर अब ताने सुन सुनकर थके पैर अब मंजिलों की ओर बढ़ेंगे, सुख दुख के ताने बाने में सहयोग के धागे बुन लेंगे। ये इन्होंने लिख भेजा है सकारात्मक लघु काव्य आज की भारत से संबंधित, और उन्होंने कहा कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना है, इस तरह से उन्होंने

अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट भेजी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निराशा या नेगेटिविटी इंसान को जब आती है उसके मन को यह एहसास होता है कि अब मुझे हर कोशिश कार्य में असफलता मिल रही है, पर उसी इंसान को जब कोई आशा की किरण किसी विचार से या किसी व्यक्ति से मिलती है तो वह पुनः निराशा छोड़ कार्य करने लगता है। जीवन में आशा और निराशा आती रहती है। कुछ गीत जो इस विषय में है, मंदे तो काहे न धीर धरे, और भी बहुत से गीतों के बारे में इन्होंने लिख भेजा है। वहीं हमारे एक साथी हैं वो कहते हैं ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ये गीत उन्हें बहुत पसंद है। निराशा की राह छोड़ो, आशा का दीप जलाओ, हमारे एक साथी कह रहे हैं। एक और साथी कहते हैं कि अंधेरा कभी प्रकाश को नहीं हरा सकता, एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को दूर कर देता है। उसी तरह एक सकारात्मक विचार अनेक नकारात्मक विचारों पर भारी पड़ सकती है। तो हमारे एक और साथी का कहना है, देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, ये गीत उन्हें पसंद है। इस तरह से जब कोई चुप करवाने वाला हो या समझाने वाला हो तो भी निराशा बहुत जल्दी दूर हो जाती है, जैसे कि इस गीत में। बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

जाने तू या जाने ना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राशिद अली की आवाज, अब्बास टायरवाला के बोल या रहमान का संगीत, और फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। तो कभी कभी अगर कोई हो ऐसा जो हमें बता दे कि भाई इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं और हम सभी आपके साथ हैं, तो उस दुख से ऐसा मत कहिए कि बिल्कुल ये दुख भूल जाओ और कल से तुम्हें बिल्कुल हंसते रहना है। ऐसा कहना तो बड़ा ही अजीब होता है, क्योंकि भाई ऐसा कहने से तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी अगर दुख में डूबा है, निराशा में डूबा है, तो अचानक से उठ खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आपका साथ उसे धीरे धीरे उस चीज से बाहर ला सकता है। हमारे एक साथी कहने की, वैसे तो मैं आशावादी ही हूँ, माता रानी की असीम कृपा है। जब भी कभी उदास या दुखी होता था या कभी कभी उदास होता हूँ, तो शादी से पहले मेरी माता जी हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, शादी के बाद और अभी तक मेरी धर्मपत्नी मेरे उत्साह और हिम्मत बढ़ाती, और तो और मेरी दोनों बेटियां मेरी परेशानियों में कहती हैं कि पापा जी हमें बेटियां ना समझकर अपने बेटे समझो, हमें परेशानी बताइए, हम हैं ना। तो भाई बेटियों को भी परेशानी बताई जा सकती है, जरूरी नहीं है कि परेशानी सिर्फ बेटों को बताई जाए, लेकिन फिर भी ये उनका अपना एक तरीका है बात करने का। हमारे एक और साथी कह रहे, सुख और दुख तो दुख छांव धूप छांव की तरह हैं, जो जीवन में आते ही रहते हैं, जैसे हमारा एक पैर आगे चलता है और दूसरा पीछे। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है कि रात में रोक ली हो सूरज की रोशनी? तो हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए, और इस मामले में गीत हमारा बहुत साथ देते हैं। और जब मैं टेंशन में होती हूँ तो अपने पसंदीदा गीत सारे गीत गा लेती हूँ और मेरी टेंशन 80% तक दूर हो जाती है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा मित्र हो तो क्या कहना, और क्या हर सफर आसानी से कट जाता है। वही हमारे एक साथी का कहना है कि दुखी होना सिर्फ समय नष्ट करता है, कुछ हाथ तो आता नहीं, इसलिए लगता है कि दुखी होने से फायदा ही क्या है, जो है गुजर जाएगा, ये एक बात बहुत ज्यादा मन को सुकून देती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन की जटिलता से जुड़ी चीजें आज की इबारत में शामिल है। इस बेहद चुनौतीपूर्ण जिंदगी से गुजरते हुए आदमी का मन कभी कभार बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, कुछ लोग तनाव के कारण बीमार पड़ जाते हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे दिलीप की दुकांत फिल्मों की याद आ रही है, दिलीप कुमार की बात वो कह रहे हैं, उनकी फिल्म दिल दिया दर्द दिया का एक गाना, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये गीत भी आज के कार्यक्रम के लिए उन्हें लगता है कि बिल्कुल सटीक बैठता है। और बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं कि हमें लेकिन ये बताइए कि वो कौन सा हैप्पी या कहें कि उम्मीदों भरा गीत है जो आपको दुख जब बहुत ज्यादा होता है और आप दुखी गाने सुन सुनकर परेशान हो जाते हैं और ज्यादा दुख में डूब जाते हैं, तो वो कौन सा एक उत्साहवर्धक गीत है जो आपका उत्साहवर्धन करता है और आपको उस दुख से बाहर आने में मदद करता है। हो सकता है कोई दुखी गीत ही हो जो आपको आगे आने के लिए मदद करता हो और वापस उठ खड़े होने के लिए और एक आशा उम्मीद रखने के लिए मदद करता हो, हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये गीत। फिल्म का नाम बताइए।

नया दौर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया। और जाने तो या जाने ना फिल्म का जो गीत हमने सुनवाया था, हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि भाई हम तो हैं सीनियर सिटीजन और हमें तो इस के बारे में पता नहीं, सिलेबस से बाहर की चीज है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि मुकेश से अपनी दोस्ती शुरू से रही, अब तो पत्नी भी नहीं रही, तो मुकेश के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। परिवर्तन नियति है, हर रात के बाद सवेरा होता ही है, इसी तरह दुख का भी अंत होता है, सुख भी आता है, पतझड़ के बाद नई कोपलें भी आती हैं, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि वो देर से शामिल हुए तो तेरी आंखों के आंसू पी जाऊं, ऐसी तो मेरी तकदीर कहां, ये गीत उन्हें पसंद है। फिल्म जाने तो या जाने ना का गीत के बारे में हमारे साथियों ने बताया। और हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कभी कभी पुराने गीतों को ही ज्यादा जानते हैं और नए गीत सिलेबस से बाहर के जब लग रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको जिस तरह से सुख और दुख के बारे में बता रहे हैं, उसी तरह से पुराने जमाने और नए जमाने दोनों से अपडेट रखें। तो एक गीत फिर से आपके लिए नए जमाने का, ये बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

छिछोरे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और जिंदगी में किसी भी तरह की कोई फिक्र ना कीजिए, बेफिक्र होकर जीना शुरू कीजिए। और सुरीला सफर कार्यक्रम से बस लेते हैं इजाजत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

दोस्तों, आजकल दुनिया से भोलापन यानी मासूमियत जैसे गायब होती जा रही है। जरूरत पड़ने पर बहुत चालाक और बड़े व्यवहार कुशल लोग अपने भोलेपन का स्वांग जरूर रच लेते हैं, लेकिन जल्दी ही ओढ़ी हुई मासूमियत गायब हो जाती है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि उम्र के हर पड़ाव में थोड़ी मासूमियत, थोड़ा भोलापन बचा कर रखना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि जो मासूम है वो ही किसी से सच्चा प्यार कर सकते हैं, जो भोले हैं वही किसी की भलाई कर सकते हैं।

हाँ तो दोस्तों, बात चल रही थी मासूमियत की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे मासूमियत गुम होने लगती है। लेकिन जो लोग छल प्रपंच से अपने को दूर रख पाते हैं, जो लोग दूसरों से कम नफरत करते हैं, जो लोग हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रख लेते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों में बुराई नहीं ढूंढते, जो लोग मन में कुछ और बाहर कुछ और वाला बर्ताव नहीं करते, वो लोग लंबे समय तक अपनी मासूमियत बचाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा भी यही कहना है दोस्तों कि कितने भी हो जाइए समझदार, कितने भी हो जाइए चतुर और व्यवहार कुशल, लेकिन मन के किसी कोने में बचाए रखिए अपनी मासूमियत।

दोस्तों, बच्चों में एक किस्म का भोलापन होता है और इसे उम्र भर कायम रखना चाहिए, लेकिन आज ये भोलापन बच्चों में भी जैसे समाप्त हो रहा है। आजकल के बच्चे इतने सयाने, इतने व्यवहार कुशल और तेज हो गए हैं कि उतने किसी जमाने में नहीं थे। आजकल के बच्चे बच्चे कम, सयाने ज्यादा लगते।

0: अब आज का त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो

0: नौदेवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए चार विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: सीआरपीएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी सीजेपी की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
3: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
4: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
5: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर DP सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और CGP के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

एस कोहली का संगीत बद्ध ये गीत आपने सुना। नमस्ते जी फिल्म के इस गीत को लता मंगेशकर ने गाया और अनजान के बोल थे। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं उजाला फिल्म से ये गीत। मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अरे ललन मिया, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गूंज उठी शहनाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और लता मंगेशकर की आवाजें, भरत व्यास के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

दिल दे के देखो। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों में ये अगला गीत। छोटी बहन फिल्म के इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा और शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया।

छोटी बहन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सुबीर सेन और लता मंगेशकर की आवाजें, हजरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको याद दिला दें कि आज शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में आप सुनेंगे फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और कार्यक्रम सदाबहार नक में आइए अब सुनते हैं मुगले आजम फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।
1: विविध भारती पर मन चाहे गीत कार्यक्रम के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आपकी फरमाइशी गीतों की फरमाइश पूरी करें, उससे पहले जानते हैं आज के जो ये कार्यक्रम है मन चाहे गीत, उसमें पत्र भेजने का क्या तरीका है और क्या है नियम।
2: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
2: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: तो कार्यक्रम मन चाहे गीत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम का पहला गीत किसकी फरमाइश पर सुनवाने वाले हैं ये तो बताएंगे ही, लेकिन वो गीत है मेरे हुजूर फिल्म से, ये आपको पहले बता रहे हैं। और इसकी फरमाइश आई है न्यू ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद अहमद रायनी, अबरार अहमद रायनी, शकीला बेगम रायनी, बद्री प्रसाद यादव, सौरभ सोनवानी, एम ए कानपुरी, आर के कानपुरी ने भी इस गीत की फरमाइश यहीं से भेजी है। और दतरंगी भाटापारा से नोखीलाल वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा भी सुनना चाहते हैं मेरे हुजूर फिल्म से गीत। मोहम्मद रफी की आवाज, हसर जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, अपनी पसंद पर सुनिए ये गीत।

0: से मर ना जा।
1: मेरी हुजूर फिल्म का ये गीत आपने सुना, मन चाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और अब कार्यक्रम का अगला गीत जिनकी फरमाइश।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और जिसके मन चाहे गीत को हम सुनने वाले हैं उनके नाम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको गीत सुनवा दें। लीडर फिल्म से एक गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, और गीत के बाद बताएंगे कि किसकी पसंद पर सुनवाया ये गीत।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल आपने सुने। नौशाद का संगीत फिल्म लीडर से गीत आपने सुना और इस गीत की फरमाइश हमें आई थी जोधपुर राजस्थान से मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इजान, सनोवर रानू, हुमेहानी और साथ ही नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव, ज्योति रानी, गुरमनंत ने भी इसी गीत की फरमाइश की थी। कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अगला मनचाहा गीत है सगीना फिल्म से और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु सिंह, सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी आप सभी की पसंद पर सभी को सुनवा रहे हैं सगीना फिल्म से गीत और इस गीत में आवाज किशोर कुमार की।

माफ कीरे माफ कीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे माफ कीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया इस साला में तो साहब बन गया attention salamat sa

तेली या गंगू तेली, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा, हम साला बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया,

0: से गोरा कोई लंदन का।
1: सगीना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और पंकज मित्रा की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत। तो किसी की पसंद पर वो गीत तो हमने सुनवा दिया, लेकिन अगला गीत किसकी पसंद पर है ये आपको बताते हैं। अगला गीत है गिरधारी लाल दुआ महितपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, इन्होंने अपनी पसंद भेजी है। साथ ही सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया, इन्होंने भी अपनी पसंद भेजी है। और आप सभी की पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं सिंग इज किंग फिल्म से गीत। लव जैन जुनेजा ने इसे और सुजी क्यू की आवाजें हैं, मयूरपुरी के बोल प्रीतम का संगीत। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

सुजैन डिमेलो और लव जंजुआ की आवाजों में आपने सुना सिंह इज किंग फिल्म का ये गीत, मयूर पुरी ने से लिखा, प्रीतम का संगीत। अब कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। इतिहास फिल्म से ये गीत सुनने की फरमाइश आई है। मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अजान, सैफ अली खान, मोहब्बत अली, रजाक अली, नथु खान, सेमपुरा बीकानेर से आप सभी हैं, और बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी केशरी की पसंद भी है। चोरी चोरी ये गीत सुनना चाहते हैं। इतिहास फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, समीर के बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत। तो सुनिए ये गीत आपकी पसंद पर।

0: इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: मनचाहे गीत।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: ओझा

0: हेलो, रीता स्पीकिंग। जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ। आप? अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता। क्या कहा? कब? अस्पताल? अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
1: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
0: सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
1: कहाँ आ गया हरीश? रितु,
2: आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि हमारे यहाँ भी कोई स्थान रिक्त नहीं है। आप क्या फरमाते हैं? यस सर, आई रिग्रेट टू से दैट द पोस्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एडवर्टाइज्ड बाय अस हैज सिंस बीन फिल्ड अप। हाउएवर, सम पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क्स आर स्टिल लाइंग वेकेंट। लोअर डिवीजन क्लर्क? और आप किस सिंहासन पर बैठाने वाले हैं? जनाब चंद्रा साहेब, हमारे मदरसे में अंग्रेजी के मुदर्रिस की जगह खाली है, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी माली हालत इस वक्त नाजुक है, इसलिए हम आपको फिलहाल 100 रुपया महीना से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी के एमए पीएचडी को 100 रुपया महीना की मास्टरी?
3: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
2: तुम भी आ गए कंगाली में आटा गीला करने।
3: वो तो आना ही था।
2: पहले सिगरेट तलब करोगे, थोड़ी देर मेरा दिमाग खाओगे और फिर चाय की मांग करोगे।
3: ओफो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे ऑस्कर वाइल्ड ने ही तो कहा था कि जब मैं कर्ज में होता हूँ तो हर खर्च बर्दाश्त कर सकता हूँ।
2: मेरी हालत तो इससे भी बदतर है जाने मन।
3: हाँ?
2: मुझे 100 रुपये महीने की मास्टरी मिल रही है। जो लोग इस उम्मीद में कर्ज दिए जा रहे थे कि डॉक्टर हरीशचंद्र आज नहीं तो कल किसी बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, वे भी मेरी मास्टरी देखकर कर्ज देना बंद कर देंगे।
3: अच्छा, वेरी गुड। क्यों हरीश, कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते?
2: कारोबार के लिए पूंजी कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें तो मालूम है अख्तर, पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे वो सब पढ़ाई में खत्म हो गया है। अब सिवा कर्ज के मेरे पास कुछ नहीं है।
4: अरे अच्छा? क्या साजिश हो रही है?
2: अभी तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप तशरीफ लाए हैं तो जरूर होगी। क्यों अख्तर? होगी।
4: ओहो जनाब अख्तर साहब, ही हंड्रेड टाइम्स
3: आधा वर्ष। मियाँ,
4: मैं पूछता हूँ, आखिर बात क्या है? कोई पार्टी वार्टी है क्या?
3: अरे मियाँ, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है। हरीश की बेकारी पर मातमपुरसी करने चला आया था।
4: भाई देखो अख्तर भाई, अगर बेकारी के लिए मातमपुरसी होने लगे ना, तो ये देश मातमपुरसी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकेगा। ये मेरी अपनी राय।
3: तो और करता भी क्या है?
4: देखो हरीश, ये बेकारी का सवाल तुम व्यक्तिगत सवाल मत समझो, ये पूरे समाज और सारे देश का सवाल है।
2: सचिन, व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सवाल नहीं तो और क्या है? बेकार इंसान को जिन कमियों का सामना करना पड़ता है, समाज में जिन अपमानों का शिकार होना पड़ता है, वे सब इंसान भोगता है, क्योंकि इंसान के मन होता है, आत्मा होती है।
4: हाँ, मैं मानता हूँ ये सही है कि व्यक्ति के मन होता है, आत्मा होती है, और समाज का कोई मन नहीं होता, कोई आत्मा भी नहीं होती। लेकिन मैं फिलोसफी की चर्चा नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ हरीश के इस समस्या का इलाज व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता, सामाजिक इलाज से ही समस्या को सुलझाया जा सकता है। ये मेरी अपनी राय।
3: यानी आपकी नेक सलाह ये है कि डॉक्टर हरीश चंद्र इनकलाब का परचम ऊंचा कर सड़कें नापने का काम शुरू कर दें।
4: जी हाँ, पर अकेले नहीं, बल्कि और बेकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि इनकलाब के बिना बेकारी खत्म नहीं हो सकती।
2: सचिन, तुम्हारे विचार में जानता हूं, तुम हर मर्ज का इलाज अपनी पार्टी के इशारे पर होने वाली क्रांति में देखते हो, लेकिन ये तो बताओ कि क्रांति होने तक बेकार इंसान क्या करेगा?
3: सचिन, ये भी गौरतलब है कि इनकलाब गुत्थियां सुलझाने से ज्यादा नई गुत्थियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से शुरू किए इनकलाब बेहाथ होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाती है।
4: अख्तर, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल रिएक्शनरी हो।
5: तुम इनकलाब का ना मतलब समझते हो और ना ही उसकी ऐतिहासिक अनिवार्यता।
6: अरे अरे, ये तुम दोनों ने क्या राजनीतिक अखाड़ेबाजी शुरू कर दी है? यहाँ रोटी रोजी के लिए परेशान है और आप लोग हैं कि सिद्धांत बगाड़ रहे हैं।
3: करेक्ट सर। सचिन भाई, सुलह की दरख्वास्त करता हूँ,
2: बशर्ते कि उसकी घोषणा चाय के प्याले से हो।
3: करेक्ट।
6: अरे वो तो अख्तर के आते ही मैंने कह दिया था कि हजरत पहले सिगरेट मांगेंगे, फिर सर खाएंगे और आखिर में चाय पर पहुंचेंगे। चलो चलो बाहर चलो
2: चलो चलो।
7: रितु, क्या मंगवाए?
0: बस कॉफी।
7: दारा
8: जी सर,
7: दो कोल्ड कॉफी।
0: तुम्हारी अर्जियों के कोई जवाब आए?
7: आए, जितनी अच्छी जगह थी सब भर चुकी है, बची है क्लर्की और मास्टरी की जगह, वे खाली है। तनख्वाह भी काफी शानदार है, 100 रुपया महीना।
0: अच्छी नौकरियां भी आखिर किसी न किसी को तो मिलती हैं।
7: जरूर मिलती है।
0: फिर मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं मिलती?
7: प्रोफेसर डॉक्टर मिस रीता सिन्हा, आप बड़ी भोली है।
0: अच्छा
7: रितु, जानती हो नौकरियां किन्हें मिलती है? चाचा भतीजे को सबसे अधिक नंबर देता है।
0: तुम भी जाति प्रदेश और रिश्ते की सीढ़ी पर पैर रखकर ऊंची कुर्सी पर पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते?
7: क्योंकि मैं जाति मानता हूँ और न प्रदेश से बंधा हूँ, रिश्तेदार कोई है नहीं।
0: तुम मजाक कर रहे हो।
7: मजाक मैं नहीं, मेरी तकदीर कर रही है। चूंकि मैं न जाति से बंधा हूँ और न प्रदेश से, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ।
0: हरीश, बेकारी तुम में कड़वाहट पैदा कर रही है। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
7: मेरी सुबह तुम्हारे एक शब्द के इंतजार में रुकी हुई है रीता।
0: फिर वही बात।
7: रीतू, शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेरा सारा खालीपन दूर हो जाएगा, जिंदगी जीने के लायक बन जाएगी। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, वो एक खाली प्याला है।
0: जिंदगी के प्याले में कई चीजें पी जा सकती हैं, उसे शादी के लिए खाली छोड़ देना क्या उचित है?
7: हर आदमी को अलग अलग समय पर अलग अलग प्यास होती है। आज मेरी प्यास दूसरी है, मुझे स्नेह चाहिए। किसी के प्रेम की उंगली पकड़कर मैं ऊपर उठ सकता हूँ, जिंदगी की निराशा और दुख को जीत सकता हूँ, इंसान की तरह खड़ा हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ।
0: अगर मेरे स्नेह से सब मिल सकता हो तो तुम जानते हो वो तुम्हारा है। रहा शादी का सवाल, उसके लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साल दो साल में शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया जाएगा।
7: साल दो साल, ये सजा क्यों?
0: ये सजा नहीं, ये परीक्षा है, कसौटी है, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारा प्रेम साल दो साल के इंतजार को सह सकता है।
7: तब तक मैं क्या करूं?
8: सर बिल।
0: तब तक बिल चुकाओ।
9: अख्तर, हरीश के मामले में तुम कहां तक पहुंचे हो?
10: मेजर, हरीश को दल में लाना आसान नहीं है।
9: आसान होता तो तुम्हें ये नहीं सौंपा जाता। और ये मत भूलो कि हरीश का नाम तुमने ही सुझाया था।
10: इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया।
9: शायरी नहीं, मुझे रिपोर्ट चाहिए।
10: हरीश ने भी नाउम्मीदी के दौर में पैर रखा ही है, गहरे में पहुंचते ही हम उसे अपने पास घसीट लाएंगे।
9: एक बात ध्यान रखना, जब तक हरीश दिमागी तौर से तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके सामने इनकलाब की बातें मत करना, वो कहीं भागने खड़ा हो।
10: मैं बचपन से उसके साथ पढ़ा हूं मेजर, उसकी नस नस पहचानता हूं। एनसीसी में भी हम दोनों साथ थे, अपने जमाने का वो सबसे बढ़िया कैडेट था, निशानेबाजी में बेजोड़।
9: यही तारीफ सुनकर तो मैं उसे दल में लेने के लिए राजी हुआ हूं। उसके जीवन में कहीं कोई लड़की है?
10: जी।
9: मैं पूछ रहा था वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है? ऐसे लोगों को खतरे के काम में लाना कठिन होता है।
10: समझ गया, अभी उस पर मोहब्बत की लगाम नहीं लगी है मेजर।
9: फिर ऐसा करो, पुराना नुस्खा ही काम में लाओ।
10: वो क्या मेजर?
9: अलका से

0: मुलाकात करा दो। अलका इस काम में उस्ताद है। जयंती लाल को वही तो दल में लाई थी।
1: नथिंग लाइक ट्राइंग इट मेजर, लेकिन साकी के साथ सागर भी चाहिए।
0: यू आर राइट एंड दैट मीन्स मनी।
1: ऑफ कोर्स,
0: ये लो 100 रुपए, वेस्ट मत करना। अलका से भी कह देना।
1: जी।
0: सुनो, अलका को हरीश की पूरी बैकग्राउंड समझा देना, और देखो दोनों का परिचय कराकर तुम स्टेज से हट जाना।
1: आप फिक्र मत करें मेजर।
0: ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक।
1: थैंक्स।
2: कहो हरीश। अरे भाई क्या हो रहा है?
3: आओ आओ, बहुत दिन बाद दिखलाई पड़ रहे हो, कहाँ थे?
2: अरे यहीं था यार, वो रबर फैक्ट्री की

0: मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी इस हालत का कारण बेकारी से अधिक रीता है। मालूम पड़ता है रीता से कोई झगड़ा हो गया है।
1: तुम तो मुझे और रीता दोनों को अच्छी तरह जानते हो। हम में कभी झगड़ा नहीं होता। हाँ, सचिन, रीता चाहती है तो मेरे वजन को हल्का कर सकती थी।
0: वो कैसे?
1: हम शादी कर लें तो मेरा अकेलापन चला जाएगा। रीता के साथ रहकर मैं समाज से लड़ सकूंगा। बेकारी जैसी बीमारियां पैदा करने वाले सामाजिक अन्याय से लोहा ले सकूंगा।
0: अच्छा,
1: लेकिन मुझे आत्मिक शांति चाहिए जो रीता ही दे सकती है।
0: मेरा ख्याल है हरीश, प्रोफेसर सिन्हा तो पहले ही तुम दोनों का संबंध मंजूर कर चुके हैं, फिर रुकावट कहां है?
1: यही तो समझ में नहीं आता। जब ये बात उठाता हूं तो रीता रुकने को कहती है।
0: क्या रीता बदल रही है? मैं पूछता हूं, क्या वो भूल गई कि अगर तुमने जानबूझकर अपनी इंटरव्यू खराब ना कर ली होती तो नेशनल कॉलेज की लेक्चरशिप उसे नहीं तुम्हें मिलती?
1: छोड़ो इस बात को।
0: पर हरीश, तुमने ये बेवकूफी क्यों की? औरत के लिए नौकरी इतना महत्व नहीं रखती, पर मर्द के लिए वो सिर्फ आमदनी का जरिया ही नहीं, उसके सोशल स्टेटस की बुनियाद भी है।
1: जो कुछ मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। रीता के लिए मैं क्या नहीं कर सकता?
0: लेकिन वही रीता अब तुमसे इंतजार करने को कह रही है। मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि तुम बेकार हो, तुम्हारे पास ना कोई ओहदा है और ना कोई आमदनी।
1: नहीं सचिन, तुम रीता के साथ अन्याय कर रहे हो। उसके फैसले के पीछे जरूर कोई अच्छा कारण होगा।
0: ये कारण अख्तर तो नहीं?
1: अख्तर?
0: हाँ, नहीं। उसे रीता के घर और कॉलेज के चक्कर लगाते अक्सर देखता
1: हूं। नहीं, वो नहीं हो सकता। रीता उसे हल्का आदमी समझती है।
0: देखो हरीश, तुम हमेशा जल्दबाज रहे हो और शायद जरूर से ज्यादा भोले भी। नारी इतनी सरल नहीं होती।
1: पुरुष ही कहां इतना साफ होता है। स्त्री और पुरुष के गुण दोषों का वजन बराबर बराबर है। मैं क्या खुदगर्ज नहीं हूं जो अपनी आत्मिक शांति की बात सोचकर शादी पर जोर दे रहा हूं? मुझे रीता और उसके पिता की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए।
0: ठीक है। अच्छा हरीश, मैं रीता से बात करूंगा।
1: नहीं सचिन, इसकी कोई जरूरत नहीं।
0: देखो भाई, ये मत भूलो कि रीता मेरी भी फ्रेंड है, उससे बात करने का मुझे भी अधिकार है। खैर, चलो तैयार हो जाओ। अरे भाई चलो ना, कॉफी हाउस तक चलेंगे।
1: अच्छा चलो
0: चलो। हरीश ऐसा?
1: नहीं नहीं सचिन।
2: हेलो हरीश। हाय सचिन।
1: हेलो हेलो।
2: किस बात पे खफा है हुजूर कि हम आ रहे हैं और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? अरे मैं तो भूल ही गया, आपसे मिलिए मिस अलका, और आप हैं डॉक्टर हरीश चंद्र, MA PhD वगैरह वगैरह, और आप हैं मिस्टर सचिन मेहरोत्रा, मशहूर पॉलिटिकल वर्कर।
1: हाउ डू यू डू?
3: हाउ डू यू डू? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अद्दा साहब से आप लोगों की बेहद तारीफ सुन चुकी हूँ। चलिए एक कप कॉफी हो जाए, आइए ना।
2: कॉफी? श्योर श्योर। क्यों सचिन, ख्याल तो बुरा नहीं है?
0: भाई आज माफी चाहता हूँ मिस अलका, एक मीटिंग है जिसमें पहुंचना जरूरी है, फिर कभी साथ दे दूंगा। अच्छा ओके, बाय
3: बाय। और आप डॉक्टर चंद्र?
1: मैं
2: भाई हरीश, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें कहाँ जाना है?
3: आइए ना डॉक्टर चंद्र।
1: चलिए, मैं आपकी सेवा में हूँ।
2: दैट्स गुड।
3: बैठे ना डॉक्टर चंद्र।
2: बैठे। बैरा बैरा।
4: जी साहब।
2: तीन कॉफी लाओ। कुछ खाओगी अलका?
3: जी नहीं।
2: तुम कुछ लोगे हरीश?
1: मैं कुछ नहीं लूंगा।
2: ओके बस तीन गरम कॉफी लाओ बैरा।
4: अभी लाए सर।
2: हरीश, अलका बढ़िया कहानियां लिखती है। गाना, नाचना और एक्टिंग तीनों में कमाल हासिल है।
1: दैट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन।
3: अख्तर साहब तो मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हैं, मैं तो नहायत ही मामूली लड़की हूँ।
2: भाई ऐसी बात नहीं है।
4: साहब अभी फोन पर यह संदेश आपके लिए आया है।
2: अच्छा देखो। आई एम सॉरी अलका, मुझे फौरन बुलाया।
1: क्या हुआ?
2: अब्बा जान की तबीयत एक खराब हो गई। सॉरी हरीश।
1: चलो चलो हम भी चलते हैं।
2: नहीं नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। उन्हें हर महीने 15 दिन में ऐसे दौरे आते ही रहते हैं। कॉफी के बाद तुम अलका को घर तक छोड़ दोगे हरीश? प्लीज।
3: जी नहीं, इनको क्यों तकलीफ देते हैं, मैं चली जाऊंगी।
1: मैं छोड़ाऊंगा।
2: ओके ओके ओके हरीश, आई एम सॉरी फॉर टीचिंग यू।
1: कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
2: ओके
5: रितु। हरीश आखिर गायब कहाँ हो गया?
6: क्यों, क्या हुआ पापा?
5: हरीश का कई हफ्तों से पता नहीं। थोड़े दिन पहले तक मैंने उसे एक बदनाम लड़की के साथ कई बार घूमते फिरते देखा था।
6: समाज तो हर अकेली लड़की को बदनाम करता है, और लड़की के साथ घूमने में क्या दोष है?
5: हाँ, साधारण तौर से कोई दोष नहीं।

0: सचमुच ही खराब लड़की है।
1: लड़की खराब होगी, पर हरीश बहकने वाला आदमी नहीं है।
0: हरीश कितना बहक सकता है ये उस शाम हम दोनों ही देख चुके हैं रीता। आम सड़क पर एक लड़की की कमर में हाथ डाले, नशे में लड़खड़ाते देखकर हरीश के चाल चलन पर शक करने की काफी गुंजाइश है।
1: पापा, आपने पहचानने में भूल की है, वो हरीश नहीं होगा।
0: मैंने तब भी कहा था और अब भी कहता हूँ, मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया, वो हरीश ही था। इतना ही नहीं, उसने भी हमें देख लिया था, तब से हरीश को किसी ने नहीं देखा। और मैं उस लड़की को भी जानता हूं, उसका नाम है अलका, वो एक्टिंग करती है, नाचती है, गाती है।
1: पापा, आपको आज क्या हो गया है? अभिनय, नृत्य और गायन को आप कब से खराब मानने लगे?
0: जब से अलका जैसी बच्चन लड़कियों को इन कलाओं की आड़ से शिकार करते हुए देखा है। रीता, मेरा विरोध एक्टिंग और नाचने से नहीं है, विरोध है अलका से, वो बच्चलन है। अभी उस दिन डीएसपी मित्रा बतला रहे थे कि पुलिस की उस पर कड़ी नजर है, स्मगलिंग से लेकर चोरियों तक में उसका नाम है। कुछ दिनों से वो एक नए गिरोह के साथ देखी जा रही है। मैं पूछता हूं, हरीश का उसके साथ क्या काम?
2: अरे ये क्या, तू क्यों रोने लगी पगली कहीं की?
1: मैं रो कहां रही हूं।
2: शायद इन सब के लिए जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं रुकने को नहीं कहता तो शायद हरीश भटकता नहीं।
1: पापा, मैं आपको दोष नहीं देती।
2: दोष मेरा है। मैंने सोचा था कि हरीश अगर बेकारी की हालत में शादी करेगा तो उसे पैसों के लिए तुम पर निर्भर करना पड़ेगा। समाज तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर हरीश की बेकारी पर उंगली उठाएगा, हरीश में हीन भावना पैदा हो जाएगी। अगर आज तेरी मां जिंदा होती तो शायद ये भूल न होने देती। शादी हो जाने से शायद हरीश भी रास्ते से नहीं भटकता।
1: पापा, हरीश के आदर्श काफी मजबूत हैं। आज अगर भटक भी जाएगा तो उसे ठीक रास्ते पर आने में अधिक समय नहीं लगेगा, अपनी मंजिल वो जानता है। आप जानते हैं, जिस जगह पर मैं काम कर रही हूँ वो हरीश की होती, उसने जानबूझकर इंटरव्यू में गलत सलत जवाब देकर अपना रास्ता बंद करके मेरे लिए जगह की। इंटरव्यू के बाद प्रिंसिपल दीक्षित ने उसे बहुत डांटा था, हरीश उनका प्रिय छात्र था।
2: दीक्षित ने मुझसे भी कहा था, हेतु शायद हर नौजवान में शहीद कहलवाने की तमन्ना रहती है।
1: पापा, आप हरीश के साथ अन्याय कर रहे हैं।
2: हाँ, शायद इसीलिए, क्योंकि वो मेरी प्यारी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है। न जाने वो इस वक्त कहाँ है और किन हालात में है। वो कांत कुंडों के गिरोह से बच सकता है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता।

0: पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है।
1: हरीश, बेकारी तुम में करवाहट पैदा कर रहा है। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
2: ये भी गौरतलब है कि इंकलाब जनसंख्या से ज्यादा नई भुक्तियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से ये इंकलाब बेहाल होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाते हैं।
3: देखो देखो, तुम हमेशा रिएक्शनरी रहते
0: हो। मेरी जिंदगी में कुछ खाली प्यादा है। लगता है जैसे अपने तमाम आदर्शों को भुलाकर मैं एक अनजान रास्ते की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल की थी? मैं जानता हूँ मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, और समाज के प्रति मेरा भी अपना कोई दायित्व है। लेकिन अब मैं किस हद तक इसे निभा सकूंगा नहीं कह सकता।

0: जहन्नुम में ले आए हो।
1: इसे तुम जहन्नुम कहते हो मेरे यार? ये नए जमाने की जन्नत है। हुरे हैं जिनके हाथों में लाल मय से भरे हुए पैमाने हैं। ये जन्नत है तरक्की पसंद नौजवानों की, जो सड़ी गली पुरानी दुनिया को तोड़कर एक नए समाज और एक नए जहां की तामीर करने का दम रखते हैं।
2: शराब पीना और बैंक लूटना, बैंक लूटना और शराब पीना, क्या नई दुनिया बनाने का यही तरीका है?
1: शराब का एक प्याला चंद लम्हों में दुनिया बदल देता है मेरे दोस्त।
2: दुनिया ऐसे नहीं बदला करती, मैंने भी पीकर देखा है अख्तर। हम बदल जाते हैं तो समझते हैं दुनिया बदल गई। दुनिया बदलती है जब कोई बड़ा विचार, कोई ऊंचा आदर्श करोड़ों इंसानों के दिलों में झंझराहट पैदा करता है और क्रांति का राग बनकर दुनिया को झकझोर देता है। बदबूदार तंग कोठरियों से क्रांति नहीं, सिर्फ बदबू निकलती है।
0: परेश, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पहले एक्शन में तुम्हारा यह हाल है।
2: अगर रात के अंधेरे में बेगुनाह और बेखबर चौकीदारों की हत्या कर बैंक लूटने वाले लोग बहादुर हैं तो मैं सचमुच बुजदिल हूं।
0: जब एक्शन के लिए सब तैयारी हो चुकी है तब तुम्हारा झिझकना गद्दारी है। अलका बैंक एजेंट को बनाकर चाबियों की छाप ले आई थी। नकली चाबियां तैयार है। 10 मिनट के एक्शन में कम से कम 2 लाख रुपए हमारे हाथ लगेंगे। अलका तो कह रही थी कि तुम तैयार हो।
2: अलका की बात मत करो, मुझे उसके नाम से चिढ़ है। औरत नहीं, वो नागिन है।
0: तुम उसे नागिन कहते हो? तुम जो अपने गले में नगीने की तरह उसे लटकाए घूमते थे। हरीश, तुम पाखंडी हो।
2: शट अप,
0: जबान संभालो हरीश। पुरानी दोस्ती का लिहाज ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर तुमने जहर उगलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा।
2: शराफत की नकाब उतर जाने के बाद अब तुम्हारा असली चेहरा उभर आया है।
0: हरीश,
3: ये सब क्या है?
0: हरीश गद्दार है मेजर।
3: क्यों हरीश, क्या बात है?
2: मेजर, मुझे इस एक्शन में विश्वास नहीं है, मैं इसे गलत समझता हूं।
3: तुम्हें यह समझने में इतना समय लग गया? तुम्हारी ट्रेनिंग और खाने पीने पर हम हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के भले के लिए।
2: समाज के भले बुरे का निश्चय करने के पहले समाज की राय भी ले ली जानी चाहिए।
0: ये बकता है मेजर।
3: हम जानते हैं कि जनता की भलाई किस बात में है।
2: आपके कई एक्शन और उसके बाद पैसे के दुरुपयोग को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है। आप समाज से भागने वाले लोग हैं जिन्होंने बंदूक का रास्ता अपनाया है, ताकत का नशा करने के लिए, अपनी स्वार्थी हिंसात्मक भावनाओं को खुलकर खेलने का मौका देने के लिए, औरत और शराब के लिए।
0: हरीश, आप लोग सफेद पोश डाकू हैं, डाकू हैं आप लोग।
3: हम लोग सफेद पोश डाकू हैं? अख्तर, तुम इस आदमी को हमारा दल मजबूत करने के लिए लाए थे या इसे रास्ते से हटाकर इसकी प्रेमिका को अपना बनाने के लिए?
0: ये आप क्या कह रहे हैं मेजर?
3: काफी दिनों से मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि तुम मिस रीता सिन्हा को अपना बनाना चाहते थे।
0: मेजर,
3: इसीलिए तुमने हरीश के बारे में हमें गलत जानकारी देकर दल में भरने की साजिश की।
0: मेजर,
3: शायद तुम्हारा प्लान हरीश को एक्शन में किसी बहाने गोली मारकर खत्म कर देने का था।
2: अख्तर, तुम जलील हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी।
0: हाँ, मैं जलील हूं लेकिन तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकते। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैं तुझे जान

0: देखो कौन है इतनी रात गए।
1: अरे हरीश तुम, क्या हुआ?
2: खून।
1: अरे तुम तो घायल हो, तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। चल

0: हेलो, रीता स्पीकिंग।
1: हेलो, कौन? रीता?
0: जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ।
1: देखो रीता, मैं सचिन बोल रहा हूँ।
0: अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता।
1: हरीश को घायल हालत में बड़े अस्पताल ले आया। हाँ, पैर में गोली लगी। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है। वैसे घबराने कोई बात नहीं, आशा को तो जल्दी चली आओ। अच्छा
0: अच्छा अच्छा मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
0: सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,

0: कैसी तबीयत है हरीश?
1: ठीक हूँ।
0: तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, कहीं तुम्हारा पैर?
1: दोनों पैरों पर चलकर जो मंजिल नहीं मिल सकी थी वो एक पैर पर चलकर मिल गई, ये क्या सफलता नहीं है? तुम मेरे साथ रहो रीता, तो सब मंजिलें मिल जाएंगी और सच्चाई के रास्ते पर मैं हमेशा चलने के लिए तैयार हूं। मैंने सीधा रास्ता देख लिया है, रास्ता सच्चाई की तरफ है और उसी पर मुझे चलना चाहिए था। काश काश मैंने तुम्हारे और अपने अंतर की बात सुन ली होती, लेकिन अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है।
2: वो मंजिल कहाँ? अभी आपने डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे स्वतंत्र कुमार ओझा। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
3: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: सभी सुनने वालों को आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत को। जी बिल्कुल, ठीक मेरे सामने बैठे हैं मुस्कुराते हुए जाने माने फिल्म संगीतकार की जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन साहब, और हम उनका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। तो स्वागत है आपका दिलीप सेन साहब जी।
3: नमस्कार जी, नमस्कार विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोतागणों को। दिलीप सेन यानी दिलीप सेन समीर सेन का प्यार भरा नमस्कार।
2: आप कैसे हैं बताइए।
3: बहुत बढ़िया हूँ, वापिस आपने याद ताजा कर दी मेरी
2: जी।
3: बरसों पहले आया था तो चाचा भतीजे दोनों साथ में आए थे।
2: बिल्कुल।
3: और इस बार किसी कारण समीर जी के पास वक्त नहीं था, मगर कोई बात नहीं, सवाल तो वही है जो दोनों को बोलने हैं, मैं बोलूं या चाहे वो बोले।
2: बिल्कुल, हम तो आप में ही दोनों रूप देख लेंगे।
3: थैंक यू जी।
2: तो आज उन्हीं दिलीप सेन साहब को सामने बैठा देखकर मैं तो बहुत अभिभूत हूँ।
3: धन्यवाद जी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मेरे अतीत में ले गए पुराने
2: जी।
3: और विविध भारतीय आकाशवाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है

0: जिससे हमारी चार पीढ़ियां जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी जमाल सेन जी,
1: जी
0: जो 1935 में मुंबई आए थे और एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने ढोलक, डफ, मटका और डेरू जो फिल्म में बजाना उन्होंने ही शुरू किया था।
1: जी जी
0: उस वक्त वो गुलाम हैदर साहब के साथ में लाहौर से आए थे। 51 में उनको पहला मौका दिया केदार शर्मा जी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शोकिया फिल्म से।
1: जी
0: तो पिताजी ने रंगीला, धर्मपत्नी, पतित पावन, आला उदल कई फिल्में की, बगदाद वगैरह, कस्तूरी, मंचली। उसके बाद में बड़े भाई साहब आए 70 के दशक में, शंभू सेन जी। 80-90 के दशक में हम चाचा भतीजे दिलीप सेन, समीर सेन आए।
1: जी
0: 2006 में मेरा पोता सोहिल सेन जी आए और 2026 में अभी मेरा पड़पोता समर भी आ रहा है।
1: जी
0: तो ये 5 पीढ़ियां हो जाएगी हमारी संगीत क्षेत्र में।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें श्रोतागणों ने, दर्शकों ने।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: जैसे मैं बेसिकली डांस मास्टर रहा हूँ फोक और कथक का।
1: बिल्कुल।
0: मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी फोक और कथक के डांस मास्टर रहे। फिर मेरे बड़े भाई साहब मदन सेन जी, जो भी डांस मास्टर, सिंगर, एज ए कंपोजर रहे। और उनके बाद में तान सेन जी, वो सितार वगैरह बजाते थे। फिर इंदर सेन जी जो थे वो मैंडोलिन वगैरह बजाते थे। उनसे छोटे निहाल सेन, वो सितार, मैंडोलिन और डांस वगैरह वो भी करते थे। छठा मैं था दिलीप सेन। तो करते करते निकला, एक उम्मीद होती है इंसान को कि कुछ बड़ा बनना है, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो संगीतकार बन गए।
1: बिल्कुल, और एक बहुत बड़े और सफल संगीतकार, जाने माने संगीतकार के रूप में आप हमेशा रहे। तो आपका घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
0: जी।
1: आपके परिवार का संगीत सफर जो है लगभग 4 या 6 पीढ़ियों से, अब तो छठी पीढ़ी से चला आ रहा है, और इस संगीत परंपरा को आधुनिक रूप देने में आपके पिता जमाल सेन साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप अपने पिता के बारे में थोड़ा और बताइए।
0: उन्होंने अपने कैरियर को शुरुआत की कलकत्ता रेडियो से। वहाँ पखावज और जलतरंग बजाते थे, और कलकत्ता में उन्होंने टैगोर साहब के साथ, टैगोर दा के यहाँ,
1: अच्छा,
0: शांति निकेतन में कुछ साल एज ए क्लासिकल संगीत टीचर के हिसाब से काम भी किया।
1: मतलब टैगोर साहब मतलब रविंद्रनाथ
0: टैगोर जी के यहाँ शांति निकेतन में,
1: अच्छा,
0: कुछ साल रहे।
1: और
0: वहाँ अपना हिंदी शास्त्रीय संगीत जो होता है, क्योंकि उनका तो रविंद्र संगीत होता है, उनके साथ हमारा जो संगीत शास्त्र है तो वो पिताजी सिखाते थे वहाँ कुछ साल। बाद में 1923-24-25 में वो चले गए लाहौर। वहां पे फिर पंचोली स्टूडियो जो था, जिसमें गुलाम हैदर साहब के साथ एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, और 1935 में वो मुंबई आए। अब मुंबई आने के बाद में उन्होंने एज ए म्यूजिशियन तो काम किया ही किया गुलाम हैदर साहब के साथ में, कुछ फिल्मों में एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उन्होंने काम किया, खजांची, मुनीम जी वगैरह में। क्योंकि मेरे पिताजी का एक पहनावा होता था, वो कान के अंदर लौंग रखते थे
1: जी।
0: उस जमाने में डायमंड सस्ता ही था, तो डायमंड के लौंग रखते थे, बड़ी बड़ी मुछें होती थी, और धोती कुर्ता पहनते थे बंगाली स्टाइल का।
1: जी जी।
0: तो एक उनका एक अलग व्यक्तित्व होता था।
1: हाँ।
0: तो उस हिसाब से उनको काम भी मिलता गया। सुजानगढ़ के रहने वाले हम लोग राजस्थान में, और हमारे यहाँ से और भी बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े कलाकार का नाम मैं लेना चाहूंगा, जिसमें मुझे फक्र होता है, हमारे खेमचंद प्रकाश जी। वो भी हमारे ही गांव से थे, सुजानगढ़ से। और एक हमारे कवि बहुत बड़े कवि हुए, कन्हैयालाल सेठिया जी।
1: बिल्कुल।
0: वो भी मतलब हमारी धरोहर है ये राजस्थान की।
1: और वही आपके सुजानगढ़ के पास, चुरू से थोड़ा पास, बीकानेर शहर से जो है पंडित भरत व्यास
0: जी है, गुलाम मोहम्मद साहब। और भी आज मैं कहते हुए मुझे फक्र होगा और मुझे अभिमान भी होता है इस बात पे कि अभी तक जितने भी रिदमिस्ट हुए हैं, आप शुरू से लेके अब तक देखेंगे तो सारे राजस्थान से ही हुए हैं। और एक बात और बता दूं मैं, डांस मास्टरों में भी हीरालाल सोनलाल जी, वो भी सुजानगढ़ से ही थे, जिनका डंका बजता था, जिनके सरोज जी, चिन्नी प्रकाश जी, तरुण जी, कमल मास्टर जी, ये सारे हमारे एक परिवार की तरह हम लोगों ने काम किया है। तो हम लोगों को मतलब संगीत के साथ साथ डांस का भी अनुभव रहा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा

0: चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि दुनिया में अगर कोई सच्ची चीज है आज, अगर सुकून वाली, तो वो सिर्फ संगीत ही
1: संगीत
0: है।
1: है जी,
0: और जिसके जीवन में संगीत है उसके पास सबसे बड़ी दौलत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल सही। तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल सुनिए।

0: आपने अपने भाई से शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्र जैसे कि तबला आदि की विधिवत शिक्षा ली है और आप एक प्रशिक्षित नर्तक भी रहे हैं।
1: जी हाँ, कथक।
0: तो कथक के आप संगीत रहे कलाकार, तो कथक की दुनिया से, नर्तक की दुनिया से आप संगीतकार के रूप में कैसे इधर आ गए?
1: देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि संगीत जो शब्द बना है ये तीन चीजों से बनता है, गायन, वादन, नृत्य।
0: जी,
1: और गायन, वादन और नृत्य का अनुभव होना, अब तीन चीजों को मिलाने से बनता है संगीत, और संगीतकार इन तीन चीजों को लेके चलना। तो मेरी ये सोच है या मेरी ये समझ है, मैं अपने आप से कहूंगा कि एक संगीतकार बनने के लिए उसको इन चीजों का अनुभव होना जरूरी है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं बेसिकली डांस मास्टर भी रहा और मैं डांस करता भी था, किया भी है। मैंने गोविंदा जी के साथ एक फिल्म मेरी आई थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें मैंने गोविंदा जी के साथ काम किया, जबकि गोविंदा जी स्टार है और सुपरस्टार के अलावा उनके सामने डांस करना इतना मामूली बात नहीं थी। फिर भी सरोज जी ने, उन्होंने निभाया और वो गाना मेरा काफी लोगों को पसंद आया, आज भी लोग देखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो नृत्य की एक रहा और उससे मुझे कंपोजिशन करने में बहुत मतलब आसानी रही, क्योंकि देखिए जब मैं कोई गाना कंपोज करता था, मैं और समीर जी जब बैठते थे, क्योंकि समीर जी भी कथक डांस सीखे हुए हैं।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने भी बाकायदा गणेश जी हमारे हुए हैं, गणेश मास्टर जी से उन्होंने डांस की तालीम ली, क्योंकि अब हम भले ही हमारे भाई से, भाई साहब से हमने सीखा, मगर जब तक बाहर का कोई गुरु आप अगर अपना नहीं लेते हैं, जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होती है, क्योंकि घर वाला ही होता है वो, और बाहर वाला जब आता है तो वो एक गुरु की नजर से आता है।
0: जी।
1: तो हम लोगों ने वैसे तालीम ली। और उसके अलावा मैं बता दूं कि आप अगर हमारे कुछ गाने देखेंगे तो कोरस प्रधान गाना होता है। कोरस आपको जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं अभी तक, शायद मुझे नहीं लगता कि किसी संगीतकार ने किया हो। जैसे कि मिसाल पे, जैसे मेरा एक गाना जो हिट हुआ था, पहला गाना हम लोगों का जैसे चला, उससे पहले जुल्म की हुकूमत आ गई थी, उसमें भी जैसे जो हिट हुआ था, जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, ताक धिना के दिने दिन दिन ना दिने ताक। अब ये दिन ताक धिना दिन एक गाने का पार्ट ही है। अब जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, टनारंग टनारंग।

0: ऐसे भी कर सकते थे,
1: बिल्कुल।
0: मगर ताक धीना दिन आने से उसके अंदर एक ब्लेंड हो गया। ऐसे ही एक गाना हमारा और चला था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले ओले, तो इसमें ओले ओले एक पंचलाइन बने। फिर हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर जोर शोर अर अर अर आ ओरे, तो इस तरीके से जो कोरस पार्ट होता है हम लोगों का, ये कि गाने की शक्ल में ही होता है। ये हमारे दिग्गज जितने भी बड़े जो गुणीजन जिनको मैं स्कूल मानता हूं,
1: जी
0: मेरी नजर में जैसे नौशाद साहब, खयाम साहब, मदन मोहन जी, शंकर जय किशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, खेमचंद प्रकाश जी, मेरे पिताजी, या जयदेव जी, मदन मोहन जी, श्री रामचंद्र जी, वसंत देसाई जी, अपना ये जयदेव जी, सलील चौधरी जी, मैं इनको स्कूल मानता हूं। क्योंकि
1: जी
0: ये स्कूल इसलिए मानता हूं, खयाम साहब इन्होंने जो काम किया है, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन जी, इनका काम देखेंगे तो एक एक लाइब्रेरी नजर आएगी आपको। जब आप लक्ष्मीकांत जी की तरफ जाते हैं तो वो एक अलग स्कूल है, शंकर
1: जी
0: जय किशन जी एक अलग स्कूल है, नौशाद साहब एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक अलग स्कूल है, ओपी नैयर साहब एक अलग स्कूल है, कल्याण जी अलग स्कूल है, एस डी बर्मन जी एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक, तो ये मेरे लिए एक स्कूल है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती थी जब हम संगीतकार बने, तो संगीतकार बनने के साथ साथ हमने इनको भी फॉलो किया, इनको भी सुना। मेरा ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग ये सुन रहे हैं
1: जी
0: और जिनको फिल्म लाइन में आके अगर संगीतकार बनना है, तो वो बनने से पहले अपने गुणीजनों को सुनो कि
1: बिल्कुल।
0: हमारे पहले क्या म्यूजिक दिया लोगों ने। देखिए आज का साउंड जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, क्योंकि टेक्नो साउंड भी जरूरी है, क्योंकि समय समय पर संगीत बदलता है,
1: बिल्कुल।
0: वो अपना चोला चेंज करता है, मगर मेलोडी जो है, जो हमारी संस्कृति है,
1: वो वही
0: जो
1: है।
0: हमारी रागे हैं, जो हमारा फोक है, जो हमारा कल्चर है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो आजकल संगीत के अंदर नहीं मिलता आप लोगों को।
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने जो मेरी 90 के दशक तक हम लोगों ने जितनों ने भी काम किया, वो राइटिंग वाइज, कंपोजिशन वाइज, मेलोडी वाइज, हम लोगों ने वो चीज छोड़ी नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर हमको कोई सपोर्ट मिला 90 के दशक में, तो मैं इसकी सारी क्रेडिट, बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी जगह है, चाहे वो यशराज हो, गुड्डू धनवा जी हो, कुकू कोहली जी हो, दीपक सरीन जी हो, नरेश मल्होत्रा जी हो, के रविशंकर जी हो, राहुल गुप्ता जी हो, और भी कई लोग हैं जी, मगर इनमें एक शख्सियत ऐसी थी जिनका नाम है गुलशन कुमार जी।
1: जी,
0: गुलशन कुमार जी के आने से म्यूजिक में एक अलग
1: क्रांति आ गई।
0: क्रांति आई और एक ऐसा बहाव आया कि जिस वक्त आप समझ लीजिए कि 90 के दशक के हम जो म्यूजिक डायरेक्टर थे या हम लोगों ने जो काम किया, वो आज भी सुना जाता है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे कि जब तक हम लोगों ने काम किया, तो कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा को और हमारे कल्चर को हम लोग संभाल के रख सके।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिलीप सेन साहब, जैसा कि बात चल रही थी कि आपका जो घराना है शास्त्रीय संगीत का घराना है, और आप लोगों ने विधिवत शिक्षा ली एक डांसर के रूप में और संगीत के रूप में, पहली फिल्म आपको कैसे मिली जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और किस तरह से 90 के दौर में अपना पहला ब्रेक पाने का जो अनुभव था वो कैसा था, किस तरह से फिल्म मिली?
0: देखिए फिल्म मैं बता दूं आपको, जब डांस मास्टर था, तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं
1: हाँ
0: आपका।
1: हाँ बिल्कुल।
0: डांस मास्टर 70 के दशक में क्या था कि 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा चलता था,
1: हाँ
0: और बसों की टिकट होती थी 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा 20 पैसा 25 पैसा और 50 पैसा अंधेरी अगर आना हो तो बोरीवली
1: बिल्कुल।
0: से। तो हम लोग क्या करते थे कि डांस मास्टर के नाते कि यार ये 5 पैसा या 10 पैसा बचाना है, तो हम 2 स्टॉप पैदल चल लेते थे, या
1: हाँ
0: कभी 3 स्टॉप पैदल चल ले रहे थे कि यार ये 10 पैसा 5 पैसा बच जाए। तो वो सब समय देखा हुआ था। तो जहन में एक, जब मैं सुजानगढ़ से मुंबई आया,
1: जी
0: तो फिल्मों में एक्टर बनने आया था, तो शक्ल तो हीरो जैसी थी नहीं कि हीरो बन जाऊं, और इतने कोई पढ़े लिखे भी हम नहीं थे कि हम कोई करेक्टर रोल में या निकल जाएं। तो पिताजी ने मुझे दूसरी लाइन में पहले ट्राई किया कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं, बाद में उन्होंने देखा कि ये कहीं नहीं जमेगा, तो मेरे बड़े भाई थे मदन सेन जी, उनके साथ एज ए मुझे असिस्टेंट के बतौर रखा लिया कि भाई तू भाई के साथ रहे। तो उन्होंने एक स्कूल खोली, तो वो स्कूल खोलना, उसमें जो बच्चे आते थे उनको अटेंड लेना, उनको देखना, तो देखते देखते 3 4 साल में मैं इस लायक हो गया कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं।
1: अच्छा।
0: तो वो जो चीजें थी, तो आगे बढ़ने के लिए एक था कि यार, मतलब उस जमाने में आप यकीन मानिएगा, जैसे 5 रुपया मेरे पास थे, तो मेरे फर्स्ट टाइम मैंने बैंक में खाता खोला, तो मेरे एक सहकारी बैंक थी, तो उस बैंक में मैंने 5 रुपये का खाता खोल लिया। अब 5 रुपये के खाते के लिए वो चेक लगता था, फोटो लगती थी कि जब आप चेक
1: जी
0: लेने
1: जी
0: जाएंगे या
1: जी
0: पैसे दो
1: बिल्कुल
0: के 2 रुपया या 1 रुपया या 8 आना लेना है
1: बिल्कुल
0: तो बैंक में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से फोटो दिखानी पड़ती थी। तो एक बहुत लिमिटेड बजट होता था और बड़ा आदमी बनना था। तो मैं अक्सर, मेरे जो पार्टनर समीर सेन जी हैं, ये परकशन में नंबर 1 है, इंडिया के एक माने हुए
1: जी
0: परकशंस हैं, जो कि रिदम में मतलब अभी भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। चाहे ढोलक, तबला, कोंगो, बोंगो, तुम्बा, ये जो वो प्ले करते हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी में कोई ऐसा म्यूजिशियन हो।
1: जी
0: वो इसलिए नहीं कि मेरा भतीजा है,
1: नहीं नहीं जो
0: क्योंकि
1: सच्चाई
0: जो
1: है।
0: उनकी अपनी मेहनत थी, लगन थी, बड़े भाई साहब ने उनको उस तरीके से तैयार किया था, उनको तालमनी टाइटल भी मिला हुआ है। मैं उनसे अक्सर बोलता था कि यार बड़ा आदमी बनना है यार। तो बोला, क्या बड़ा आदमी कैसे बनोगे चाचा, तुम डांस मास्टर हो, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या बनना चाहते? तो मैं बोला, यार अपन संगीतकार बन जाए।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: अस्सी के दशक में संगीतकार बनना इट इज नॉट जोक।
1: हम्म,
0: उसने बोला यार मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही है म्यूजिशियन में, मैं दिन में दो दो तीन तीन टेक बजा रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। उस वक्त 150-200-300 रुपया म्यूजिशियन को एक गाने का मिलता था, वो तीन चार गाने बजाए तो 1000 रुपया रोज मिल जाता था।
1: जी
0: बोले ये खामों का म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, लोग बुलाना भूल जाएंगे। अरे मैं बोला कोशिश तो करके देख, तो वो माने नहीं। तो उस दौर में क्या हुआ कि मैं रहता था महाकाली में, शमशाद खान इकबाल खान के यहाँ, तो वो एक फिल्म बना रहे थे प्यारी भाभी। तो एक उम्मीद थी कि यार ये फिल्मी प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं पहली मर्तबा उनके यहाँ लग गया कि चलो यार इन्हीं के यहाँ रहता हूँ, थोड़ा माहौल भी मिलता था। वहां असद भोपाली साहब आते थे,
1: अच्छा गीतकार,
0: गीतकार। तो असद भोपाली साहब जब मुझे देखते थे, वो कोई लाइन लिखते थे तो मैं उस पर कोई ऐसी डमी धुन बना देता था। तो मुझे हर बार शाम के वक्त जो बैठक होती थी इन लोगों की, बड़े लोगों की, हम तो खैर बच्चे ही थे उस वक्त, तो उस बैठक में मेरे को मौका मिलता था उनको धुन बना के सुनाने का। कभी कभी वो दिन में मुझे बोलते थे यार तेरे में जम्स है, तू म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, तेरे पिताजी वाली बातें हैं तेरे में, क्योंकि मेरे वालिद साहब के काफी नजदीक में थे वो।
1: जी
0: तो मैं असद वालिद साहब को बोला मैं चाचा कौन, मुझे कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा। उन्होंने एक दिन एक सीटिंग रख दी, बोले काम कर दो दिन बाद मैं तेरे को एक जगह लेके जाऊंगा, मुझे बताया नहीं कहां ले जाएंगे। मैंने जाके समीर जी को बोला, समीर सेन जी को, मैं बोला बेटा ऐसा ऐसा है समीर यार एक जगह सीटिंग है, अपने को फिल्म मिल सकती है। तो वो हंसने लगा, भाई साहब हंसने लगे, बोला तुमको कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा यार, कौन इतना ऐसा बड़ा आदमी आ गया जो तुमको लेगा। मैं बोला जाके आने में क्या बुराई है।
1: हाँ।
0: बोले जाओ। तो हम गए साहब, हम लोगों को सोचा कि शायद ये तो म्यूजिशियन है, कोई इनका बड़ा आदमी आएगा तो सुनाएगा। तो हम लोग 10-11 बजे गए, तो 3-4 बजे तक कोई हमारी से सुनवाई नहीं। तो असद भोपाली साहब ने जगदीप साहब को बोला यार जगदीप तुम आ जा गाने सुन ले। तो बोले इनका कौन सुनाने वाला कौन है इनमें। बोले यही बच्चे। बोले ये बच्चे सुनाएंगे, ये तो किसी एंगल से ही लग रही थे मुझे डॉक्टर, वाकई में नहीं लग रहे थे। अब इस एंगल में तो कोई शक्ल तो थी नहीं हमारी,
1: बिल्कुल,
0: और दुबले पतले से थे हम। तो खैर उन्होंने जब सुना, सुनने के बाद में आप यकीन मानिए हम लोगों ने 4-4:30 बजे शुरू किया, रात के 12-1 बज गए। 12-1 बजे के बाद में उन्होंने कहा कि भाई देखो गाने तो तुम्हारे काफी अच्छे लगे हमको, हम खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि इसमें से कौन सा ओके करें कौन सा नहीं करें, आप सुबह आ जाइए, आप हमारी फिल्म कर रहे हैं। तो मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हम सुबह पहुंचे, उस वक्त जगदीप साहब एक फिल्म कर रहे थे मोहब्बत, जिसमें अनिल कपूर, विजेता पंडित और जगदीप साहब थे। तो वो शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैं घर पहुंचा तो बोला भैया तुम लेट हो गए हो, मैं तो निकल रहा हूँ, बच्चे लोग हैं तुम अंदर चले जाओ। तो हम अंदर गए तो एक छोटा सा लेटर था, वो साइन करवाया, हमको एक छोटा सा लिफाफा दिया। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं बोला भाई पिक्चर मिल गई। तो आप यकीन मानिए कि वो खुशी खुशी हम खुश हो गए।
1: वो फिल्म सुरमा भोपाली,
0: सुरमा भोपाली। मगर इस बात के लिए मैं एक चीज के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा जगदीप साहब को। उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि एक सिचुएशन पे एक ही मुखड़ी की कितनी धुन बन सकती है। तो ये स्टाइल उन्होंने सिखाया मुझे, तो मैं उनके यहां सीखता गया। उन्हीं के यहां मैंने एडिटिंग सीखी, उन्हीं के यहां मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सीखा, फोली क्या होता है, जो इफेक्ट वगैरह होते हैं फिल्म के, यानी टोटल मेकिंग जो होती है फिल्म की, वो 5 साल में मैंने जगदीप साहब के यहां सीखी, जो मुझे बाद में इतना बेनिफिट की वो चीज कि आज जब मुझे, मतलब जब मैं सक्सेस हुआ, तो मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं जगदीप साहब का भी हाथ है।
1: जी,
0: जैसे गुलशन जी को हम मानते हैं,
1: मगर
0: कंपोजिशन है बनाने में जगदीप साहब का हाथ रहा। तो आज अगर एक सिचुएशन आती है, तो जैसे एक एग्जांपल अगर आप बुराना माने तो सुनाना चाहूंगा, हमने ये दिलगी के सारे गाने कंपोज कर लिए थे। तो यश जी ने कहा कि मुझे तानसेन बोल देते, बोले तानसेन मेरा ये जो लड़का है ये करोड़पति घर का है मगर प्ले बॉय है। तो प्ले बॉय मतलब मैंने, वो क्या होता है, बोले बिगड़ा हुआ। तो मैंने समीर राइटर जो हमारे अनजान है, मैं बोला यार बिगड़ा हुआ लड़का करोड़पति का क्या अलग होता है, या वो झोंपड़पट्टी का अलग होता है क्या, ये बिगड़ा हुआ क्या कर। बोला ये भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला गरीब वाला, बोला ये झोंपड़पट्टी वाला भी लड़कियां छेड़ता है। तो मैं बोला यार धुन क्या बनेगी, तो हमने इसकी जगह धुन बनाई एक, पहले प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कु आई लव यू तू नक धुन तू धुन तू नक धुन तुम,
1: बिल्कुल।
0: फिर उसके बाद में एक धुन इसी सिचुएशन पे बनाई, वो ये दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो। फिर इसी सिचुएशन पे तीसरा गाना हमने बनाया अपना, ये जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मगर हम अक्सर ये दो धुने यश जी को सुनाते थे, ये गाना सुनाते ही नहीं थे। तो इसका ये रहा कि ये हमको 2-3 महीने हो गए अब ये गाना, बाकी गाने सब कंपोज हो गए। यश जी का क्या सिस्टम था कि सारे गाने कंपोज करवा लेते थे और सारे गानों की राइटिंग और धुन और म्यूजिक तक फाइनल करके फिर रिकॉर्डिंग में जाते थे। ऐसे ही हमने आईना की थी तो सेकंड पिक्चर के लिए भी सारे गाने कंपोज हो चुके थे, खाली ये एक बचा था। तो ये हम सुनाते नहीं थे क्योंकि इसका जो वर्ड था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, मैं बोला कहीं यश जी ये नहीं पूछ ले यार ये ओले ओले क्या है?
1: क्या है
0: तो फिर क्या जवाब दूंगा,
1: जैसे इलू इलू क्या है ये प्रश्न उठा था।
0: नहीं ओले तो देखिए ओले मराठी में ओले बोलते हैं गीलेपन को।
1: अच्छा।
0: और वैसे ओले जो गिरते हैं।
1: इस पर मैं बात करूंगी आपसे क्योंकि ये गीत कैसे रचा गया था। पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं, आप बताइए और थोड़ा गा के सुनाइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप।
0: मैं
1: अपना ही
0: आपको एक बात बताऊं कि मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं इनको, अपना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को।
1: अच्छा।
0: इनका एक गाना मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो इसलिए पसंद है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, ये जो अंदाज था उनका ये कमाल था।
1: तो ये गीत सुन ले
0: जी,
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: बात चल रही थी दिलीप सेन साहब की गाना कैसे बनते हैं। आपने कहा कि आशा भोसले की आवाज में आपने पहला गीत ये रिकॉर्ड किया था जिसका जिक्र, तो उनके साथ आशा ताई के साथ काम करने का ये जो नया नया अनुभव था जब आप बिल्कुल नए थे, कैसा रहा?
1: मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि मंगेशकर परिवार जो है, मेरे परिवार से वाबस्ता तो था ही, क्योंकि पिताजी को जानते थे, फिर
0: जी
1: बड़े भाई साहब को जानते थे, तो
0: जी
1: वो एक रिस्पेक्ट, वो प्यार तो था उनके दिल में। मगर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तो जब उनके साथ बैठने से पता चला। पर आशा जी ने जब ये गाना सुना तो नुशा साहब आए हुए थे, तो गाने सुनने के बाद में समीर उनके साथ काम करता था पहले, अब मुझे देख के खुशी भी हुई कि ये डरा डरा साहब बोल, डर नहीं, अच्छा कर रहा है, तुम बहुत अच्छा करता है। नुशा साहब को बोला कि नुशा साहब ये गाना उल्टा लग रहा है, तो फिर समीर जी को बुलाया उसने, आशा जी ने बोला समीर इधर आ, ये गाना क्रॉस से आता है तो उल्टा हो जाता है। समीर ने जब देखा बादल सताए हम लोग गाना लगा, तो वो मेरे को समीर बोलता है यार गाना तो उल्टा हो गया। तो मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी थे मेरे साथ, तो भाई साहब बोले भाई तू गाना बनाया, तेरे को बनाते वक्त ध्यान नहीं था, अब इसको सब में कैसे लाएगा। मैं बोला भाई साहब ये 8 मात्रा का नहीं है, 4 मात्रा का है। बोले 4 मात्रा कैसे, मैं बोला लेजिम ठेका है, दिन ताक दे दिन आग दिन ताक दिन ताक दिन ताक दिन, तो 4 बीट का गाना है
0: अच्छा
1: ये, जो लेजिम एक आते हैं हमारे मराठी में, आपने देखा होगा बच्चों को सिखाया
0: हाँ
1: जाता है,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मैं बोला उस ठेके पे बना हुआ गाना है ये,
0: जी
1: 4 बीट का ही है, तो आप सम 4 बीट में लोगे तो ये परफेक्ट आएगा, आप 8 मात्रा में गिनोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो
0: हाँ
1: इस तरीके से वो रहा, तो आशा जी इस बात को नोट करती रही और उनको लगा, उन्होंने
0: कि एक नई बात है।
1: नहीं नई बात के अलावा उन्होंने समीर को बोला कि यार लगता है तेरे चाचा में कुछ बात है, तो ये उन लोगों के आशीर्वाद और दुआ रही। और
0: जी
1: मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक सपना होता है, बाकियों की बात नहीं कहूंगा मैं अपनी करूं, कि जिन्होंने मंगेशकर परिवार के साथ काम किया, जैसे लता जी के साथ आशा जी के साथ काम करना एक एक ड्रीम होता है, और वो ईश्वर ने यशराज फिल्म में मेरा कंप्लीट किया
0: जी
1: कि दोनों बहनों के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया,
0: जी
1: आईना और ये दिल लगे में।
0: जी तो आप कितने भाग्यशाली रहे दिलीप सेन साहब कि एक शुरुआत में ही आपको यश जैसा बड़ा बैनर
1: बैनर
0: मिला यश
1: मिला,
0: चोपड़ा जी का, और आईना और ये दिल्लगी जैसी फिल्में मिली, आशा जी और लता जी के साथ गाने का
1: मौका मिला,
0: मौका मिला, बहुत बड़ी बात थी आपके
1: बहुत
0: लिए।
1: बड़ी नहीं, ये
0: तो
1: ड्रीम था, सपना
0: ड्रीम
1: था।
0: मतलब पूरा हो गया इतनी जल्दी, जो उम्मीद भी नहीं होती, तो कैसा लगा होगा, आपकी मनस्थिति क्या रही होगी, और लता जी के साथ काम करने का भी कोई अनुभव हमसे साझा कीजिए आप।
1: देखिए दीदी के साथ तो पहले पहला तो मैं ये कहूं कि दीदी की एक आदत थी कि वो बहुत सॉफ्ट बोलती थी, आज
0: अच्छा
1: बात करने से पहले चश्मे को थोड़ा नाक पे लेती थी, फिर
0: अच्छा
1: ऊपर करके कैसा बड़ा ठीक है इतना।

0: सॉफ्ट बोलती थी।
1: जी
0: तो पहला गाना जब मैंने उनके साथ किया था गोरिया रे गोरिया रे, तो क्योंकि डरा हुआ था तो एकदम खुल के बैठ भी नहीं सकता था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। तो सजना वे मेरे नींद उड़ा के ले जा, तक दिन आगे दिन दिन तीन ना, उन्होंने वैसे ही गा दिया।
1: जी
0: अच्छा, मुझसे इन लोगों ने कहा था, क्योंकि जब डबिंग हो रही थी तो दीदी अकेली थी जब उनकी डबिंग के वक्त, क्योंकि उस वक्त ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मुझे ये कहा गया था कि बार बार टॉक टॉक बैक से इनको बोला नहीं जाता था।
1: अच्छा,
0: दीदी से अगर कुछ बात करनी हो तो आपको कट करके फिर उनके रूम में,
1: जाके ही।
0: जहाँ पे सिंगिंग रूम है वहां जाके बोलना पड़ता था। तो मुझसे कहा गया था बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुपचाप बैठे रहो, गाना होने दो। गाना पूरा हो गया तो मैं ऐसे रहा नहीं गया, फिर मैं उठ के गया, दीदी को हाथ वाथ जोड़े। तो दीदी ने मेरी तरफ देखा मुस्कुराते हुए, पूछा कैसा, ठीक हो गया? बोला दीदी गाना तो बहुत अच्छा हो गया, मगर एक जगह रह गई। फिर वो जरा क्वेश्चन मार्क से मेरी तरफ देखी, बोले मेरे से जगह रह गई? क्या रहा, जगह कैसे रह गई, कोई सुर कम लगा? मैं बोला नहीं, सुर कम नहीं लगा, वो मींड रह गई। बोले कैसे? बोला आपने गाया सजना वे मेरे नींद उड़ा के ले जा, तक दिन आगे दिन। बोला हाँ ऐसे ही तो गाया है। मैं बोला यहाँ ये एक बार मेरा रह गया, तू कैसे चाहता था? मैं बोले सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा तक, तो मैं बोला ये ले जा
1: यार
0: तक। अच्छा, हाँ ठीक है मैं गाती हूँ। मैं बोला नहीं, अब तो मेरे को गुस्सा करेंगे, रहने दीजिए, हो गया, नहीं तो पूरा गाना गाना पड़ेगा। हाँ बोले मैं गाऊंगी ना। मतलब इतनी बड़ी स्टार सिंगर,
1: नम्रता, इतनी
0: नम्रता के
1: विनम्रता,
0: अलावा उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं नया कल का
1: नया।
0: लौंडा हूं, जबकि उन्होंने मेरे पिताजी भाई साहब और उनके अलावा दिग्गजों के साथ काम किया हुआ।
1: लेकिन एक महान
0: मगर उन्होंने
1: कलाकार।
0: ये देखा कि ये बच्चे ने काम किया है और ये जगह उसने सही बनाई है, तो मुझे इसको मैं डोमिनेट नहीं करना है। उन्होंने सीधा प्रेम जी को बोला, टैगोर को बोला आप ये दोबारा करो, मैं गाऊंगी। तो गाया और वो गाना कमाल हुआ।
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो ये दोनों बहनों में ये बहुत खास बात थी कि इतने प्यार से। और एक किस्सा आपको और सुनाना चाहता हूं दीदी का। हम जब सेकंड पिक्चर कर रहे थे ये दिल
1: ये
0: लगी,
1: दिल लगी।
0: तो उसमें एक गाने के लिए आई थी वो, गोरी कलाई कलाई में कंगना है कंगना ने लिया तेरा नाम हो सजना।
1: वाह, बहुत सुंदर।
0: तो दीदी को 12 बजे का टाइम हमने दिया था, तो हमारे पास पुरानी गाड़ी थी फिएट, तो हमको 12 बजे के बजाय 12:15 तक हम लोग पहुंचे। मैंने जाते ही दीदी के पैर छुए, माफी आफी मांगी, तो फिर बैठी हुई गाना सुन रही थी। बोला नहीं, ठीक है, दूर रहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं गाना सुन लिया है, बोल कैसे क्या करना है। मैं बोला ऐसा ऐसा है, गाना हो गया। मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइन है आपकी। तो मेरी तरफ देखी और बोली क्यों, मैं अच्छा नहीं गाती क्या, गाने में 3 लाइन ही मेरी रखी है।
1: अरे
0: मैं बोला नहीं दीदी, वो गाना ही ऐसा है। कैसा है? तो गाना 3 सिंगरों का था।

0: से दिल की सुना उन्होंने, मैं बोला इस तरीके से, तो गाना ये भी हो गया। मैं बोला दीदी खाना आ रहा गहलोत से, मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है। बोला क्यों, तूने धुन नहीं बनाई? मैं बोला नहीं, आपका एक गाना था ना वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, अच्छा तो हम चलते हैं, तो बोले क्या तूने वो चोरी किया है धुन? मैं बोला नहीं चोरी नहीं की है, मेरा गाना सुन लीजिए आप, वो कैसा है? मैं बोला नाम क्या है प्यारे का मारा, घर का पता दो, दिल
1: दिल
0: है तुम्हारा,
1: तुम्हारा।
0: क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है प्यारे का मारा। ये भी सुना उन्होंने, सुनते बोला ठीक है अच्छा है, नया स्टाइल है, गाती हूँ। ये भी गा दिया उन्होंने। तब तक खाने में थोड़ा और लेट
1: टाइम
0: हो रहा
1: लग
0: था।
1: गया। हाँ
0: मैं बोला दीदी अब खाना आने ही वाला है, एक काम कीजिए, एक गाना सिर्फ आप सुन लीजिए, गाएंगे नहीं।
1: हाँ
0: बोला क्यों, तुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं? मैं बोला दीदी बहुत है, ये मेरे दिल
1: जी
0: के करीब है। बोला अच्छा, तो अक्सर मैं क्या करता हूँ, जब कोई गाने उस दौर में जब ये ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मैं अपनी वॉइस में गा के रख देता था कि अगर मैं थोड़ा लेट हूँ तो सिंगर वो गाना सुन के लिख भी लेता था और धुन भी याद हो जाती थी। तो मैंने मैंने बोला एक रफ गाया है मैंने, सुन लीजिए आप।

0: के बाद में जब तक खाना आ गया था तो यश जी भी आ गए थे। तो
1: जी
0: यश जी बोला, यार मैं तो एक गाने के हिसाब से पेमेंट आया, तुमने तो चारों कर दिए। अरे ये जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ
1: जी
0: कि दीदी ने, लता दीदी ने एक ही स्टूडियो में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का, एक ही फिल्म का,
1: चार
0: एक ही
1: गाने,
0: समय में चार गाने गाए हूं।
1: क्या
0: ये मेरे
1: बात,
0: लिए बहुत
1: ये
0: नसीब
1: क्रेडिट आपको गया
0: जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात रही।
1: जी
0: और मैं समझ रहा हूं शायद दुनिया में ये पहला ऐसा मौका हो रहा होगा दीदी के लिए।
1: जी

0: फिर खाना खाते खाते मैंने दीदी से पूछा, मैं ये बात आपके रेडियो के माध्यम से पब्लिक तक जो सिंगर बनना चाहते हैं उनको कहना चाहूंगा कि देखिए सिंगर ऐसा ही बड़ा नहीं बनता है
1: जी।
0: सिंगर के कुछ नियम होते हैं जो कि हर आज नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जब दीदी से मैंने ये बात कही कि दीदी आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से हर बार बोलती, क्यों, उनकी एक आदत थी, जैसे मैंने गाना गाया गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जाता, फिर बोलती थी एक बार और, ऐसे करके 5-6 बार सुनती थी।
1: अच्छा,
0: तो मैंने कहा दीदी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से बोलती थी कि एक बार और एक बार और? तो हंसने लगी, बोले दिलीप मैं गाना तो सुनते ही मुझे याद हो जाता है,
1: अच्छा,
0: मगर मैं गाना बार बार इसलिए सुनती हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर जब गाना बनाता है उस वक्त वो अलग शक्ल में होता है, फिर उस पर वो गाना लिखता है तो वो अलग शक्ल बन जाती है, फिर वो गाना डायरेक्टर तक जाता है तो उसकी और शक्ल अलग हो जाती है, फिर वो प्रोड्यूसर सुनता है तो और शक्ल हो जाती है, फिर म्यूजिशियन के पास आते आते और अलग हो जाता है, और जब सारे म्यूजिशियन मिक्स होकर करते हैं तो वो परफेक्ट एक सॉन्ग बनता है, तो म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर वो पूरा गाना वार्म अप हो जाता है। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर के एक्सप्रेशन नोट करती हूँ कि वो गाते वक्त उसके चेहरे के हाव भाव क्या हो रहे हैं,
1: क्या बात है,
0: और कौन से शब्द पे वो सांस ले रहा है, कौन से शब्द पे उसके चेहरे के क्या हाव भाव चेंज हो रहे हैं, तो मैं वो ऑब्जर्व करके फिर अपनी फील देती हूँ।
1: क्या बात,
0: और ये आज के सिंगर को हमेशा होना चाहिए कि आप जब गाना आते हैं किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का, चाहे वो नया म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे पुराना हो या आपके बराबर ही हम दोस्त भी हो, आप पहले गाने को सुने, उसकी सिचुएशन सुने, प्लस उसके एक्सप्रेशन के अलावा, क्योंकि जो शब्द आप गाओगे वही एक्सप्रेशन देगा आपका हीरो
1: बिल्कुल
0: या हीरोइन।
1: बिल्कुल,
0: तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि भाई मैं जिस तरीके से गाऊंगी वही एक्सप्रेशन डांस डायरेक्टर वहां पिक्चराइज करेगा, वही एक्सप्रेशन हीरो हीरोइन देंगे। तो वो अच्छा, लोकेशन भी पूछना चाहिए, पिक्चराइजेशन का समय भी पूछना चाहिए, जैसे कि पुराने सिंगर पूछते थे, अच्छा कहाँ हो रहा है, नाइट में हो रहा है या डे में हो रहा है, आउटडोर हो रहा है कि इंडोर हो रहा है, नदी के किनारे हो रहा है कि गार्डन में हो रहा है, कि बर्फीली पहाड़ियों में हो रहा है, कि खंडर में हो रहा है, कि डेजर्ट में हो रहा है, कि रेतों में। तो ये जो सिचुएशन है पहले पूछते थे,
1: मतलब इतनी गहराई में जाना होता है एक कलाकार को, एक सिंगर को, एक संगीतकार को,
0: जिस तरीके से संगीतकार जाता है, जैसे मैं जाता
1: था, गीतकार भी जाता होगा निश्चित रूप से,
0: नहीं डेफिनेटली हमको सबको जाना पड़ता है उसमें, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि जो कंपोज हम करेंगे, जो शब्द हम कंपोज करेंगे, जो भाव सिंगर देगा गाने में, जैसे उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब गाना गवाते हैं सिंगर से तो गाना तो उसी वक्त याद हो जाता है, मगर उसको डबिंग करते वक्त 2-3 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन होते हैं शब्द के, हम वो उससे करवाते हैं। जैसे कि एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, जैसे हरिहरन जी चित्रा जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए सिंगर हैं, दोनों क्लासिकल के माहिर हैं,
1: चित्रा जी
0: मद्रास के, साउथ की,
1: चित्रा केएस,
0: हम चित्रा जी बोलते हैं उनको, उनका जब मैंने पहली फिल्म उनके साथ की थी जिद्दी, तो मेरा गाना था हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए।

0: से है ना।
1: क्या बात है, बहुत
0: तो ये
1: सुंदर।
0: गाना उन्होंने 2 घंटे में गा दिया।
1: जी,
0: जब सैम दोनू सिंगर मेरी फिल्म आई अफलातून, जिद्दी में भी डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, बबुल पचीसिया जी प्रोड्यूसर थे, अफलातून के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी। तो उसका एक गाना था,

0: दिल।
1: बहुत गहरा गाना
0: अब
1: था
0: ये
1: ये।
0: गाने में उनको 4 घंटा लग गए। अब होता क्या है कि जब आप किसी बड़े सिंगर के साथ काम करते हैं तो आप बार बार कट नहीं कर सकते हैं।
1: जी
0: तो आपको क्या है कि उनके रिस्पेक्ट को भी रखना है, उनकी जो ओहदा है, जो उनकी पोस्ट है
1: उसको भी रखना है।
0: उसको भी कायम रखना है, और हमें हमारी जो चीज चाहिए वो भी निकलवानी है। तो उसके लिए क्या करता था मैं, आधा घंटा 15 मिनट किया, फिर मैं ब्रेक ले लेता था। फिर उन लोग पूछते थे क्या हुआ, मैं बोला नहीं मैं एक मिनट थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। फिर जाता था उनके केबिन में, हॉल में जाके फिर बैठते थे, आइए जरा 2 मिनट बैठते हैं।

0: क्या हुआ सर कुछ? नहीं, मैं मतलब बहुत बढ़िया हो रहा है,
1: जी।
0: हमको ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या कमी हो रही है। फिर बैठ के बातचीत करते, तो फिर बातों बातों में मतलब जैसे ये जगह ना, पलकों के साए में सो जा तू, फिर उधर थोड़ी सी बातें मैं अंदाज ऐसे ही बता देता, ऐसा नहीं बताता था कि आपसे नहीं निकल रहा है। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं अपन लोग? हाँ हाँ सर कर सकते हैं। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं, जाओ तुझे मैं छुपा लूं, ओ, तो ये मुर्गी रिमेंड ये भी आ सकती है शायद। हाँ आ सकती है सर। तो जैसे बच्चों को कैसे हम लुबराते
1: जी,
0: हैं,
1: साइकोलॉजिकल।
0: तो वैसे उनके, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ या इतने बड़े सिंगर को आप बार बार अगर ऐसे करेंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए, प्लस कहीं फंस ना जाए। अच्छा सिंगर अक्सर ऐसा फंस जाते हैं, वो लूप अगर लग गया उनको तो फिर अटक गए, तो अटक गए,
1: अटक गए
0: तो बहुत ही बच्चों की तरह ट्रीट करके उनके साथ वो निकलवा के, क्योंकि वो इस काबिल थे और
1: थे, बिल्कुल।
0: काबिल हैं।
1: चलिए गीत सुनते हैं, पहले आपकी पसंद का।
0: आप वो गाना लगाइए जिस गाने को दीदी ने बड़े प्यार से गाया है,
1: जी

आप सुन रहे थे संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दूपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और भी कर्जदार लग गया।
5: विविध भारती के सफर को अब देते हैं विराम। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 5 बजने को है। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को, साथियों को, अपने साथ ही आनंद पुरोहित का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपके लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाने वाली देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है, उसके धार्मिक महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसी कारण इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के जागने का पर्व मनाया जाता है, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। साथियों, देवशयनी एकादशी केवल व्रत, उपवास या पर्व नहीं, बल्कि यह हमें आत्मसंयम, सात्विक जीवन, भक्ति और आत्मचिंतन का संदेश देती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, श्रद्धालु उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और भजन कीर्तन के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ संस्कारों का आयोजन सामान्यतया चातुर्मास के बाद किया जाता है। इस परंपरा के पीछे हमारी भारतीय जीवन शैली और प्रकृति से जुड़ा गहरा संबंध भी दिखाई देता है। आषाढ़ के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। प्राचीन समय में आवागमन कठिन हो जाता था, ऐसे में समाज ने इन 4 महीनों को साधना, अध्ययन, संयम और आध्यात्मिक अनुशासन के लिए समर्पित किया। इसी अवधि में संत महात्मा एक ही स्थान पर रहकर धर्म, ज्ञान और समाज जागरण का कार्य करते थे। यह परंपरा आज भी हमें बताती है कि जीवन में कुछ समय आत्मचिंतन और आत्मसंयम के लिए भी आवश्यक होना चाहिए। देवशयनी एकादशी का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि हम अपने जीवन में कुछ समय बाहरी भाग दौड़ से विराम लेकर अपने भीतर की यात्रा करें। एकादशी के व्रत के संदर्भ में धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण, नाम जप, ध्यान, पूजा और दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। हालांकि व्रत और उपवास अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। भक्ति का मूल भाव शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को शुद्ध और संयमित बनाना है। साथियों, देवशयनी एकादशी हमें 3 महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहला, जीवन में संयम आवश्यक है। दूसरा, आत्म

चिंतन और साधना से मन को शांति मिलती है। और तीसरा, हमारी संस्कृति में प्रकृति समाज और आध्यात्मिक जीवन के साथ संतुलन बनाकर चलना सिखाती है। तो आइए इस देवशयनी एकादशी पर हम केवल व्रत और पूजा तक सीमित न रहें, बल्कि अपने जीवन में सदाचार, संयम, सेवा और सकारात्मक सोच को अपनाने का संकल्प लें। भगवान विष्णु की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का प्रकाश फैले। इसी मंगल कामना के साथ अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। तो इसमें पहला फोन हमें मिला है नियाज पेंटर का नागौर से, जो सुनना चाहते हैं फिल्म क्रांति का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: राठौड़ी को नागौर से सरस्वती सुनना चाहती है फिल्म किक का ये गीत।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: बीआर मिर्धा कॉलेज नागौर से अनवर हुसैन सुनना चाहते हैं काला पत्थर फिल्म का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: युवाणी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं फोन करें गीत सुने, और अगला गीत अब्दुल सत्तार नागौर से सुनना चाहते हैं फिल्म लॉफर का, तो लीजिए आपके पसंद का ये गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अगला गीत फिल्म दोस्ताना से, जिसे सुनना चाहते हैं तेलीवाड़ा नागौर से पप्पू हलवाई।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फोन करें, गीत सुने में अगला फोन आया है हमारे पास कुमारी।

0: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: बाड़ीकुआ नागौर से रेखा सुनना चाहती है फिल्म धर्म कर्म का ये गीत, तो सुनते हैं उनके पसंद का ये गीत।

अब उन श्रोताओं के नाम जिन्हें जिनके गीत हम आज नहीं सुना पाए, नागौर से चांद मोहम्मद, नागौर से ही इकबाल भाई, भीम भाई और नागौर से ही दिलशाद, इन तीनों के गीत आज हम सुना नहीं पाए समय के अभाव के कारण। इसके साथ ही युवाणी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने साथ ही आनंद पुरोहित को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं कार्यक्रम पणिहारी।

रिश्ता रिडोर नाजुक हुए संभालनो पड़े बड़े ही प्यार सु, थोड़ो सबर थोड़ी समझ और मीठा व्यवहार सु। कार्यक्रम सुनने वाली सी बहना किया हो, आप ठीक हो ना? देखो बहना, विश्वास जको है, विश्वास हर रिश्तारी नींव हुआ करे है। जको मकान मजबूत नींव पर बने हैं, बिने तो देखो बहना आंधी तूफान भी हिला नहीं सके है। ठीक बिया ही विश्वास वाला जका रिश्ता है, बे समेरी हर परीक्षा के मायने मजबूत रहे है। देखो बहना, विश्वास जको है वो बान और समेरे साथे साथे धीरे धीरे बढ़े हैं। सोचो बेना कि जब एक छोटो सो बालक आपरी मारी अंगुली पकड़े है, तो बिके मन के मायने कितो ज़्यादा विश्वास हुआ करे कि मारी मम्मी जकी है आ मने बिल्कुल भी नीचे गिरन नहीं देवेला, है ना? वो ही एक विश्वास है बहना। बहना, जब एक बेटी आपरे पीहर सु विदा हुए, तो उनके मायने वो विश्वास हुए कि नया परिवार अपनावन री बिने हिम्मत देवे है, वो विश्वास ही हुआ करे है। बहना, जब परिवार रा सदस्य सुख और दुख के मायने साथे खड़ा हुए, ये केवल ई वास्ते नहीं कि बैंक रिश्ता आपस में जुड़ोड़ा है, बल्कि रिश्ता के मायने बनियोड़ो विश्वास ही है बहना। बहना, विश्वास हुए तो परिवार के मायने डर नहीं, विश्वास हुए तो अपनोपन बढ़े है, मन रिबा

बात एक दूसरा ने खुलकर कहवे है। और देखो बिना विश्वास हुए जद ही तो देखो छोटी छोटी गलत फहमियाँ इच की बाता के मायने नहीं आवे है और विश्वास हूँ ये चीज़ दूर भी हो जावे। बहना देखो आजकल आपा देखा है कि इंसान जको है एक दूसरा की बाता मायने जल्दी आ जावे है, आधी अधूरी बात सुन लेवे जका सो गलत फहमियाँ पैदा हुए और धीरे धीरे रिश्ता कमजोर पड़ता जावे है। तो बहना आपने विश्वास मजबूत रखना है, डगमगान बिल्कुल भी नहीं देवनो है। बहना ई वास्ते आपने आधी अधूरी बात माते बिना सोचा समझा विचार करनो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अगर आप इनको काम करा हाँ विचार करा हाँ तो अगला ने भी आप देखो चुपती बात आपा सो कही जावे है। तो आपने थोड़ो ध्यान रखनो चाहिए है। देखो बहना रिश्ता जगह होया करे एक कांच की तरह होया करे है, कांच के मायने जान कांच टूट जावे और बिना आपा पाछो जोड़ तो देवा हाँ लेकिन बी के बीच एक दरार सी बन जावे है। यही रिश्ता आपा पाछा पेलड़ जेड़ा नहीं हुआ करे अगर बिंग मायने विश्वास टूट गयो हुए जद। तो बहना आपा ने रिश्ता मजबूत करना है। और देखो बहना मन एक छोटी सी बात भी याद आ रही है कि दो सहेलियाँ जद मतलब छोटों बड़े हुई जड़ तक बे बहुत ही बढ़िया बैंको रिश्तों रही हो तो एक और जिकी तीसरी जिकी बेंगे पड़ोसन ही बाबी ने आ बात बिल्कुल भी बर्दाश्त कोनी होती। तो बा सोची कि दोनों के मायने किया जको है रोज पैदा करा दोनों के मायने इतनी ज़्यादा बने हैं तो आ चीज़ बिने थोड़ी चौकी कौन लागती बिग मायने ईर्ष्या भाव बहुत ज़्यादा हो। तो बा एक सहेली ने भी कहे कि एक थारी दूजोड़ी सहेली थारी जिकी सहेली है बा तो थारे बारे में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ भी करे है लेकिन सोचो बहना बी की बात माते विश्वास बिल्कुल भी नहीं करे हैं। बिन ठा हुआ कि बा मारे कोई मतलब हित की बात ही करी हुला मारी बुराई बिल्कुल भी नहीं कर सके हैं तो वही तो है बहना विश्वास। तो बहना परिवार के मायने वो विश्वास बणियोड़ो रहे। और अब देखो बहना बातचीत अपन यही चलती रहेला लेकिन अबार थाने ले चलना गीता री दुनिया में और सुनावा वो प्यारो सु गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: बहना, जब मानसून रा बादल घिरन लागे तो किया देखो धरती माँ हरी चुनरी ओढ़ लेवे, खेत खलिहान भी मुस्कुरावन लाग जावे और पंछी चहकन लागे और चारों ओर तो देखो बहना यहाँ लागे कि जीवन तो एक नई उमंग सू एकदम खिल रियो है ना। तो देखो बहना, बरखा रो वो मौसम जको है वो धरती माँ ने हरियाली री नई सौगात देवन रो भी समय है। आजकल देखा कि बहना कि जकी आ बढ़ती गर्मी है और ये बढ़ती गर्मी के वजह से देखो भूजल जको है वो भी घटतो जा रही है क्योंकि समय माते बरसात नहीं आ रही है। लेकिन अब आज जब बरसात आवे है तो ये हरियाली के मायने और बदलता मौसम के मायने आपने वो देखो वो एक चेतावनी भी साथ साथ देवे है कि आपने देखो एक तो जल को बचाव भी करना चाहिए, साथ साथ आपने वृक्षारोपण भी करना चाहिए है। अगर आज आप प्रकृति रो ध्यान नहीं रखाला तो देखो आवन वाले समय के मायने जिके आवन वाली जिकी पीढ़ियाँ हैं इन्हें घनी मुश्किलों रो सामनो करनो पड़ सके है बहना। देखो बहना, ई मौसम के मायने जिकी वर्षा बहार रो आपने फायदो उठाणो भी चाहिए है, आपने पेड़ लगानो चाहिए है। एक पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं दिया करे है बल्कि छाँव भी देवे है आपने, आपने फल भी तो देवे है और इके साथ साथ देखो लकड़ी है और पक्षियों को जो को घर है वो भी तो वृक्ष ही हुआ करे है। बरखा लावण के मायने मदद करण के मायने वृक्षा को योगदान तो बहुत ज़्यादा है बहना। बहना एक अलावा धरती ने ठंडी राखण के मायने भी वृक्ष मदद करया करे है। तो बहना आपने ध्यान रखना है कि आपा बच्चा के मायने भी प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत करा हाँ। वर्षा ऋतु के मायने देखो मिट्टी के मायने नमी भी रहे है तो इको कारण आपने पौधा जगह है बे लगाना भी चाहिए और

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहिना अब आप बात करें कि मानसून के मौसम में आपने पेड़ लगाना चाहिए है, और पेड़ वास्तव में लगाना चाहिए। प्रकृति ने देखो मतलब अपने माते इतनी मोटी मेहरबानी हुई है कि अगर पेड़ रहे तो प्रदूषण भी देखो बहना प्रदूषण ने भी वो रोके है ना। तो पण बरखा रो वो मौसम जो बहना केवल पौधा लगावन रो ही नहीं है, बल्कि अपनी सेहत, घर, अनाज, कपड़ा, पशुधन और रोजमर्रा की जी चीज़ें हैं, बैंक की भी सार संभाल रखने को भी मौसम है। क्योंकि देखो बहना थोड़ी सी सावधानी अगर आप बरतता तो घनी सारी जिकी परेशानियां जिकी बरसात के साथ भी आवे है बेसु आपा बच सका हाँ। तो वर्षा ऋतु के मायने चीजा री आप किया सार संभाल करा एक के माते आप बात करा ला, लेकिन पहला सुन लेवा अ छोटी सी बात।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: देखो भाई ना आपा बात कर रहा था कि बरसात के मायने जिकी अपन ने थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए बाकियां बरतन, ताकि अपने जो भी मतलब कि सेहत को भी अपन सुधार कर सका और अनाज जो है अनाज है कपड़ा है तो इनके मायने भी देखो भाई ना बरसात का अपन ने कुछ मतलब इनकी वजह से एक खराब भी हो जाया करे। क्यों? क्योंकि मौसम के मायने नमी बनी उड़ी रहे, नमी रहने की वजह से अनाज हुआ मसाला हुआ इन मायने कीड़ा मकोड़ा बढ़ने को खतरों भी रहे है, और कपड़ा के मायने भी देखो बहना सीलन आवे है तो अनाज खराब हो सके और बीमारी फैलन रो भी डर बढ़ जाया करे है। तो बरखा की जिकी रुत है असुहानी तो घनी लागे है, लेकिन मौसम के साथ है आपने थोड़ो सो ध्यान रखनो भी पड़ेला बहना। तो आपने थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए जी जदि तो आपा ई बरखा रो आनंद भी ले सकाला और साथे साथे नुकसान सु बचाव भी कर सकाला। तो देखो बहना अनाज जो को है अनाज और मसाला इनके मायने आपा वो ध्यान रख सका कि जका भी मतलब आपा दाल हुयो मसाला हुयो एडी डब्बा के मायने आपने रखनो चाहिए जो का मायने हवा जकी है आपास नहीं हुए है ना, बीच बीच में आपा बहना धूप भी दिखाता रहे वहाँ ताकि सीलन नहीं लगे है। और देखो बहना कपड़ा जका है आपा कई बार अब बरसात हो रही है तो आपा इन्हें बारे सुखावा पच बे कपड़ा के मायने थोड़ी सी सीलन आउन लग जाया करे है, मायने भी आपा सुखावा लेकिन अगर वे पूरी तरीके से नहीं सूखे है और अगर आपा बहने अलमारी के मायने रख देवा तो बिंग मायने एक तो देखो बहना बदबू भी आवेला सीलन भी रहेला, तो आ चीज अपन ध्यान रखनी है कपड़ा पूरी तरीके सुखार पची अलमारी में रखा। इसके अलावा घर के मायने देखो आपा अगर जगह जगह माते पानी इकट्ठो हो रही है तो आ भी चीज बहुत नुकसान कर सके है, क्योंकि साफ पानी के मायने देखो बिना मच्छर जगह है ये भी पैदा हो जाया करे है। तो आपने इस चीज रो भी ध्यान रखनो है। और दूसरी बात बिना कि ये मौसम के मायने पानी जो को है वो दूषित भी हो जाया करे है, अगर आप दूषित पानी को सेवन कर ले माला तो आपने जो कि पेट जो को है वो खराब हो जावेला। तो आपने ध्यान रखना कि पानी जो को है आप ये मौसम के मायने उबाल उपच बिना ठंडो कर पचापा पी सका। और दूसरी बात बिना जो आप खानो बनावा हाँ यानी कि मतलब रात को खानो सुबह भी खा रिया हाँ तो ताजो खानो ही आपने खानो चाहिए, क्योंकि अपने जो को पाचन तंत्र है वो भी देखो बिना ये मौसम के मायने जल्दी खराब हो सके है। क्यों? क्योंकि अगर आप खानो और इनको खावाला तो अपने जल्दी खानो पचेला नहीं और पेट खराब होने को भी डर रहे है। इके अलावा देखो बहना कि मौसम इनको है जका का मायने नमी रहवे है, तो आप वो भी ध्यान रखो कि कई बार जकी दीवारा के मायने भी थोड़ी नमी बनी ओड़ी रहे, और इके वजह से जका बिजली का एक खटका है इनके मायने भी करंट रहन को डर रहे है। तो आप थोड़ा सो ध्यान रखो कि गीला हाथ सो बिजली के जका भी ए खटका है एक माते अपन हाथ नहीं लगानो है। अगर कटे भी खुला तार है तो भी को भी अपन ने ध्यान रखना, नहीं तो कई बार वो भी देखा कि छोटा बच्चा जका है बे बैंक हाथ लगा देवे तो करंट को बेने भी झटको लाग सके है। तो आप ध्यान रखो ला, और बरसात रे पानी ने व्यर्थ मत जावन दीजो बहना, क्योंकि बरसात देखो कदी मदी तो हुए है, तो एक पानी को आपने बचाव भी करनो चाहिए है। तो ये तो कुछ इनकी बातें हैं जका को आपने विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और अब वक्त हो रही हो कि थाने एक और गीता री दुनिया में लेर चला और सुनावा ओ प्यारो सु गीत।

अभी आप सुन रहे थे पणिहारी कार्यक्रम FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही देर में हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: के साथ मैं विशाल शर्मा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजीपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
2: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुनते हैं यासर देसाई और पलक मुच्छाल की आवाज में फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत का अगला और आखिरी गीत ऐश किंग और शाशा तिरुपति की आवाज में, फिल्म का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएमएन 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर। शुरुआत करते हैं बनारसी बाबू के इस गीत से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अब सुनते हैं चुन्नी मारवाड़ी का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे और उसके बाद 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे। हिंदी और राजस्थानी के प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच हुई बातचीत के बाद सीजेपी का आंदोलन समाप्त, प्रदर्शनकारियों से तत्काल वापस लौटने की अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, कहा युवाओं के हित में फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे, विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से भी बातचीत करेंगे। और प्रदेश में इस सीजन में अब तक कम बारिश हुई, 20 जिलों में सामान्य और 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की बैठक हुई। इसके बाद सीजेपी की ओर से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई और प्रदर्शनकारियों से तत्काल प्रभाव से वापस लौटने का आग्रह किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास तथा आशुतोष रांका से लंबी बातचीत की। इसके बाद हुई प्रेस वार्ता में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर भी सहमति बनी है।
1: हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विथड्रॉ।
0: श्री नड्डा ने प्रेस वार्ता में बताया कि नीट पेपर लीक मामले के प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक पीड़ित परिवारों के प्रति सरकार की पूरी सहानुभूति है, उन्हें नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में सुधारों पर मंथन होगा।
2: कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है

0: प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है। एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन की घटनाओं से उनका मन दुखी था। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और वे युवाओं को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया ताकि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं उठा सकें। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। सरकार ने पुनर्परीक्षा की नई तिथि की भी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए नए कानून पर मोहर लगाई है, जिसमें दोषियों को फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए 3 महीने में सजा सुनाने का प्रावधान है। दोषियों को 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम छात्रों के हित में है और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। सहकारिता के मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी की आज से जयपुर में शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। श्री शर्मा ने एचसीएम रीपा से इस सेवा को शुरू किया। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक भी मौजूद रहे। भारत टैक्सी आधुनिक, पारदर्शी और लोगों के लिए लाभदायी परिवहन व्यवस्था की दिशा में अहम पहल है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, किफायती, विश्वसनीय और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, साथ ही ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर माहौल ने आज जयपुर में चरक भवन में प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से भी मुलाकात की। लोक भवन में हुई इस भेंट में दोनों ने देश और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अंग प्रत्यारोपण सहित कई महंगे इलाज मुफ्त मिल रहे हैं। मां योजना में अब तक 2600 से ज्यादा मरीजों को राजस्थान और अन्य राज्यों में अंग प्रत्यारोपण तथा दूसरे इलाज का लाभ मिला है। इन उपचार पर अब तक 120 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। योजना के तहत जयपुर में 1200 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए गए। इसके अलावा कॉकलियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण भी किए गए। योजना में 107 मरीजों ने राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों के अस्पतालों में इलाज करवाया। गौरतलब है कि अंग प्रत्यारोपण संबंधी उपचार पूरी तरह कैशलेस है और मरीज को इलाज के लिए कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ती। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी देश भर के 400 से अधिक युवा प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने की 4 से 30 तारीख तक 2 चरणों में हुआ था। प्रतिभागियों का चयन एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया था। इसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 27वां करगिल विजय दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिन ऑपरेशन विजय के अमर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का पावन अवसर है, जिन्होंने 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों से मुकाबला कर देश की संप्रभुता की रक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल संघर्ष की शुरुआत मई 1999 में हुई, जब पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा पार कर करगिल, द्रास और काकसर क्षेत्रों की चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 16 से 18 हजार फीट की ऊंचाई वाली दुर्गम चोटियों, बर्फीली ठंड, ऑक्सीजन की कमी और दुश्मन की लगातार गोलीबारी के बीच जीत हासिल की। करगिल विजय दिवस पर समूचा राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा करने वाले अमर वीरों को नमन करता है। इस मौके पर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर आज दो दिन के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर मुख्य करगिल विजय दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: प्रदेश में अब तक सिर्फ फलौदी जिले में ही असामान्य बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 25 जुलाई के बीच 5 जिलों में अत्यधिक, 20 जिलों में सामान्य और 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। इस बीच सरहदी जिले जैसलमेर में आज सुबह से ही रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। बाड़मेर जिले के चौहटन, बीजासर, नवातला और अन्य क्षेत्रों में बरसात से कई जगह पानी भर गया और कच्चे मकान ढह गए। वहीं कल श्रीगंगानगर और सिरोही जिले में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। आबूराज में 20 सेंटीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग ने आज बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, पाली, जालौर और सिरोही जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ भागों और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। कल उदयपुर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। हालांकि ज्यादातर हिस्सों में कल से बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आम जन को जागरूक किया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटी लार्वा अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को साफ सफाई रखने तथा जल भराव रोकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रदीप असवाल ने मौसमी बीमारियों में बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने की अपील की है।
3: हमने सभी जिलों में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हमने सभी जिलों में डायरेक्शन जारी की गई, जो इस मौसम में मच्छर जनित रोगों, जल जनित रोगों और श्वसन रोगों के संबंध में क्या क्या सावधानी हो, और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया आशा और एएनएम है, इनको भी आमुखीकरण एक बार हर साल की तरह फिर से हम करते हैं। हालांकि ये निरंतर काम होता है, लेकिन फिर भी कहीं कोई चूक नहीं हो जाए इसके लिए हम बार बार आमुखीकरण करते हैं, विशेषकर इस मौसम के लिए। मानसून का आनंद लें बहुत जरूरी है, लेकिन वो आनंद लगातार रहे इसके लिए सजग रहें, चिकित्सा कर्मियों की बात सुनें और समय रहते चिकित्सक को दिखाएं, विलंब नहीं करें।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर के जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यहां शूटिंग एकेडमी शुरू करने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए, इसके लिए राज्य सरकार पूरी मदद करेगी। श्री राठौड़ आज जगतपुरा शूटिंग रेंज में नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में बोल रहे थे। उन्होंने प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में विजयी रहे निशानेबाजों को पदक प्रदान किए। 23 जुलाई से शुरू हुए और 29 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच हुई बातचीत के बाद सीजेपी का आंदोलन समाप्त, प्रदर्शनकारियों से तत्काल वापस लौटने की अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, कहा युवाओं के हित में फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से भी बातचीत करेंगे। और प्रदेश में इस सीजन में अब तक कम बारिश हुई। 20

0: किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की। कार्यक्रम में जिले के 1,45,114 लाभार्थी किसानों को 29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि, सेना के अधिकारी, जवान, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। अलवर शहर में सिंचाई विभाग द्वारा 3,34,00,000 रुपए की लागत से बने भाखेड़ा एनिकट का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इस एनिकट को जनता को समर्पित किया। इस एनिकट से जल संरक्षण और भूजल स्तर में वृद्धि होगी और शहरवासियों के लिए एक नया पर्यटन स्थल मिलेगा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने नटनी का 12 से जैसमन झील तक करीब 36 करोड़ रुपए की राशि से नहर पक्कीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। नहर पक्कीकरण के कार्य से जैसमन झील तक अधिक पानी पहुंचेगा तथा भूजल स्तर में वृद्धि होगी और किसानों को भी सिंचाई के लिए लाभ मिलेगा। अलवर में नीट यूजी परीक्षा 2026 का आयोजन जिले के 27 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। जिले में कुल 9,731 अभ्यर्थियों में से 8,945 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अलवर जिले में 3,089 वरिष्ठ नागरिकों ने निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए आवेदन किए। अलवर के कलेक्ट्रेट सभागार में इसके लिए लॉटरी निकाली गई, जिनमें 1600 यात्रियों को निशुल्क यात्रा के लिए चयन किया गया। 181 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा के तहत तथा 1489 यात्री रेलगाड़ी के जरिए तीर्थ यात्रा करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का 28 जून को जिला मुख्यालय पर आयोजन हुआ, जिसमें 14,770 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा जिला मुख्यालय पर 53 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 वर्ष तक के 2,75,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने राजकीय चिकित्सालय में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पोलियो मुक्त भारत का संदेश दिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर अलवर में NTCA द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में टाइगर री इंट्रोडक्शन, अवसर और चुनौती विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सरिस्का टाइगर रिजर्व का कोर एरिया पर्यटकों के लिए 1 जुलाई से आगामी 3 महीने के लिए बंद हो गया है, लेकिन बफर जोन खुला है। इस एरिए में 2 पर्यटक जोन के लिए 19 जिप्सियां लगाई गई है, जो पर्यटकों को जंगल भ्रमण कराएगी। शिक्षा और पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर बीते दिनों अलवर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने रैणी तहसील में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईश्वाना के नवनिर्मित भवन तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पिनान के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री ने विभिन्न पंचायतों और ग्रामीण इलाकों का औचक निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। अलवर जिले के नारायणपुर के कोलाहेड़ा की बावड़ी की ढाणी निवासी वायुसेना के जवान विक्रम पायला का ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। सेना के वाहन से उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ पैतृक गांव पहुंचा। जवान के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जवान विक्रम पायला को सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर के सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 196 वर्ष पुराने ऐतिहासिक इंद्र विमान पर निकाली गई। यात्रा में श्रद्धालु बाराती के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर अलवर जिला कलेक्टर की ओर से एक दिवसीय अवकाश घोषित किया गया। इसी के साथ अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी बीच भी बातचीत, पाछे नौजवानों रो आंदोलन खत्म, प्रदर्शन करण वालों तुरंत पाछा जावण री अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र

0: दौरान इस्तीफो दिनो कहो नौजवान आरा हित माए फैसलो लीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल आकाशवाणी प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम माए शामिल होवन वाला सा गई बातचीत करेला। और प्रदेश माए ई चौमासा माए हाल ताई कम में बरसियो। 20 जिला माए सामान्य और 15 जिला माए सामान्य कम पानी बरसियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। नीट परीक्षा पेपर लीक मामला माए नौजवाना कानी चलाई चियो आंदोलन खत्म फेवन रो ऐलान करती चियो है। नई दिल्ली माए आज खबर नवीसा सागे बातचीत रे दौरान कॉकरोच जनता पार्टी रा प्रवक्ता आशुतोष रांका कहो कि सरकार वारी मांगा मान लेनी है।
1: हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर इन ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विड्रॉ।
0: इन पहले केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी रा नुमाइंदा बीच आज नई दिल्ली में तीजा दौर री मीटिंग हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सीजेपी रा प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका सागे लंबी बातचीत कीनी। इन पाछे सीजेपी आंदोलन खत्म करन रो ऐलान करता था का प्रदर्शन करन वाला पाछा लौट जावन री अरज कीनी। श्री नड्डा खबर नवीसा ने बतायो कि नीट पेपर लीक मामला माए प्रदर्शन करन वाला रे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जावेला। वह कहो कि नीट पेपर लीक रा पीड़ित परिवारा रा प्रति सरकार री पूरी सहानुभूति है, अरवाना नियमा रे मुताबिक मुआवजो दियो जावेला। नड्डा कहो कि शिक्षा व्यवस्था माए सुधारा रा बारा माए विचार करियो जावेला।
2: कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है। एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफो दे दिनो है। वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफो सौंपण री जानकारी दीनी। मारा इस्तीफा माए श्री प्रधान मांडियो कि मारी परीक्षा माफिया रे कारण किणी विद्यार्थी री जिंदगी खराब नी वेवन देवन री कोशिश रही। श्री प्रधान मांडियो का लाडला 10 दिन माए देश माए विद्यार्थियों का न्यू रीट परीक्षा पेपर लीक रा मामला माए करिया जा रहा प्रदर्शन वह दुखी है। वे मांडियो का नौजवान भारत रो भविष्य भेवन सागे नुवो और विकसित भारत बनावन वाला है, जो देश री असली ताकत है। श्री प्रधान आगे मांडियो का जंतर मंतर सामी और आखा देश माए लाडला दिना उपजा हालात विद्यार्थियों रो भविष्य कानूनी दाव पेच माए उलझन बचावन और वारो भगत पढ़ाई माए लगार करियर बनावन माए कामयाबी हासिल करन री मंशा सागे वह प्रधानमंत्री ने इस्तीफो भेज दिनो है। वह कहो का नौजवान देश सबू मोटी ताकत है और वह इनने भ्रम राकू चक्र माए नी फंसवा देवेला। श्री प्रधान कहो कि वह इस्तीफा ई कारण दीनो ताकि जंतर मंतर सामी और देश माए जो हालात बनिया वानो फायदो देश विरोधी ताकतां नी उठा सके। इ बीचे केंद्र सरकार पेपर लीक रा मामला रोकण सारू नुवो कानून बनाउन ते किनो है, जिने तेत दोषियां ने फास्ट ट्रैक अदालत रे जरिए 3 महीना माए सजा सुनावन रो प्रावधान है। इन तेत दोषियां ने 10 साल ताई री कैद और 10 करोड़ रुपया ताई रा जुर्माना री सजा दी जा सकेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहकारिता रा आधार चलाई जावन वाली भारत टैक्सी री आज जयपुर माए राखी जा कार्यक्रम माए शुरुआत कीनी। इस मौके केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और प्रदेश रा सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ई मौजूद हा। भारत टैक्सी जनता सारू आवन जावन री साफ कोई सागे फायदेमंद व्यवस्था री पहल है। इन रो मकसद मुसाफिरान आवन जावन री हिफाजत सागे किफायती भरोसेमंद और आसान सुविधा मुहैया करावन सागे गाड़ी चलावन वाला नई माली तौर मजबूत बनावनो है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना रा तहत गंभीर बीमारियां रा मरीजा ने उपतु अंग लगावन समेत कई महंगा इलाज मुफ्त मिल रहा है। मां योजना रा तहत हाल ताई 2,672 मरीजा ने राजस्थान और दूजा राज्य में अंग प्रत्यारोपण और दूजा इलाज रो फायदो मिलियो है। इमा थे हाल ताई 120 करोड़ रुपये बत्तो खर्चो करी चियो है। योजना रा तहत जयपुर में 1,232 दूजी किडनी लगाई ची। इस आगे कान में कॉकलियर इम्प्लांट खून रो बोन मेरो ट्रांसप्लांट और हृदय और फेफड़ाई दूजा लगाई चिया। योजना रा तहत 107 मरीजा ने प्रदेश में बाहर दूजा राज्य रा अस्पताल में इलाज मुफ्त मिलियो। ध्यान जोग है कि उपतु अंग लगावन रा इलाज में नकद रकम री जरूरत नहीं वह है और मरीज ने इलाज सारू कोई खर्चो नहीं करनो पड़े है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल समारा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय वेबसाइट जोन एआईएल ऐप चावल एआईएल न्यूज प्रसारित सूचना प्रेस मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल की कार्यक्रम प्रेस चावला मोदीरो का विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 शामिल होने वाला 432 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए बातचीत करन रो कार्यक्रम है। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लाइ 4-30 तारीख बीच है दो बार रखी चियो हो। माय सवाल जबरी ऑनलाइन होड़ रे जरिए 3,00,000 बत्ता नौजवान शामिल फिया है। 27वां कारगिल विजय दिवस काल मनायो जावेला ओ दिन 1999 में भया करगिल युद्ध माय ऑपरेशन विजय रा अमर वीराना श्रद्धांजलि देवन सार जावे है। करगिल युद्ध माय भारत रा रण बांकुरा पाकिस्तान रा फौजियां और घुसपैठियां मुकाबलो कर और देश री संपत्ति हिफाजत ही। एक रिपोर्ट
3: भारत और पाकिस्तान करगिल री लड़ाई मई 1999 वी पाकिस्तानी फौजी पैठिया नियंत्रण रेखा पार कर करगिल द्रास और काकसर की चोटियां कब्जा भारत री फौज जबरदस्त हिम्मत रो दर्शाव करता था का 16,000 फीट ऊंचाई वाली मुश्किल चोटियां बर्फीला तूफान और ठंड ऑक्सीजन री कमी और दुश्मन री लगातार गोलाबारी पीछे जीत हासिल की। विजय दिवस पूरो देश मायड़ भूमि री हिफाजत करण सारू जान री बाजी लगा देवन वाला अमर वीरा ने नमन करे है। ई मौके द्रासरा कारगिल युद्ध स्मारक माथे आज दो दिन रा खास कार्यक्रम शुरू व्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काल समर स्मारक माथे शहीदा ने श्रद्धांजलि देर कारगिल विजय दिवस रा खास जलसरी अगुवाई करेला। सलेहा गाजी आकाशवाणी समाचार जयपुर।
0: अरबे मौसम प्रदेश में ई चौमासा रे दौरान हाल ताई केवल फलौदी जिला में आई असामान्य बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग री ओर मिली जानकारी रे मुजब 1 जून नु आज ताई 5 जिला में घनी 20 जिला में सामान्य और 15 जिला में सामान्य कम पानी बरसियो। इन बीच सरहदी जिला जैसलमेर में आज सवारे हुई रुक रुक कर छाटो छिड़को फैर रियो है। बाड़मेर जिला रा चौहटन बीजासर नवातला और दूजा हल्का माय भी बरसात कई थोड़ा पानी भर गयो और कच्चा मकान ढस गया। काल श्रीगंगानगर और सिरोही जिला माय खटे खटे घनी जोरदार बारिश हुई। आबूराज माय 20 सेंटीमीटर पानी बरसियो। बरसात री ऋतु में डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया समेत नरी नरी मौसमी बीमारियां बचाव सारू जनता में जाग चकाई जा रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओर एंटी लार्वा अभियान ने चलायो जा रियो है। विभाग रा अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रदीप असवाल आकाशवाणी समाचार सागे खास बातचीत रे दौरान बुखार या दूजा लक्षण नजर आवन री सूरत में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र मथ जांच करावन री अरज की नी।
4: हमने सभी जिलों में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हमने सभी जिलों में डायरेक्शन जारी की गई जो इस

0: मौसम में मच्छर जनित रोगों, जल जनित रोगों और श्वसन रोगों के संबंध में क्या क्या सावधानी हो, और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसा कि मैंने बताया आशा और एएनएम है, इनको भी आमुखीकरण एक बार हर साल की तरह फिर से हम करते हैं। हालांकि ये निरंतर काम होता है लेकिन फिर भी कहीं कोई चूक नहीं हो जाए इसके लिए हम बार बार आमुखीकरण करते हैं, विशेषकर इस मौसम के लिए।
1: आखिर में खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी बीच भी बातचीत, पाछे नौजवान आरो आंदोलन खत्म, प्रदर्शन करन वालों तुरंत पाछा जावन री अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफो दीनो, कहो नौजवान आरा हित माए फैसलो लीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। और प्रदेश माए ही चौमासा माए हाल ताई कम में बरसियो, 20 जिला माए सामान्य और 15 जिला माए सामान्य कम पानी बरसियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
2: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं, अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसान वाणी प्रोग्राम सुनानिया संघ छोटा मोटा बहने बहने आपके सहदेव बांगड़ा का घना घना हेतर कोडू राम राम। भैया चौपाल माते मारे साथ सुरेश भाई बावड़िया, तो सुरेश भाई थाने भी घनो घनो हेतर कोडू राम राम।
2: सहदेव भाई आपने भी राम राम, और किसान भाई जब आप प्रोग्राम सुन रहे हैं भी घनो घनो राम राम।
1: यहाँ लागे लाल दिनों इंद्र भगवान तो सुरेश भाई कसी थोड़ा ज्यादा मेहरबान होगा और कहते फसलाएं बेबी जोरदार है, बिजली बस फसलें भी ठीक है, कई थोड़ा पचती फसल है, बाम में भी अनजान आ गया एकदम, क्योंकि जन मिट्टो पानी बिल्कुल अमृत बरसे। और चूंकि 22 तारीख के आसपास जो स्वाति नक्षत्र बरसात हुई बात तो बिल्कुल अमृत के समान हुआ, तो कई थोड़ा यहाँ देखने में सुरेश भाई के हाल कई जगह पॉइंट जगह बच गए नागौर आगती बागती अपन बात करा नीडवाना रोड में चलना, तो रोड पीछे नागौर पीछे अटे थोड़ा सो एरियो जगह पर हाल इंद्र भगवान मेहरबानी
2: कम बरसात है
1: कम है, उम्मीद रखा कि भाई आने एक दो दिन बटे बरसात हो जी और किसान आई जगह बहुत डीक है बापूरी
2: हुई।
1: तो बात यहाँ की है कि भाई जब भी अपना खेती करा चाहे बिजनेस करा चाहे स्कूल खोलना हॉस्पिटल खोलना कि भी खोलना तो भी एक नवाचार है जो मायने रखे। और बात यहाँ की है कि जब आप कृषि प्रधान देश में रहे और खेती में जड़ते डिजिटल और नवाचार नहीं हुए पर खेती में जो अपन जो फायदा लेना वो आप नहीं ले सका। तो जैन आप नवाचार की अपन बात करें तो जन खेती ने बढ़िया बनाने वास्ते आसान बनाने वास्ते अपन जगह खेती मोटा मोटा एहलकार है साइंटिस्ट है बे लगी उड़ा है, तो बे कई चीज़ें बनावा जो कि सब मोटी लाल दिन आप सुनने में ड्रोन है, आर्टिफिशियल एजेंसी है जी AI बोलिया करे और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जी की IoT बोलिया करे, जैसी आधुनिक तकनीक है एक किसान तक पूर्ति करे और एवं जकी जानकारी अपन मिली फसल के बारे में पैदावार बढ़ाने के बारे में, तो यह बहुत ही नवाचार के लिए अपन फायदेमंद है खेती के लिए। और जो प्रमुख डिजिटल नवाचार की अपन बात करें तो एग्री स्टेक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण सरकार द्वारा किसान ने पहचान और बोर्ड फसलों को डिजिटल रिकॉर्ड रखने वास्ते जियो फेसिंग वे सेटेलाइट का उपयोग करो जाए। और बिन के साथ साथ जैन अपन ड्रोन तकनीक की बात करें तो खेतों में कीटनाशकों को उर्वरकों छिड़काव वो भी अपन कर सकें, और वो जो ड्रोन को प्रयोग है खेती में वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जैन आप समझ लो बगीचा में आप स्प्रे करिए तो बगीचा में जगह भी पेड़ बंग हाइट है 15 फुट है, कोई की 12 फुट है, कोई की 18 फुट है, तो नीचे वो चीज संभव को नहीं हाथ तो मैन्युअली कि आप भाई वहाँ पर पौधा पर आप छिड़काव कर सकें। ड्रोन होता 20 फुट 25 फुट तक आप कभी भी डिगी अपना पौधा है जगह आप स्प्रे कर सकें, तो वो सब मोटा अपना दिन दो ड्रोन तकनीकी फायदों। और भी गला इमें जगह अपन पानी की मात्रा दवाई की मात्रा जगह छिड़काव बिल्कुल समान तरीकों हुआ है कम पानी में और बढ़िया तरीकों में भी पौधा जगह जरूरत उर्वरक की फर्टिलाइजर की अपन बोला तो कीटनाशक की एकदम ढंगों भी छिड़काव हुई है। और स्मार्ट सेंसर जबकि

0: और इन IoT जकी आप तकनीक है, इनको है मिट्टी में नमी पतवणो काम है, तापमान, pH, इस तरह की जांच वास्ते सेंसर को उपयोग करे जावे, भी पानी की भी बचत हो, क्योंकि ऑटोमेटिक जन आला तकनीक ला के जन कोई भी भाई की बूंद बूंद सिंचाई पद्धति लगी हुई है भी पर एक वो IoT इनको सिस्टम ला के आप फसल ने कति पानी जरूरत है, कति नमी की है, वो बत्ती लेन चाली भी बाद में ऑटोमेटिक मत है कट हो जाए, तो ये तो आप सब मोटो है कि आप पानी की बचत हुई और पानी वास्ते अपन देश में आपने ध्यान है अभियान संघर्ष हो रही है लगातार अपन डिग्गी खेत तलाय तालाब ढींगड़ा पोंसड़ा कितने तरह का अपन जतन कर रहे हैं पानी क्या कर बचाना है, क्या कर बचाना, सरकार भी लगी हुई है अपन पानी ज्यादा से ज्यादा बचाना है, तो इनके लिए आ जगह स्मार्ट सेंसर तकनीक बहुत ही जबरदस्त है और जगह भी भाई अपन के जन ट्यूब वेल है जो लगातार पानी जमीन स्तर जा रही है, भैया ने ध्यान कहीं पड़े अपन ने कहीं ध्यान पड़े भाई आप फसल ने कहता पानी की जरूरत है, तो वो जगह तकनीक है आज की उन्हाल्टी में बहुत ही ज्यादा कारगर और फायदेमंद रहे वाली, और भी बाद में आप करा मोबाइल एप्स और डिजिटल मंडिया जो किसान फोन के माध्यम मौसम की आज अपन जानकारी मिल जाए, सही बीज अपन चयन क्या करना है और किसी मंडी में कायम भाव था चाले, तो ऐसी आधुनिक तकनीकें हैं तो आप सदी संभव है लगातार खेती में नवाचार हुई तो अपन कई कई चीजें देखने और मिली बात तो उन्होंने करा सुरेश भाई पहले ले ब्रेक को सुना काम की बात।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर।
0: किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो सुरेश बात यान की है कि ड्रोन को उपयोग खेती में वीडियो कहीं कहीं फायदा है और क्या हिसाब आप ड्रोन को एक आप आम काश्तकार को क्या इस्तेमाल कर सके और इनकी थोड़ी तकनीकी वगैरह बारे में थोड़ी बयान दान करते रहो।
4: देखो सहदेव भाई एक बार थे नवाचार बताया भाई ड्रोन है जो को मुख्य नवाचार हो कि यूं एक तो आप कहीं कर सका कि भाई ड्रोन की मदद तो है जो को आप कोई खाद या दवाई को छिड़काव है जो को है ना एक एकड़ में 15-20 मिनट में कर सका और पूरे दिन में अगर है किसान भाई काम करे तो आप मोटर 500 लीटर टंकी देवा या छांटा तो सहदेव भाई आप 20 बीघों 25 बीघों 30 बीघों बत्ती कौन छड़े और ड्रोन है जो को 30-40 एकड़ के मायन दवाई है जो को छाट गई एक दिन के मायन
3: यानी कि ड्रोन अगर आप छिड़काव करा तो सब मोटी बात है कि आप 100 बीघा तक तो छिड़काव कर सका और साथ साथ दूसरे फायदों में बताया जो ड्रोन अगर आप छिड़काव करा तो अपन जगह बरसात में उन्हाड़ा कीड़ा काटा है सर्वधर्म से पक्का हद तक बस भाई नहीं तो यही बात देखने में इस प्रगति टाइम के भयन सर्वधन सोई गो है या बिन कोई दवाई को जहर चढ़ गो है एलर्जी होगी कई तरह का इनका अपन नुकसान
4: और मोटा खेत ऐसे दे भाई जट आप बीचे कई जगह पूग ही नहीं सका कई जगह बीमारी की जगह उठे और भी जगह अगर आप ड्रोन भी की पूरे खेत की निगरानी करा तो आप कोई भी बीमारी वो है जो स्कैन कर अपन बता दे कि भाई इस जगह ई स्पॉट के मायने खेत में इस जगह आप बीमारी की शुरुआत हो चुकी है तो आप अभी को पतो लगा सका
3: बट विशेष तौर पर जाए छिड़काव कर सका मैं तादरा जाए अपन संभाल सका
4: हम और बीज बोई की बात करें तो सहदेव भाई अगर आप कोई बीज भाई किसान भाई हाथों छंटिया करे तो आप बीज को छिड़काव अगर उबड़ खाबड़ अपनी जमी हुए जट भाई नहीं पूग सके या दोपहर में तावड़े में करना पड़े या काम तो भी वो काम कर सके बीज छिड़काव को और खेता को जो को नक्शो है आप यू द्वारा तैयार करवा सका और शर्म समय ये तो बच्चे ही है सहदेव भाई इस साथ साथ आप संसाधन जगह काम में लेवा तो एक तो आप जब ट्रैक्टर छिड़काव करा तो आपने एक तो ट्रैक्टर और टंकियां की जरूरत पड़ी प्लस आपने लारे 5 आदमी भी चाहिए थी और किसान की सदे भाई सब मोटी के रसायन जबकि सुरक्षा है वो किसान की ड्रोन की मदद तो ही हो सके क्योंकि बाकी को तो आप हाथ में स्प्रे की टंकी है चाहे स्प्रे की पाइप है तो आपने हाथ में रखनी ही पड़ी और सदे भाई अब बात करें तो कोई गाँव गौंतरे
3: देखो गाँव गौंतरे मोहम्मद लाल मैं तो काम जुड़ो थे कोई गौंतर गिरी

0: देखो सीधे भाई, आज मैं जलालड़ गांव गन गियो और बट एक गोपाल जी मिलिया जका नुई नुई डिग्गी बनी तो भाई बाबा तावड़ी करी में डिग्गी माते
1: काई काई लगे उड़ो बांगोट भाई पता नगली उल्ली भी में तो सुनो भाई हां तावड़ी
2: भैया जी अपन टाइम मिले अपन किसान भैया जया करा और बेन दी हतावड़ी है थाते करिया करा पूगती। आज मैं आयो हूँ अटेनू देख लियो नी तरनो उगनो उतरा दो और बने गांव है झलालड़ तो बटे किसान भैया करा ते राम राम सा।
3: राम राम सा राम राम सा।
2: काय नाम है सा?
3: नाम गोपाल है सा।
2: गोपाल जी। अब बार मैं अटेनू निकली हुई मारे गए जना बार देखू ते भाई निनान चाल रही है बाजरी है मूंग बैठा है तो आ डिग्गी बनाई है साइड में खूणे मैंने अकद बनाई
3: डिगी अबार ही बने सा ऐसी
2: ऐसी बनी कत्ता भाई कत्ता की
3: 120 बाई 120 है।
2: 120 बाई 120 की। तो अड़ी क्या वास्ते बने थे?
3: डिग्गी थी वास्ते बनाई के अटिने खेत की पूरे की ढाल है तो बरसात ज्यादा हुए जो ज्यादा पानी हुए जो खेत में बेड़ो येड़ो काई काम को पानी आपने इकट्ठो हो जाए वो
2: ठीक है भाई
3: पानी
2: पानी।
3: जमा कर लिया पाचो उन्याड़ा में कोई फसल बन जायो
2: मतलब हियाले माय उन्याले फाची उन्याली फसल हो जी।
3: उन्याली फसल कर लिया जे सब गोल है जीरो है कोई पेड़ पौधा लगावा तो बान पानी दी जा
2: तो ट्यूबवेलर एक होनी
3: टूबेला को नहीं पानी खारो है सा।
2: ट्यूबवेला तो होगी लेकिन पानी खारो जहर है।
3: हाँ खारो जहर है धान हुए कौन
2: और मार जेकी एस बनाई होता तो एसी सब गोल जिया जीरे के और आगे थाने तो ये अनुभव थोड़ी है कि सब गोल जीरो बायोडो कटे।
3: नहीं अनुभव तो भैया को नहीं बने आपने जिया तरनो सिलाई यार रिश्तेदार है बन पूछ लिया बाकी श्याम बटू बीज लिया खाई श्याम भैया करे भी बाहर बीज लिया तैयारी करी
2: तो जो मेरा जगह थे वो बरसात वालों पानी बच्चों तो उगी था एक तो भाई वो बच्चा लियो थे पूरा पानी बेड़ो कर लियो एक तो फूट रखे तू बाहर निकल तो
3: खेत तो बारे नहीं निकलतो तो ये फसल खराब होती जिया गुहार है इन पानी 24 घंटा पीड़ियो रही खेत में जाना वो मतलब खराब हुई
2: ज्यादा मतलब जब तो ज्यादा पानी पड़ो ज्यादा पानी धान ही गल जाए।
3: गलजिए
2: तो ई वास्ते के भाई तो डिग्गी बना ली जगह आगे अपनी फसल भी उजीर पानी भी जगह अपने खेत में नुकसान हुए भेड़ो रहनो वो भी नुकसान कौन है
3: हाँ वेस्टेज कौन है खराब कौन है पाचो आपने फसल उजी
2: तो एक खुदा ही थे किया करवाई ट्रैक्टर हूँ जेसीबी हूँ ट्रैक्टर
3: ट्रैक्टर हूँ करे
2: हूँ खुदा ही करवाई तो पर से वो मीनू बिचानो पड़े ही मैं।
3: हाँ मीनू जया लाडनू मीनू जार मीनू बेचा दी
2: मीनू बिचा लियो तो इ पर अनुदान भी दिया करे सरकार थे फाइल लगे।
3: फाइल लगाई डी है अब देखो प्रोसेस चालू है तो साहब लोग आए जना आपको सबको कर
2: हाँ भाई दे अगर कत्तो अनुदान मिले जो को
3: हाँ बस सब्सिडी
2: वो देगी ना। हाँ भाई भी ऐसा ही है तो अब ऐसे अब इको जिया चालो आदिगी था बरीज की बार देखो काशा पानी भी हेड़ है हाल बरसात आगे घनी पानी बरीज भी जाए है तो
3: हाँ
2: इन जकी थे खेती करो तो भी खेती के मायन अब यू लाइट की व्यवस्था किया करो पानी काटो किया पानी में सिंचाई की
3: देखो सिंचाई
2: व्यवस्था।
3: की व्यवस्था ट्रैक्टरों में कर लिया वाटर पंप को लगा और नीर कोई सिंगल फेस कनेक्शन ले लिया और सिस्टम तो हगलो ही है तो ट्रैक्टरों में भी पा सका आपनों खेतों हाँ
2: हाँ मतलब ट्रैक्टर वाटर पंप।
3: वाटर पंप
2: हाँ तो ये
3: ट्रैक्टर
2: वास्ते अगर आप कम पानी लगानी चाहोगे भाई आपने तो सीमित साधन है कोई ट्यूबवेल पर लोगों देखा डिग्गी वे देना कन्ने ट्यूबवेल पास डिग्गी भरिए या मिक्स करिए
3: हाँ
2: पानी था
3: हाँ
2: जी अतो ही सोर्स है वो पानी को आ डिग्गी में तो ये वास्ते से बूंद बूंद ट्राई कौन करो।
3: बूंद बूंद को विचार तो करा भी पर भी अनुदान है जो को देखा करा
2: हाँ
3: कोशिश बूंद बूंद की फायदा तो रहे बूंद बूंद तो कम पानी लागे हाँ
2: बूंद बूंद देखो पानी कम लागी बीज की लागत भी कम आई
3: बचत
2: और
3: है
2: खाद
3: हाँ
2: जो ना वह भी कम लागी। तो अबार है जबकि बाजरी गुआर था के देसी बीज एक शंकर बेड़ा है
3: देखो बाजरी तो शंकर ही है
2: ठीक है।
3: और मूंग गुआर है जो को माँ को घर को ही बीज है भी, वो ही बीज हाँ
2: देखो घर कोई बाजरी शंकर भी जुड़ी है
3: बाजरी शंकर नान
2: तो निनान पानी चालू है कि कर लिया कहीं।
3: पानी हड़िया कर ली कचरा काटा बरसात
2: हाँ
3: बाहर
2: हाँ
3: चालू है 4-5 दिनों बढ़िया बरसात चाल रही है
2: बढ़िया बरसात में बार देखा नहीं कि भाई कई बार बड़े रखे अगर एक में लास्ट में लांची भी पड़े एक में की
3: बहुत तो
2: तो
3: हर
2: अगर
3: साल
2: लांची पड़ी तो डिग्गी मुंह पा सको इन धान ने।
3: पास का ही आपने पानी आयोडो है
2: हाँ
3: पास

0: काई में काई तकलीफ है।
1: हाँ भाई, बाजरी माए ने या गुआर में थे केमी पानी खुलो डोल सको
0: तो
1: पास सको।
0: पानी है आराम पा सका इन्हें मूंगा ने बाजरी ने गुआर ने किनी पवन।
1: तो कोई भाई आपने बार हते उणी के भाई ओ पानी तो जगो आपने वर्षा जल संरक्षण करनो बहुत जरूरी है। के भाई
0: हाँ
1: घरा तो आपा गांव में देखा हो तो घर घर में भिंडड़ा है, आपा बच्चा हुई
0: घर
1: है
0: में हो दे आपने। हाँ
1: घर घर में हो दे। अब आ डिग्यालो जगो एक है ना, ओ भाई सरकार भी कहवे हगड़े भी कहवे कि पानी वो भेड़ो करो बचाओ यूं खेती करो या कहीं भी आगे काम में लेवा, तो ओको तो
0: हाँ
1: बढ़िया फायदा वालो काम है।
0: वो तो एक नंबर काम है साहब। इम
1: हाँ
0: काई निशान आपनों काई लागे डिगी बना दी गवर्नमेंट सब्सिडी जेवे इम पर है
1: हाँ
0: और पानी भेड़ो उजिए पाची फसल उजिए इमें फायदो फायदो है नुकसान काई है।
1: नुकसान की कोनी फायदा फायदा है।
0: हाँ
1: वासा गोपाल जी आप बहुत बढ़िया जानकारी दी, आपको घणो घणो धन्यवाद। राम राम सा।
0: राम राम सा।
1: तो सुरेश भाई जैन थे बातचीत भी कर ले रहे हैं, जबकि एक बार अपन लगातार सरकार भी चेतियोड़ी है और जो कि टीवी रेडियो अखबार के माध्यम अपन बार बार एक अभियान चला रही सरकार केस धरन यानी वर्षा जल संरक्षण, के अपन जो बरसात को पानी है बिना अपन क्या ना पंगे रोकना है, और इंग्लिश में क्या करे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इनको अर्थ है कि जो बारिश के टाइम जो की बरसात हुआ अपन कई छोटा पौधे कहाँ जन भाई मोटा मंगरा बढ़िया है अगर जन क्या की जमीन है उपड़गा पड़े है, बट जो पानी है जो व्यर्थ जो बह रही है कि भाई जन ऊपर जन चढ़ा हम बरसात होगी बट अपन रोकण के कटाव के ऊपर पानी सोख के होने क्यों बट जुताई हुए होने खेत किए होने, तो वो जगह अपन खेती कर जगह खेता मार वो पानी रुक जाए, बट रुक गए वो कहाँ कर जी व्यापार फसलें लगे हुई है तो बाहर लगातार वो पानी बट पड़ी रहे वो एक तो वो खेती खराब हो जी और वे फसलें भी खराब हो जी, तो वो दोनों तरफ नुकसान है क्यों भाई पानी कोई काम ही तो ना वो,
2: वो काम होना
1: तो
2: सके।
1: इनके वास्ते सरकार जो कि ना पानी व्यर्थ बह रही है इन अपन संरक्षण वास्ते अभियान चल रही है कि भाई मुख्य तरीका है कि भाई किसी भी पानी जगह ना अपन क्या ही कर रोकना है, तो जल संरक्षण के मुख्य तरीके में बात करें अपन जद जो छत को पानी है तो बहुत अपन भाई टांका बना लिया और कर लिया देन छोटी मोटी टंकियाँ बनाए बुणों भी ना अपन रोक सका, और बी के बाद में है भू जल पुनर्गर्भण, तो को भी पानी है अपन जबरदस्त बरसात होगी बिना अपन पाछो जमीन में उतारण जो भी जमीन पर रिचार्ज करने का कई तरीका है जन खड्डा खोद दिया बट कंकरी लगा दी पत्थर लगा दिया भी बाद में बट वो पानी जाए जो या सुकोड़ा घाटे को पहले के टाइम को फेरा है बाद में वो पानी उतार भी क्या कर भी पानी ने भी
2: हाँ तो
1: फेरा दे कूद कर।
2: भूजल स्तर बढ़ाना।
1: हाँ तो वो अगर अगर अपन इनको काम करा तो अपन सतह पर संग्रहण हुई खेता में और मैदान ढलान वाला जगह क्षेत्र है पे छोटा छोटा तालाब है बांध है बांधे वो पानी पूगत रहे और वर्षा जल को संरक्षण का फायदा ही बातें करा तो।
2: और सीधे भाई वर्षा जल फायदा की बात करा तो पहले सीधे भाई बात कर लिया भाई इनको जो मूल मंत्र वही है कि भाई जहां भी जब भी बारिश हो अपन पानी भेड़ो करना है कट्टे इनकी बात करा के भाई वर्षा जल संरक्षण के एक दो बार आप तो बात करा गाँव में आपने तो देखा है कि भाई शहरा में जगह जगह देखा कि भाई लोग है जगह नड़ा पर या पानी जगह आवे भी पर निर्भर है, तो अपन निर्भर रहना पड़ेगा क्योंकि आपने हर घर के मायन होद भिंडो है यार आप बिन पहली काम में वो पीने वो लेवा काम में। और बात करा खेती में अगर ए लाला दो तीन साल देखा सीधे भाई हर खेत के मायने जगह डिगिया बढ़नी धीरे धीरे धीरे धीरे चालू होगी है, और ज्यादातर काम किसान वही करेगा आल पहली खेत के मायने डिगी बनावे, तो डिगी अगर कई किसान भाई यान गए जो आज वो पानी स्टॉक कर लियो तो आने वाले समय के मायने जो आप जो अगले साल पास उन्नी वाली खेती करा तो वो पानी आप खेती के मायने काम ले सका, साग सब्जी कोई बावा तो भी काम ले सका, और यहाँ देखा कि बार एक में की अगर कमी पड़गी तो लास्ट भी पानी अपनी फसल ने बाजरी ज्वार ने भी पा सका।
1: ये तो बात हुई सुरेश भाई अपन संरक्षण करने वाला खेती करने वाले लोगों के लिए और एक जो कि आम बात है जगह हगड़ा के भी लागू है चाहे वो शहर में बैठो है चाहे ढाणे में बैठो है चाहे गांव में बैठो है चाहे एकल परिवार है चाहे संयुक्त परिवार है क्यान भी है, तो बा के लिए जल संरक्षण का जगह मुख्य तरीका है दशे बताएड़ा तो बा सब मोटी बात है नल बंद रखे, क्योंकि कई बार आप देखने में वहां के दिन आप पानी आ रही है सप्लाई आ रही है ला रहा हूँ तो वो नल चालू ही रहे, और कई भाई एन का मारना का जगह ब्रश करते टाइम, शेविंग करते टाइम भी नल ने खुल्लो छोड़ दे, खुल्ला में लाग दिए डाइडे बना लाग दिए
2: पानी को ज्यादा।
1: तो अपन ने पानी को अपने रोकना है, बर्बाद नहीं करना। अपन जरूरत है तो आप ये मगो या लोटो पर भी ना अपन काम ले लियो, बाकी भी नल ने बंद रखा। कई छोटा आप देखा कि भैया खुद मोटी गलती या गलती आप खुद कर रहे हैं। अगर आप ई खेत तुम भी खेत अगर आप पानी फुगावा बी के लिए आप पाइपलाइन जमीन में गड्ढा अगर बीम लिकीज भी नहीं भाई कई मारा कई दिन।

0: ठीक उन करे यार, कोई ज्ञान देवा क्यों यार, वो पानी खराब हुआ, जमीन खराब हुआ करके अट हुनुड़ गए पिल्ले। अरे भैया हुनुड़ गए वास्ते खेले मनाओ और कई तड़ा बनाओ पे काम करो, ये फालतू का खड्डा खोदोला तो हम की फाल न पोना होने गए बापड़ी भी हम के पानी पिए। और कई बार देखा कि भाई सुरेश भाई जगह अपना घर में यार गाड़ियाँ ट्रेटर तो है ना, पर बाल्टी काम में उनला सीधी गाड़ी चलू करी लारू और शर्ट शर्ट हो जा साए। तो विशेष तौर पर बयान है कि जगह भी कृषि यंत्र है, जगह अपना धोना भी पड़े और अपना जब कभी यात्रा करना अपन व्हीकल है, कोई मोटरसाइकिल है, गाड़ी घोड़ो कहीं भी है भी नगर अपन तो वहाँ तो विशेष तौर ध्यान रखें बाल्टी और मक्का उपयोग करना। अन्य सीधी पूरी पाइपड़े चला दिया ला रहे, एक एचपी की 2 HP की मोटर है परेशान चला रही है। और एक सब मोटो है कि जल को जो पुनः उपयोग जो है अपन कई बार कहेंगे ना कि चुको रसोई को पानी है और है आप दाला धोया या चावल धोया कुछ भी करिए तो भी पानी ने सब्जियां में या अपन फसलें हैं या अपन पौधा है बम अपन भी पानी ने काम ले सके। और कई थोड़ा अपन देखा अपन ये देश इनका राज्य में बैठा बट पानी को हमेशा ही थेटो तोटो रही है। तो अब हाल जगह अपन बाथरूम में नावणियों में मोटा शोर लागा तो पीला लाना अवॉइड करो। और बाकी जगह अगर अपन बाल्टी और मगो काम में लेवा तो अपन के फायदा सौदो रहे।
1: देखो सीधे भाई टबर आ जद बड़े बड़े रान हमेशा ही सुनता कि भाई ज्यादा पानी में डोलो ताने पाप लागो लो नाता तो ही दो बाल्टी डोल गया था तो भाई हल्ला कर गया था।
0: आज आई बात अपन अपन टाबना सीखनी है कि भाई पानी अगर आप डोलोला तो आने वाला टाइम में जो था पीने लगे फोड़ा पड़ेला कपड़ा धोना दाग लगी है। पूर्ण लोड की मशीन चलाए कई बार गाय कराए वॉशिंग मशीन डिश वॉश है ना देखा हिसाब में आप काम में ले तो ठीक है। और कई बार आ गया कि सुरेश भाई तेन पौधा में सही समय पर पानी देना चाहिए अपन। कई भाई गाय करे कि पौधा है जगह में लगातार पानी सुबह शाम डोलते ही रहे और भाई दिन रात पानी पीने वाला पौधा को नहीं 5 दिनों 4 दिनों पानी दो हफ्ता में एक बार दो तो ज्यादा फायदा आ कोने की लगातार कोई चीज दीवड़ी दीवड़ी जाओ बाबू बढ़िया थोड़ी हुई। और लगातार जन कटे भी अपन बात है अपन एक इंसान का धर्म बनाए कि भाई जत्ते कटे संगोष्ठी है ब्याह शादी कटे अपन बैठ रहे हो मायरे और में 5 आदमियों में तो अपन ने सब जगह आई हथाई चलानी आगे और ये देश का भाई कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होता तक कि भाई पानी है जो ज्यादा से ज्यादा अपन बचाओ तो आने वाली पीढ़ी अपन कोसे को नहीं गलियां उनका डली नहीं आने वाली पीढ़ी थी अपन लंबी चौड़ी गलियां का डली तो हाँ गलियों अपन रुकन वास्ते सब पहली आए कि भाई कटे इतने चालत बटाई को पानी जो अपन फालतू कट मत बो। तो सुरेश भाई संजा टाइम हुई गो भाई जाने आप वाली पाता तुम देड़ी को गीत भजन सुनाए
1: तो आज से दे भाई बहन सुनावा थारा भी न मारो और बहन सुनो लोकगीत।

0: तो सीधे भाई अब बात करा कि भाई लाल सप्ताह एक सवाल पूछी जो वर्षा जल को संरक्षित करने का कहीं कहीं उपाय है।
1: तो सब मोटो उपाय फार्म पॉन्ड टांका और तालाब आदि अपन बनाए और इन अपन पानी ने बचा सका। आज को सवाल है कि ड्रोन खेती में अपन कहीं कहीं उपयोग है कहीं फायदा, तो भाई उम्मीद रखा पहाड़ी अगले हफ्ते चौपाल पर पूर्ति करेला पड़ोतर के साथ।
0: तो सीधे भाई पहले सुना है काम की बात है।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: तो सुरेश भाई चौपाल पर देखा तो बाजार भाव में पानी पूगती हुई है और नागौर की मंडी में आज मूंग भी किया 5,500 लगाए 7,300 थे और गंवार का भाव रहा 5,000 लगाए 5,730 थे
7: और जीरो बाया बिक्यो 17,000 और 21,000 और सूंप जगह 7,000 और 14,800
6: इसे बोल का भाव रहा 9,000 और ऊपर ऊपर 13,000 और अषाढ़िया का भाव नीचे नीचे 5,800 और ऊपर ऊपर 6,000
7: और बात करना दाना मेती तो 7,700 6,000 सिंधी सो 6,000 और 7,400 और तारामीर है जो को 5,500 लेर 6,600 लेके।
6: ज्वार के भाव में बात करना तो भैया नागौर की मंडी में ज्वार बिकी 4,500 लगाए 5,800 थे। काला तिल भावरिया 9,000 11,000 थे। सफेद तिल लेगा 10,000 11,500 और चना का भावरिया 5,000 5,600 और रायड़ा की बात करें औसत 40 फेट की तो तेल के भावों के हिसाब भावरिया 7,500 तो जगह भी भय न लगे तो आपकी जिनसा मन भाव बान लगे बढ़िया के तो जगह नागौर मंडी में जाए आपकी जिनसा बेच सके और गड़ी हमें जो तो चौपाल हो तेवड़ी टाइम हो रही पूरा तो आपका भाई ला सहदेव बांगड़ा ने
7: और सुरेश बंदरोशी
6: सीख करा राम राम।
8: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत फिल्म चित्त चोर से, आवाज यशुदास की है।

0: रेशमा जवान हो गई, रेशमा जवान हो गई, रेशमा जवान हो गई, रेशमा जवान हो गई।
1: ये गीत था फिल्म मॉम की गुड़िया से, आवाज मोहम्मद रफी की थी। अब सुनते हैं येशुदास को, फिल्म का नाम है सावन को आने दो।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत का अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जंजीर से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब सुनते हैं फिल्म जिद्दी में गीता दत्त और मन्ना डे को।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म उमराव जान में।

लता मंगेशकर गाए फिल्म नागिन के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म संगीत का सफर आपने पूरा किया अपने साथ ही आनंद पुरोहित के साथ FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये

और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहां चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने

फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक एक मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में छात्रों पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही तीन बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक

0: अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के 4th दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप इस सप्ताह संसद में हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे, जिसे हमने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिलीज किया, FM 103.7 MHz पर। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके पसंदीदा गानों को हेलो फरमाइश के कुछ सुनहरे पलों के साथ। जी हाँ, आप और हम हैं चिरमी चैनल के साथ। दोस्तों किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत है। ये दोस्तों हमेशा हंसते मुस्कुराते और सबसे मिलते जुलते रहें, जिंदगी बहुत ही आसान बन जाती है। दोस्तों अब आपको इंतजार होगा आपको अपने फरमाइशी गानों का, तो देखते हैं कौन है हमारे आज के हेलो फरमाइश के पहले कॉलर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: जी सर, गोपाल कृष्ण प्रजापत।
0: गोपाल कृष्ण प्रजापत, क्या बात है सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सर नागौर, शिवबाड़ी नागौर।
0: जी गोपाल जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं एडवोकेट हूँ सर, टैक्स एडवोकेट, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये करता हूँ, लोन इंश्योरेंस का काम।
0: यानी बहुत सारे काम करते हैं आप। गोपाल जी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आपने?
1: बीएससी एलएलबी।
0: बीएससी के साथ एलएलबी की है।
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात है। गोपाल जी बताइए कि चिरमी चैनल के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: सर मैं तो बताता हूँ, मेरे ऑफिस में ये रेडियो है ना, हर समय चालू रहता है, कस्टमर आते हैं जब आवाज स्लो कर देता हूँ, बाकी पूरे दिन चलता ही रहता है।
0: रेडियो सुनना अच्छा लगता है आपको?
1: जी जी
0: हेलो फरमाइश कैसा लगता है आपको?
1: बहुत ही बढ़िया।
0: जी गोपाल जी बताइए आज क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: आज मेरे को ये सुनना है सर, सुनने से पहले दो तीन नाम बता दूं।
0: जी बताइए सर।
1: मेरी वाइफ ममता प्रजापत, राजवीर
0: जी,
1: शारदा, मिनल
0: जी
1: मानसी, इन सब की तरफ से आप ये ओ मेरे दिल का चैन चैन आ जाए ये वाला गाना सुनाइए।
0: जी बहुत ही प्यारा गीत है, किशोर कुमार की आवाज है। हम सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: हाँ, अशोक देवासी बोलूँ सा, गांव खालड़ा से। और
0: हर्षुक जी, सर क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी का धंधो है ऐसा,
0: अभी खेतों
1: बरसात
0: में?
1: है, बरसात
0: जी,
1: को नहीं। हाँ,
0: अभी बरसात कम है। अभी खेतों में क्या क्या बोया है आपने?
1: ए मूंग है, बाजरी है, कवार है, एड़ा बड़ा।
0: रेडियो कब सुनते हैं आप?
1: रेडियो तो रोज सुनते हैं, मोबाइल में
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: सब सुनते हैं, सब सब सब फिर भी कार्यक्रम है। नागौर सगा सब अगला अगला
0: सभी?
1: गुना मुंडो पास में है हमारा गांव।
0: जी, सभी कार्यक्रम सुनते हैं। हेलो फरमाइश, कैसा लगता है आपको?
1: बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है।
0: हर्षुक जी बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: आज खुदार फिल्म को गाना है, अंग्रेजी में कहता आई लव आशा जी का, किशोर कुमार के आवाज में। नाम ले हूं, संगीता कल्लू, उर्वा दापू, परमेश्वर किशन नाम है।
0: जी, हम सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: जी। सर मैं सुनिया बोल रही हूँ, मोहम्मद इकबाल की बेटी। सर
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं नागौर अजमेर की से बात कर
0: जी सुमेय जी, क्या करती हैं आप?
1: रही हूँ। कुछ नहीं सर, बस घर पे रहती हूँ, सिलाई करती हूँ।
0: जी पढ़ाई लिखाई की है आपने?
1: बिल्कुल हो गई,
0: कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप?
1: फर्स्ट ईयर की है सर।
0: सुमैया जी, फिर रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: सर पापा सुनते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, तो हम भी सुनाने भी अच्छा लगता है। आकाशवाणी
0: जी कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: सुनते हैं, फिर मिलने वाले
0: हेलो फरमाइश, कैसा लगता है आपको?
1: हेलो फरमाइश भी सुनते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: सर मेरे को सुनना है कन्यादान फिल्म का गाना, लिखे जो खत तुझे।
0: बहुत ही प्यारा गीत है, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: जी सर, मारवाड़ मुंडवा से धर्माराम आपकी बहुत पुरानी श्रोता है।
0: क्या बात है सर, हमारे नियमित श्रोता हैं, पहले भी आपसे हमारी बात हो रखी है सर।
1: हाँ जी सर,
0: धर्माराम जी, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: अभी तो खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं, पहले कमटा कर रहा था।
0: बरसात कैसी है अभी मुंडवा में?
1: बरसात बारिश बिल्कुल कम है, अभी इंतजार है, बहुत ही धूप बहुत पड़ रहा है।
0: अभी खेतों में क्या क्या बो रखा है आपने?
1: हमने बोया है बाजरा और
0: जी
1: गंवार मूंग। रेडियो
0: जी धर्माराम जी, आप रेडियो कैसे सुनते हैं, मोबाइल से या फिर रेडियो?
1: दिन भर सुनते ही रहते हैं,
0: रेडियो लगा रखा है या मोबाइल से सुनते हैं?
1: रेडियो रेडियो
0: क्या बात है सर, कौन सा रेडियो है आपके पास?
1: मेरे पास है, वो 2500 रुपया का लाया हुआ है नागौर से।
0: जी बहुत अच्छी बात है। हमारे चिरमी चैनल के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, बहुत परिवार सुनते हैं हम प्रेम से।
0: जी प्रेम बना रहे आपका, बताइए क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: आज सर करण अर्जुन फिल्म का गाना है वो, ये बंधन दो प्यार का बंधन है।
0: जी, आप ये गाना अपने परिवार को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: हाँ जी सर,
0: बहुत अच्छी बात है, आप सब सुनिए इस गीत को, हम सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: ये मुकेश नागौर
0: मुकेश जी शर्मा बात कर रहे हैं, नागौर से ही बात कर रहे हैं जी। मुकेश जी, क्या करते हैं आप?
1: से
0: मेडिकल स्टोर है आपका, यानी आप जनता की सेवा करते हैं।
1: जो लिखा है वो कर रहे हैं।
0: बहुत अच्छी
1: वहां
0: बात
1: पे
0: है मुकेश जी। फिर रेडियो सुनने का वक्त मिल जाता है आपको?
1: मिलता है सुबह शाम, मिलता है तो सुबह शाम दुकान जाता हूँ तो घर आ जाता हूँ।
0: जी, हमारे चिरमी चैनल के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: अच्छे लगते हैं।
0: हेलो फरमाइश, कैसा लगता है आपको?
1: बहुत अच्छे लगता है।
0: चलिए, क्या बात है मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: पुराने गुमनाम मनोज कुमार के गुमनाम, तो
0: जी, कौन
1: फिर
0: सा
1: नंबर
0: गीत?
1: जाने सवन जाने सनम चोला बदन
0: जी,
1: बहु में आ जाओ
0: क्या बात है सर, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये
1: वो थोड़ा।
0: गीत।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का हेलो फरमाइश। आप चाहें तो आप भी बन सकते हैं हमारे हेलो फरमाइश के इन यादगार पलों के साथी। दोस्तों, हमारे हेलो फरमाइश की रिकॉर्डिंग की जाती है हर गुरुवार दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। हमारे आज के हेलो फरमाइश में आज हमारे साथ थे तकनीकी सहयोग दिया जितेंद्र कुमार ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। दोस्तों, हमारे उन श्रोताओं से निवेदन है जिन्होंने आज हमें कॉल किया, कृपया वो हमें 2 महीने के बाद कॉल करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल सके। दोस्तों, अब लेते हैं आपसे विदा, लेकिन हम और आप मिलेंगे हमारे अगले हेलो फरमाइश में। दीजिए हमें आज्ञा, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144 16 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
3: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता

0: सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
2: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं दर्द भरे गीत। पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से भी आप सुन रहे हैं दर्द भरे गीत। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है महबूबा।

0: अभी आप सुन रहे थे दर्द भरे गीत एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब सुनते हैं विविध भारती केंद्र मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: और चश्मे बदूर
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म संजू से, आवाज़ सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल शेखर अस्तित्व के और संगीत विक्रम मोन्ट्रोस का।

0: करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: यह हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

0: आज के फनकार।
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की।

ऐसा संगीतकार जिसने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन अपना बड़ा नाम किया और लोगों ने उनको दिल दिया।

0: तुझको।
1: हिंदी फिल्म संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थीं। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया। और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।
2: समझ नहीं आ

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का।

गोपी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी, और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज, और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज।

इसके ठीक बाद निर्माता जीपी सिप्पी ने जी एस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर।

सन 1963 में जीएस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने बरसों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है। सुनिए फारूक कैसर का लिखा ये गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम पर।

फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जी एस कोहली हैं।

और फिर सैक्सोफोन की तरंगों पर सवार होकर आती हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, शिकारी फिल्म का ये बेमिसाल गाना।

इसके बाद आई चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खासी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया ये गाना

खूब कामयाब हुआ। यहां एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं, माना मेरे हसीं सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहां जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था, माना मेरे हसीं सनम तू रश के महताब है।

जी एस कोहली के संगीत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओपी नैयर के रिदम में दिया वो ओपी नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जी एस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जी एस कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जी एस कोहली की अपनी भी शैली है, कहीं ना कहीं नैयर के गानों में जी एस कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए, साल 1965, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। ये गाना अज्जान का लिखा हुआ है।

साठ के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिनमें जी एस कोहली का संगीत था, जैसे नौजवान और संग दिल वगैरह। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, ये जी एस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है कि जब ओपी नैयर और जी एस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं, तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। ये वो शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है।

25 जुलाई 1996 को जीएस कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। जीएस कोहली चले गए पर रह गए उनके गाने जो हमें जिंदगी में राहें दिखाएंगे, कभी हमें रूमानी एहसास से भर देंगे और कभी हमारे भीतर गम का सागर लहराएगा उनके बनाए गाने सुनकर।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जी एस कोहली पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आज की हमारी प्रसारण सभा अब समाप्त होती है। कल प्रातः 8:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दी